0: जीवन सौरभ।
1: एक इंसान अपने जीवन से बड़ा ही परेशान था। उसे हमेशा यही लगता रहता था कि दुनिया की सारी समस्याएं बस उसी के पास हैं। थक हार कर एक दिन वो एक संत के पास गया और उनके समक्ष अपनी मनोव्यथा रखी। संत ने कहा, बेटा तू आज रात मेरे ही पास रुक जा, मेरे पास 100 ऊंट हैं, तो उनकी देखभाल करना और उनमें से किसी को भी खड़ा मत होने देना। अगले दिन सुबह जब संत उठे तो वो इंसान बोला, महाराज मैं तो रात भर ऊंटों को बैठाने में ही परेशान हो गया। एक को बैठाता था तो दूसरा खड़ा हो जाता था, रात भर ऐसे ही चलता रहा महाराज। संत बोले, बेटा ये समस्याएं भी तो ऊंटों के ही समान हैं। किसी भी व्यक्ति की संसार में सारी समस्याएं एक साथ नहीं सुलझ सकती। समस्याओं के साथ होते होते ही जीवन में आनंद लेना सीख, नहीं तो इन ऊंटों को बैठाने की तरह तू जीवन भर बस परेशान ही रहता रहेगा।
0: जीवन सौरभ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 143वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं अग्नि, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
3: प्रतव्यसीम नव्यसीम धीतिमग्नये वाचो मतिम सहसह सूनवे भरे अपाम नपाद्यो वसुभिः सह प्रियो होता पृथिव्याम न्यसीदत् द्वित्वियः। शक्ति के पुत्र, जलों के संरक्षक अग्निदेव, सबके प्रिय तथा ऋतुओं को दृष्टिगत रखकर यज्ञीय कर्मों के संपादक हैं। वे ऐश्वर्यों सहित पृथ्वी के ऊपर यज्ञ वेदी में प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसे अग्निदेव के निमित्त हम नवीनतम श्रेष्ठ प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। सजायमानः परमे व्योमन्या विरग्नि रभवन मातरिश्वने अस्य कृत्वा समिधानस्य मज्मना प्रद्यावा शोचिः पृथिवी अरोचयत्। वे तेजस्विता संपन्न अग्निदेव मातरिश्वा वायु के लिए उच्च अंतरिक्ष में सबसे पहले प्रादुर्भूत हुए। श्रेष्ठ विधि से प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव की शक्ति सामर्थ्य से दिव्यलोक और भूलोक भी प्रकाशमान हुए। अस्य त्वेषा अजरा अस्य भानवः सुसंदृशः सुप्रतीकस्य सुद्युतः भात्वचक्षसो अन्त्यरक्तुर्न सिंधवोग्ने रेजन्ते अससंतो अजराः। इन अग्निदेव की प्रचंड तेजस्विता जीर्णता से रहित है। सुंदर मुख वाली इनकी तेजस्वी किरणें सभी ओर संव्याप्त होकर प्रकाशित हैं। दीप्तिमान शक्ति संपन्न तथा रात्रि के अंधकार को पार करते हुए इन अग्निदेव की ज्वाला रूपी किरणें सदा जागृत और क्षय रहित होकर कभी भयभीत नहीं होती। यमे रिरे भृगवो विश्ववेदसम नाभा पृथिव्या भुवनस्य मज्मना अग्निम तम गीर्भिर हिनुहि स्व आदमे य एको वस्वो वरुणो न राजति। जो अग्निदेव वरुण देव के समान ही ऐश्वर्यों के एकमात्र अधिपति हैं, उन्हें भृगुवंशी ऋषियों ने अपनी सामर्थ्य से संपूर्ण विश्व के प्राणियों तथा पृथ्वी पर समस्त ऐश्वर्यों के लिए प्रतिष्ठित किया। ऐसे अग्निदेव को आप भी अपने गृह में ले जाकर श्रेष्ठ प्रार्थनाओं से प्रज्वलित करें। न यो वराय मरुतामिव स्वनः सेनेव स्रष्टा दिव्या यथा शनिः अग्निर् जम्भैस्ति गितैरत्ति भर्वति योधो न शत्रुंस्थ वना न्यरिञ्यते। जो अग्निदेव मरुद्गणों की भीषण गर्जना की भांति, आक्रमण को प्रेरित पराक्रमी सेना की भांति तथा आकाश के वज्रास्त्र के समान ही अवरोध रहित हैं। वे अग्निदेव योद्धाओं के समान ही अपनी तीव्र ज्वालाओं रूपी तीखे दांतों से शत्रुओं को विनष्ट करते हैं तथा वनों को भी उसी प्रकार भस्मीभूत कर देते हैं। कुविन्नो अग्नि रुचथस्य वीरसद वसु शुष्कु विद्विसुभिः काम मावरत। 14 कुवित्तु तुज्यात् सातये धियः शुचि प्रतीकम् तमया धिया गृणे। अग्निदेव हमारे स्तोत्र के प्रति विशेष कामना से प्रेरित होकर सबके आश्रयभूत धन द्वारा हमारी अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करें। वे हमारे कल्याणार्थ श्रेष्ठ कर्मों की प्रेरणा बार बार प्रदान करें। हम अपनी निर्मल भावनाओं से उत्तम ज्योति स्वरूप अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं। घृत प्रतीकम व ऋतस्य धूर्षदम अग्निम मित्रम न समिधान रिंजते। इंधानो अक्रो विदथेशु दीद्यच्छुक्र वर्णामुदु नो यंसते धियम। हम आपके लिए यज्ञ संपादक और घृत द्वारा प्रज्वलित अग्निदेव को मित्र के समान प्रदीप्त करके सुशोभित करते हैं। वे अग्निदेव श्रेष्ठ प्रकाश युक्त दीप्तियों से संपन्न यज्ञों में प्रज्वलित किए जाने पर मनुष्यों की श्रेष्ठ भावनाओं में प्रखरता लाते हैं। अप्रयुच्छन्न प्रयुच्छद्भिरग्ने शिवेभिर्नः पायुभिः पाहि शग्मैः अदब्धेभिर द्रिपितेभिरिष्टे निमिषद्भिः परिपाहि नो जाह। हे अग्निदेव, आप निरंतर आलस्य रहित व्यवधान रहित हितकारक तथा सुखदायी साधनों से हमें संरक्षण प्रदान करें। हे पूजनीय अग्निदेव, आप अनिष्ट रहित होकर बिना किसी पीड़ा और आलस्य के हमारी संतानों को भी भली प्रकार सुरक्षा प्रदान करें।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 143वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण दीप्ति के साथ। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

श्रोताओं, जीवन कभी भी एक समान नहीं चलता। इसमें कभी सुख की ठंडी छांव होती है तो कभी दुख के काले बादल। ऐसे में प्रभु का नाम स्मरण करते रहने से हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं और दुख सहने की शक्ति मिलती है।

श्रोताओं, त्याग का प्रेम के साथ गहरा संबंध है। ऐसा संबंध कि ये निश्चय करना कठिन होता है कि कौन आगे है और कौन पीछे। प्रेम के बिना त्याग नहीं होता और त्याग के बिना प्रेम असंभव है।

श्रोताओं, जगत सर्वथा मिथ्या है, ये केवल स्वप्न है, केवल मरीचिका है। सृष्टि की रचना करके ईश्वर स्वयं अपने को प्रकट करता है।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त दीप्ति को। नमस्कार, आप बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। एक छोटे से अंतराल के बाद सुनिएगा हमारा अगला कार्यक्रम।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: ये मेरा इंडिया।
2: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
5: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं जैन धर्म के श्वेतांबर तेरा पंथ के 10वें संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

भारत विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और दर्शन का एक महकता हुआ गुलशन है। इसकी विभिन्नता में समाई हुई एकता इसकी विशेषता है। यही कारण है कि विश्व मानचित्र पर भारतवर्ष एक अटल नक्षत्र की तरह चमकता रहा है। अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय और भाषा की अंतर्निहित धाराओं को साथ लिए भारतीय संस्कृति की अविरल धारा प्रवाहित है। इन्हीं धाराओं में से एक है जैन धर्म। जीवन में राग द्वेष को जो जीत ले उसे जिन कहा गया और इनके द्वारा प्ररूपित धर्म जैन धर्म कहलाया। कालांतर में इसकी दो शाखाएं हुईं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर की एक प्रशाखा है तेरा पंथ, जो एक आचार, एक विचार और एक आचार्य की संयमित विचारधारा के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखती है। तेरा पंथ की स्थापना आचार्य भिक्षु के द्वारा की गई और तब से लेकर अब तक कुल 11 आचार्य हुए हैं। तेरा पंथ के महासूर्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तेरा पंथ के 10वें अधिशास्ता हुए। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित तेरा पंथ के 10वाधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी न केवल तेरा पंथ धर्म संघ के बल्कि संपूर्ण मानव समाज के पुरोधा थे। वे एक संत, योगी, आध्यात्मिक दार्शनिक, अधिनायक, लेखक, वक्ता और कवि थे। उनकी अनेक पुस्तकें और लेख भी प्रकाशित हुए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ का जन्म 14 जून सन 1920 को राजस्थान के टमकोर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम तोलाराम और माता का नाम बालू था। आचार्य जी का बचपन का नाम इंद्रचंद्र रखा गया, जो व्यवहार में नहीं आ सका। वो नथमल के नाम से ही पुकारे गए। दरअसल बहुत कम आयु में ही उनके दो भाइयों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए परिवार और गांव के लोगों ने एक टोटके के तहत उन्हें एक नथ पहना दी। इस तरह उनका नाम नथमल पड़ गया। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। माँ बालू ने उनका पालन पोषण किया। उनकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं, इस कारण उन्हें बचपन से ही धार्मिक संस्कार मिले थे। बचपन में बालक नथमल घंटों आकाश को देखते हुए लीन हो जाया करते थे। कहा जाता है कि बचपन में उनके घर पर एक ज्ञानी भिक्षु आया और उसने बालक नथमल के विषय में भविष्यवाणी की। उस ज्ञानी भिक्षु ने उनकी माँ से कहा, माँ, तू बड़ी भागवान है। बाहर जो तेरा बच्चा खेल रहा है वो एक दिन राजा बनेगा। उसकी कीर्ति दुनिया भर में फैलेगी। और वो भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। नथमल आगे चलकर आचार्य श्री महाप्रज्ञ के नाम से विख्यात हुए और उनके विचार और दर्शन ने अनगिनत लोगों को राह दिखाई।

जब बालक नथमल लगभग 10 वर्ष के थे, उस समय मुनि श्री छबील मलजी का चतुर्मास टमकोर में था। मुनि श्री छबील जी और उनके साथ आए साधुओं के सानिध्य ने बालक नथमल के मन में वैराग्य के अंकुर प्रस्फुटित कर दिए। तब बालक नथमल ने अपनी माँ के समक्ष अपनी भावना प्रकट की। इस पर उनकी माँ ने कहा, मैं भी साध्वी बनना चाहती थी, किंतु तुम छोटे थे इसलिए मैंने दीक्षा नहीं ली। उनके वैराग्य के भाव की परीक्षा के बाद आचार्य कालूगणी जी ने माता और पुत्र दोनों को दीक्षा की स्वीकृति प्रदान कर दी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुनि तुलसी के द्वारा हुई और माघ शुक्ल दशमी की पावन बेला में श्री भैरुदास जी भंसाली के बाग में पूर्ण परिषद के बीच जो 9 दीक्षाएं हुई, उनमें बालक नथमल और उनकी माता बालू जी की दीक्षा भी संपन्न हुई। इस तरह 29 जनवरी सन 1931 को बालक नथमल ने अपनी माता के साथ 13 पंथ के आचार्य कालूगणी जी से दीक्षा ग्रहण की। मात्र 10 वर्ष की आयु में बालक नथमल का जीवन एक जैन सन्यासी के रूप में आरंभ हुआ। शुरुआत में वो एक साधारण संत थे, किंतु समय के साथ उनकी प्रज्ञा इस तरह विकसित हुई कि वो मुनि नथमल से आचार्य श्री महाप्रज्ञ बन गए। उन्होंने मात्र 36 दिनों में पूरा उत्तराध्ययन सीख लिया। उन्होंने अणुव्रत आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई, जो गुरु आचार्य तुलसी ने सन 1949 में आरंभ किया था। अणुव्रत का अर्थ है लघुव्रत। जैन धर्म के अनुसार सामान्य गृहस्थ अणुव्रतों का पालन करते हैं और महाव्रत साधुओं के लिए होते हैं। ये व्रत अणुव्रत इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि साधुओं के महाव्रतों की अपेक्षा ये लघु होते हैं। महाव्रतों में सर्व त्याग की अपेक्षा रखते हुए सूक्ष्मता के साथ व्रतों का पालन किया जाता है, जबकि अणुव्रतों का पालन स्थूलता से किया जाता है। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 अणुव्रत बताए जिनका पालन प्रत्येक आमजन को करना चाहिए। और इसी हेतु गुरु आचार्य तुलसी ने आंदोलन चलाया, जिसमें आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने 13 पंथ के 9वें आचार्य मुनि तुलसी के मार्गदर्शन में दर्शन, न्याय, व्याकरण, मनोविज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद, जैन आगम, बौद्ध ग्रंथों, वैदिक ग्रंथों तथा प्राचीन शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। वो संस्कृत भाषा के आशुकवि थे। आचार्य श्री तुलसी संत परंपरा को आत्मसात कर आगे बढ़ते मुनि नथमल से बहुत प्रभावित थे। यही कारण है कि उन्होंने मुनि नथमल को पहले अग्रगण्य और फिर आगे चलकर सन 1965 में हिसार में निकाय सचिव नियुक्त किया। कुछ समय बाद उनकी प्रज्ञा से प्रभावित होकर आचार्य तुलसी ने उन्हें महाप्रज्ञ की उपाधि से अलंकृत किया। तभी से वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ के नाम से विख्यात हुए।

आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने सन 1970 के दशक में अच्छी तरह से नियमबद्ध प्रेक्षा ध्यान भी तैयार किया और शिक्षा प्रणाली में जीवन विज्ञान का विकास किया ताकि छात्रों का समग्र संतुलित विकास और उनका उच्च चरित्र निर्माण हो सके। जैन संप्रदाय के धर्मग्रंथ आगम के संपादन के कार्य में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें कई आगम कंठस्थ थे। उनका संस्कृत और प्राकृत भाषा का ज्ञान अद्भुत था। वो घंटों इन भाषाओं में प्रवचन कर सकते थे। उनके भाषा ज्ञान और शब्द संपदा को देखते हुए उन्हें चलता फिरता शब्दकोश कहा जाता था। सन 1978 में आचार्य श्री तुलसी ने राजस्थान के राज लदेसर में मर्यादा महोत्सव के अवसर पर उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और महाप्रज्ञ युवाचार्य महाप्रज्ञ हो गए। सन 1993 में राजस्थान के सुजानगढ़ में आचार्य तुलसी ने अपने आचार्य पद का विसर्जन कर दिया और युवाचार्य महाप्रज्ञ को आचार्य नियुक्त किया और वे तेरा पंथ के 10वें आचार्य बने। आचार्य श्री महाप्रज्ञ का साहित्य सृजन अत्यंत विशाल है। उन्होंने 300 से भी अधिक पुस्तकों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं तत्वबोध, गाथा परम विजय की, विकास का राजमार्ग, प्रेक्षा ध्यान दर्शन और प्रयोग, समझे मर्म धर्म का, जीव अजीव, जैन परंपरा का इतिहास आदि। संस्कृत भाषा में उनके द्वारा लिखी गई संबोधि को जैन धर्म की गीता कहा जाता है। जैन दर्शन मनन और मीमांसा में जैन दर्शन के गूढ़ तत्वों का समावेश किया गया है। जैन परंपरा में शटलेशिया का वर्णन मिलता है। लेशिया कर्म का एक सिद्धांत है। लेशिया अर्थात जो लिंपन करती है, यानी जो कर्मों को आत्मा से लिप्त करती है, जिसके द्वारा आत्मा पुण्य पाप से अपने को लिप्त करती है, वो लेशिया है। जैसे मिट्टी गेरू आदि के द्वारा दीवार रंगी जाती है, उसी प्रकार शुभ अशुभ भाव रूप लेप के द्वारा आत्मा का परिणाम लिप्त किया जाता है। संक्षेप में कहें तो मनुष्य के अच्छे बुरे भावों को लेशिया कहा जाता है। अपनी पुस्तक प्रेक्षा ध्यान लेशिया ध्यान में आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने कहा कि व्यक्ति में अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों का कारण उसकी लेशियाएं होती हैं। बुरी आदतों को उत्पन्न करने वाली 3 लेशियाएं होती हैं, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापूत लेशिया। इन 3 लेशियाओं से क्रूरता, हत्या, कपट, असत्य, प्रवंचन, धोखाधड़ी, विषय लोलुपता, प्रमाद, आलस्य आदि बुराइयां पैदा होती हैं। इसके अलावा पीत, पद्म और शुक्ल, ये 3 लेशियाएं अच्छी आदतें उत्पन्न करती हैं। जब हम 3 लेशियाओं के स्पंदन जगाते हैं तब हमारे भाव निर्मल हो जाते हैं। अभय, मैत्री, शांति, क्षमा आदि पवित्र भावों का निर्माण होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने सदा अहिंसा पर बल दिया। उनका मानना था कि हिंसा करके आप कभी जीत नहीं सकते, अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। 9 मई सन 2010 को सरदार शहर राजस्थान में उन्होंने महानिर्वाण प्राप्त किया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के विचार युगों युगों तक संपूर्ण विश्व को आलोकित करते रहेंगे। ऐसे युग प्रवर्तक और महान दार्शनिक, तेरा पंथ के महासूर्य, महातेजस्वी, महामनस्वी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम एक छोटी से अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है खेलना क्यों जरूरी है।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी। और फिर बाल सभा लेकर आपको तो पता ही है, मैं हर सप्ताह आपसे मिलती हूँ। बच्चों की बातें, बच्चों की दुनिया, उनके मन से जुड़े हुए विषय, और एक बार फिर से उन सब विषयों पर बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों, आप जानते हैं आज का विषय क्या है? आज का विषय है खेलना क्यों जरूरी है। बच्चों, खेल बचपन की ना सबसे सुंदर पहचान होते हैं, क्योंकि खेल केवल समय बिताने के माध्यम नहीं है, बल्कि ये खेल बच्चों को स्वस्थ, आत्मविश्वासी और मिलनसार बनाते हैं। खेल में एक बात और होती है बच्चों, वो होती है जीवन की छोटी छोटी लेकिन बहुत बड़ी बड़ी सीखें। अब आप सोचोगे कि खेल से कैसे सीख मिलती है, तो ये तो बच्चों आपको पता ही है कि मैं आपसे कोई भी बात, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, वही बात करती हूँ जिसमें कोई ना कोई सीख छुपी होती है। क्योंकि बच्चों, हमेशा हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो मीनिंगफुल हो, थॉटफुल हो, जो हम देख रहे हैं उसका कोई अर्थ निकले। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, है ना। अगर हम सिर्फ ऐवे ही कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो बच्चों वो समय का दुरुपयोग है। और इस विषय पर हमने पिछली बाल सभा में बात की थी। आज जो बच्चा मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में आने वाला था, उसका मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन आया, बोला दीदी मैंने ना आज ही सुबह बहुत ज़रूरी काम से जाना है। मैंने कहा किस काम से जाना है? तो उसने बताया कि एक कॉलोनी में उनकी खेल प्रतियोगिता है, उसमें जाना है। तो बोला दीदी सॉरी, मैं आज स्टूडियो ना आऊँ, आज मैं अपनी खेल प्रतियोगिता में चला जाऊँ। बस वहीं से मुझे ये विषय मिल गया। मैंने कहा ठीक है, तुम जाओ प्रतियोगिता में, न सिर्फ खेल के आओ बल्कि जीत के आओ। और आज मैं अपने सभी श्रोताओं से, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने श्रोताओं से बात करूँगी कि खेलना क्यों ज़रूरी है, और क्यों मैंने उस बच्चे से कहा कि हाँ यहाँ बच्चों से बात करना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि जो प्रतियोगिता में तुम नाम लिखवा चुके हो, पहले जाकर उसमें खेलो, और ना सिर्फ खेलो बल्कि जीतने का प्रयास भी करो। क्योंकि बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि आज के समय में जब बच्चों का अधिक समय स्क्रीन पे जा रहा है, और ये बात बिल्कुल सच भी है, छोटे छोटे बच्चों को मैं इतने छोटे बच्चों को देखती हूँ, 4 साल के, 5 साल के, जो खाना खाते वक्त अपनी मम्मा से ये बात ज़रूर कहते हैं कि थोड़ी सी देर के लिए फ़ोन दे दीजिए। मतलब भाषा में तोतलापन है, मतलब आप सोचिए मम्मा पानी पीना है लेकिन स्क्रीन देखते हुए पीना है। कितने बच्चे छोटे छोटे वजहों से स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल ऑनलाइन स्टडी भी है, उसका एक रीज़न है। लेकिन बच्चों, जितना ज़रूरी है उसके अलावा हमें स्क्रीन पर समय नहीं बिताना है, बल्कि हमें खेलने जाना है। अब मैं पूछूं आप लोगों को कौन कौन से खेल पसंद हैं, तो वहाँ से आवाज़ आएगी कि मुझे कबड्डी पसंद है, क्रिकेट पसंद है, रस्सी कूद पसंद है, है ना, जो मैं अपने दोस्तों के साथ रोज़ खेलता हूँ या खेलती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को खेल खुश भी रखते हैं, पता है आपको। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे वाले समय में ले जाऊँ, जब हम लोग खेलते थे, ये सारे खेल तो खेलते ही थे, इसके साथ साथ कुछ और भी खेलते थे बच्चों। क्या होता था कि मम्मियाँ ना दोपहर में काम करके थक जाती थी। अब जब थक गई तो उन्हें एक चीज़ ये भी है कि दोपहर में धूप बहुत है, तो धूप में एकदम बाहर तो खेलने आपको नहीं जाना है, लेकिन जब तक मम्मी सो रही हैं, जब तक माँ और घर में दादी नानी ये लोग सो रही हैं, तब तक बच्चों का हल्ला करना, शोर करना बिल्कुल मना था। और हम लोग अपनी पेरेंट्स की ना बात बहुत मानते थे। तो अब ऐसे में क्या खेल खेलें कि आवाज़ भी ना आए, तो छोटे छोटे से खेल बना लेते थे हम लोग। जैसे आंगन में गए और अष्टाचंगा खेलने लगे। अब आप सोचो अष्टाचंगा क्या होता है, इमली बहुत खाते थे बच्चे गर्मियों में ना, इमली खा रहे हैं तोड़ तोड़ के पेड़ों से, उसके जो बीज निकल रहे उससे हम लोग खेलते थे। आप लोग जिसे पासा और ये सब खेलते हो, लूडो खेलते हो आप लोग, उसी तरीके से हम लोग पत्थर पे किसी चीज़ से, चौक से या और पेंसिल किसी ऐसी चीज़ से जिससे वहाँ पर निशान बन जाए, एक चौकोर खाना बना लेते थे और उसमें अष्टाचंगा खेलते थे। सारे दोस्तों को बहुत मज़ा आता था। और फिर जैसे ही सब लोग जग जाते थे और हमें परमिशन मिल जाती थी थोड़ा शोर मचाने की, थोड़ा ऊधम करने की, तो हम लोग पिट्ठू खेलते थे, कंचे बहुत खेलते थे बच्चे। उससे एक चीज़ होती थी बच्चों, जो कंचे कई जगह उसे अंटा भी बोलते थे, उससे ना निशाना बहुत अच्छा साध पाते थे। तीरंदाजी बच्चे छोटी छोटी जगहों पे बहुत करते थे, गुलेल खेलते थे। आप सोचो, और तो और पिट्ठू के अलावा खो खो खेलते थे। खो खो तो अभी भी अब बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। एक खेल हुआ करता था गिल्ली डंडा, उसमें छोटी सी लकड़ी से बच्चे अपने लिए वो बना लेते थे। और तो और जो साइकिल के पुराने टायर होते थे ना बच्चों, उसको भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे छोटी सी लकड़ी से बहुत दूर दूर तक दौड़ा कर ले जाते थे। अब आप सोचिए कि इस खेल में क्या है। इस खेल में जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि बहुत सारा खर्चा नहीं है, है ना? ठीक है, हमको हर चीज के लिए बाजार का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है। हम अपने खेल न सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि उनको बना भी खुद रहे। अब आप सोचिए कि जो बच्चा साइकिल के पुराने टायर को एक लकड़ी से दूर तक दौड़ाता हुआ ले जा रहा है, उसका फोकस कितना अच्छा हो जाता होगा। सोचिए सोचिए, क्योंकि ये सोचना जरूरी है बच्चों। अगर वो बच्चा अपनी मम्मा से रोज कहे कि आज मुझे ये खेल खेलना है, कल मुझे वो खेल खेलना है, आज ये बाजार से ले आइए, आज वो बाजार से, तो पता चलता है कि गर्मियों की छुट्टियों में मम्मी पापा का बजट बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है। तो हमको ये नहीं करना है। हमको ऐसे खेल खेलने की कोशिश करनी है जिसको हम थोड़े थोड़े खुद भी बना सकें। और सच बताऊं बच्चों, इसमें मजा भी बहुत आता है। एक और खेल हम लोग खेलते थे, वो पता है क्या था? उस खेल का नाम था किल किल कांटे। अजीबो गरीब सा नाम है ना, पर मुझे आज था कि मैं स्टूडियो में जब आप लोग के साथ खेलों की बात करूंगी तो वो सारे खेल आपको बताऊंगी जो हम लोग खेला करते थे, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन तब बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होते थे बच्चों, है ना, कि छोटी छोटी सी चीज़ के लिए हम लोग बाजार भाग जाए, नहीं होता था। इनफैक्ट बाजार में भी इतने खेल नहीं थे जैसे आजकल मैं देखती हूँ, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों काम करें उसके लिए नए नए गेम्स आ रहे हैं, नई नई बुकलेट्स आ रही हैं। ठीक है, बाजार में नई चीज़ों का इन्वेंशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि आप जब खुद कोई खेल बनाते हैं उसमें जो मजा आता है, उसमें जो आपका ब्रेन यूज होता है ना, वो कहीं नहीं होता और कभी नहीं होता, सच मानिए। जैसे वो किल किल कांटे में हम लोग क्या करते थे कि आपको खूब सारी लाइनें खींचनी है लेकिन ऐसी जगह जो दूसरे को पता ना चले, वो फिर आपकी लाइनें ढूंढता था कि आपने कहां बनाई है और उसको काटता था। तो जो आपने लाइन बनाई है उसने अगर सारी काट दी तो वो जीत गया, और नहीं तो बाकी बच्चे ना एक कपड़ा लेते थे और उसकी पीठ पर कपड़े से मारते थे, तो चोट भी नहीं लगती थी, मजा भी आता था और खूब दौड़ा भागी होती थी, खूब दौड़ा भागी होती थी। ऐसे ही खो खो खेलते वक्त हम लोग बोलते थे कि घोड़ा जब मार खाए पीछे देखा मार खाए, तो ये सब चीजें हमें थोड़ा हमारी भाषा को भी समृद्ध करती थी। इसलिए मैं आज आपसे खेलना क्यों जरूरी है इस विषय पर बातचीत करना चाह रही थी। एक बात और थी कि मेरी कुछ दोस्तों को ना गुड़िया के कपड़े बनाना बहुत पसंद था। अब वो अपनी मम्मी से पुराने कपड़े लेती थी, उसमें फिर सुई धागा लेती थी और हाथों से छोटे छोटे से कपड़े बनाती थी कैंची से काट काट के, मुझे बहुत अच्छे से याद है। इनफैक्ट उनमें से एक दोस्त थी जिसको लगता था कि गुड़ियों को थोड़े से वेस्टर्न कपड़े पहनाने चाहिए, तो वो पता है किससे कपड़े बनाती थी? आश्चर्य करोगे, वो बैलून से कपड़े बनाती थी। वो गुब्बारे को पहनाकर गुड़िया को सजाती थी। और मैं आज आपको बताते हुए बहुत गर्व भी हो रहा है कि मेरी वो दोस्त इंडियन फैशन इंस्टीट्यूट में है। तो आपके बचपन के खेल की यात्रा कहाँ तक जाएगी बच्चों, ये किसी को नहीं पता, है ना? और आपको पता है आजकल आप देखते होंगे कि बच्चे चूंकि स्क्रीन टाइम बहुत है और चूंकि आंखों की बहुत एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, पहले हरियाली देखना, घूमना, टहलना, दूर दूर निशाना साधना, तो आपने देखा होगा कई बच्चों को आजकल बहुत कम उम्र में चश्मे लग जाते हैं। पहले हमारे यहाँ सुई धागा रेस भी होती थी, सुई में धागा डालो। अब सोचो आप सुई में धागा डालना, अब अगर आप आज कोशिश करना कि अपनी मम्मी पापा को बोलो कि एक सुई और धागे की आपसे रेस करवाएं, कितने लोग सुई में धागा डाल पाएंगे ये आप मुझे अगली बाल सभा में जरूर बताना, ठीक है? या तो आप मुझे, जो बच्चे यहाँ स्टूडियो में आएंगे वो बताएंगे, या तो मैं कैसे ना कैसे अपने बच्चों से पूछ ही लूंगी, आज पार्क जाऊंगी शाम को तब भी पूछूंगी और ये बोलूंगी कि घर पे जाके एक्सरसाइज करो। अब आप देखिए कि सुई में धागा डालना कहने को बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन उसमें भी बच्चों आपका फोकस काम आता है ना। आप कितने ध्यान से सुई में जो छोटा सा बहुत बारीक सा छेद है उसको देख पा रहे हो और उसमें धागा पिरो पा रहे हो, है ना। ये छोटी छोटी सी चीज है, जैसे बैलेंसिंग के लिए एक बहुत अच्छी होती थी, चम्मच में नींबू को रखकर और फिर रेस करवाते थे, तो ये मैंने अभी भी बहुत देखी है, अभी भी बच्चे बहुत खेलते हैं। तो इससे क्या होता था, इससे बैलेंसिंग आती थी। अब ये संतुलन, ये फोकस, ये हर चीज क्या आपकी जिंदगी में काम नहीं आती बच्चों? आती है ना। बिल्कुल ऐसे ही हमें ये समझना होगा कि खेलों से दरअसल हमारी जिंदगी में क्या असर पड़ रहा है, क्या खास बात हम सीख पा रहे हैं, है ना। क्योंकि बैलेंस तो वैसे भी बहुत जरूरी है लाइफ में। अब जैसे एक छोटी सी बात बताऊं आपको, एक बच्ची है, वो जहां मैं रहती हूँ उसके पास में ही रहती है। अब उस बच्ची में मैं हमेशा देखती हूँ कि थोड़ा व्यवहार में संतुलन कहीं ना कहीं कम हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जैसे उसे बाहर खेलना पसंद है तो वो पूरे समय बाहर खेलना चाहती है, ठीक। अब उसका देखिए बैलेंस्ड बिहेवियर कैसे डगमगा रहा है कि मैंने देखा कि कल वो बहुत धूप में भी ना सबके घर जाकर बच्चों को बुला रही थी, बाहर आओगे खेलने आओगे। अब क्या हुआ कि एक दो घरों में गई वो, मैं वापस लौट रही थी कहीं से कुछ सामान लेकर, तो मैं चुपचाप खड़े होकर उसकी गतिविधियां देख रही थी, तो उसने किसी एक का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी मम्मी ने बोला नहीं बेटा अभी हम नहीं भेजेंगे क्योंकि धूप बहुत है। फिर उसने क्या किया, बगल वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया, आंटी उसको भेज दीजिए ना, मुझे उसके साथ खेलना है। तो उसकी मम्मी ने भी मना कर दिया कि नहीं बेटा धूप बहुत है अभी नहीं भेजेंगे, शाम को आना। अब जब दो तीन घरों में उसे मना किया गया तो चूंकि मैं सिर्फ उसी को देख रही थी, वो बच्ची थोड़ी देर बाद ना रुआंसी हो गई, तो मैं उसके पास गई क्योंकि मैं जानती हूँ और मैं, आप लोगों को तो पता ही है मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, कोई बच्चा दुखी हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उसके पास गई, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा बेटा क्या हो गया, जबकि मैं देख सब रही थी, समझ सब रही थी कि यहाँ चल क्या रहा है। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, उसने मतलब ऐसा लगा जैसे वो रोने के लिए तैयार बैठी थी, वो रो पड़ी एकदम से, आंटी मेरे साथ कोई खेलने नहीं आता। मैंने कहा सब तो आते हैं, कहाँ आया आंटी, मैं पिछले कितनी देर से सबके घर पे जाके बैल बजा रही हूँ कोई नहीं आया। मैंने कहा बेटा टाइम देखो कितना बज रहा है, तो उसने टाइम देखा, उसने बताया कि 3 बज रहा है। फिर मैंने कहा कि इस वक्त धूप देखो, तो ऊपर देखा उसने, मैंने कहा ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है सच में, मतलब ऐसा लगता है थोड़ी देर अगर खड़े हो जाओ बाहर तो जैसे जल रहे हैं। मैंने कहा इतनी धूप में आप कहाँ खेलोगे? बोले वो आंटी पेड़ के नीचे खेलूंगी। मैं कहा ये जो इतना धूप से एक्सपोजर होगा आपका उसका क्या, और कई बार लू जैसी भी स्थिति हो जाती, गर्म हवा भी चलती है धूप में। तो वो रोने लगी, बस उसको एक ही जिद थी कि नहीं मुझे अगर मैं बुलाऊं तो तुरंत दोस्त आ जाने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो वो अच्छे दोस्त नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा बहुत बैलेंस्ड बिहेवियर रखना ही पड़ेगा, आपको टाइम देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि अगर किसी ने आपसे मना किया है तो क्यों मना किया है। कई बार बच्चों हम सोचते हैं ना कि हमारे किसी दोस्त ने या दोस्त की मम्मी ने या उसकी बड़ी दीदी ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया तो मैं देखती हूँ बच्चे तुरंत बोलते वो अच्छी नहीं है, उसकी दीदी अच्छी नहीं है, उसकी मम्मी मेरी बात नहीं मानती है। आजकल मैं ये वाले चर्चाएं बहुत सुन रही हूँ बच्चों से, तब मुझे लगता था कि मैं बाल सभा में बैठूंगी तो आपसे ज़रूर बैलेंस्ड बिहेवियर की बात करूंगी बच्चों, है ना। पता है इसके लिए आप लोग छोटी छोटी प्रैक्टिस करिए, मैं जो बाद में आपसे संकल्प के वक्त करवाती हूँ ना कि हम एक धीमा संगीत सुनेंगे, शांति से बैठेंगे, संकल्प लेंगे कि हम कुछ अच्छी चीज़ें करें, हम क्या करें और क्या ना करें, तो बच्चों सबसे पहले आप अपने अंदर धैर्य लाइए, सबसे पहले अधीर होना बंद कीजिए, है ना। थोड़ा शांति से 2 मिनट सोचना शुरू कीजिए, जो आपका कंसंट्रेशन टाइम है ना बच्चों वो बहुत कम होता जा रहा है। मैं देखती हूँ एक बच्चा एकदम बैठता है, फिर दूसरे काम में लग जाता है, दूसरे काम से तीसरे काम में लग जाता है, और जब तक उसको उसके मन की चीज ना दे दी जाए वो तब तक शोर करता है। ऐसे कितने बच्चों की कहानियां है मेरे पास बच्चों, पर मुझे पता है जो बच्चे मेरी बाल सभा सुनते हैं, जो मेरे साथ स्टूडियो में आते हैं और जो हर बार मुझे बहाने बहाने से कहीं कभी स्कूल जाती हूँ मैं तब बच्चे बताते हैं कि बाल सभा सुनकर दीदी हमने ये सीखा। तो बच्चों जो भी मुझे सुन रहा है ना, एक चीज़ ज़रूर सीख लेना, अधीर होना नहीं अच्छी बात नहीं है। हाँ, आपको किसी ने कुछ चीज़ के लिए मना किया है तो आप खुद भी आत्म मूल्यांकन कीजिए। बच्चों रुकिए, ठहरिए, सोचिए कि आपको इस काम के लिए मना क्यों किया गया। कोई ना कोई कारण जरूर होगा। वापस अपने विषय पर आ जाएं कि खेलना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज बहुत से बच्चे, आपने देखा ही है कि किस तरीके से अभी जो बातें मैं बता रही हूँ, एक दूसरे से गुस्सा हो जाना, एक बहुत खास बात है, खेल भावना की विकास होता है खेल खेलने से। इसमें जो सबसे बड़ी सीख है ना, जब बच्चे टीम में खेलते हैं तो वो एक दूसरे के साथ सपोर्ट सिस्टम सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा बास्केटबॉल हो, या आपने देखा होगा कि फुटबॉल हो, या इवन वॉलीबॉल हो, ये जो आउटडोर गेम है और जो टीम गेम है, आपने देखा होगा कि सिर्फ जो गोल करता है या जो बॉल को बास्केट में डालता है वही इम्पॉर्टेंट नहीं है, वही चैंपियन नहीं है। जो बॉल को पीछे से लेते चला रहा है, लाता चला रहा है, नेट के पास तक जो बॉल को लाया है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है ना। तो कई बार हमें ये होता है ना, अरे ये काम मेरे कारण हुआ। कई बच्चे आपने देखा होगा, जब बहुत अच्छे आप जाते होगे, खेलते होगे पार्क में, कहीं टीम में, स्कूल टीम की तरफ से आप खेल रहे होगे, या आपने देखा होगा स्कूल में भी कई बच्चों को ना हल्का सा, बहुत छोटा सा ही सही, पर अहंकार जैसा आ जाता है, अरे उस मैच में तो मैंने गोल मारा था, अरे उस वाले गेम में तो मैंने सिक्स मारा था। नहीं, पूरी टीम का सपोर्ट था आपके उस सिक्स के पीछे। पूरी टीम चाहती थी कि आप जब नेट तक बॉल पहुंच जाए तो आप उसको बास्केट में डाल दें, सब चाहते थे, समझ रहे हैं आप। तो बच्चों कभी भी ये मत सोचिएगा कि खेल सिर्फ खेल है, खेल में बहुत छोटी छोटी सी, इतनी माइक्रो सीख छुपी हुई है कि आपको ना अपने दिमाग का लेंस लगाना पड़ेगा कि अरे इसमें तो ये भी छुपा था। जैसे अभी मैंने बताया ना कि टीम में जब आप रहते हो तब आप सपोर्ट सिस्टम सीखते हो। दूसरा, जिन बच्चों को लगता है कि हार गए तो झगड़ लिए, आपने कई जगह देखा होगा कि कई बच्चे एकदम से खेलते खेलते अगर हार रहे तो बैट पटक देते हैं, या झल्ला जाते हैं, या उनका टोन ऑफ वॉइस थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता फिर। तो बच्चों हमें वो चीज़ें भी सीखनी है और हमें वो चीज़ें भी सोचनी है। अब अगर हम बात करें कि जैसे अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही मुझे एक बच्चे के पापा बता रहे थे कि वो बहुत मोबाइल पे खेलता है, मतलब हर खेल मोबाइल पे खेल लेता है, और बच्चा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। अब कौन कौन से गेम खेलता है, तो आजकल तो क्रिकेट भी आप मोबाइल पे खेल सकते हो, आजकल तो आप फुटबॉल भी मोबाइल पे खेल सकते हो, आप गाड़ी की रेस मोबाइल पे लगाते रहते हो। लेकिन आप बच्चों बस मुझे ये बताओ कि हाथ में स्क्रॉल करते करते आप कितना भी खेल लेना, उससे क्या होगा, उससे आप बैठे बैठे अनफिट होते जाओगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी फूड क्रेविंग बढ़ती है ना। फिर आप सोचोगे कुछ पैकेट में आपको खाने को मिल जाए, फिर आप क्या करोगे, फिर आप कुछ खा लोगे, फिर आप टॉफी चॉकलेट मुंह में डाल लोगे, और फिर थोड़ी देर बाद आप थक जाओगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं खेल रहे हैं, खेल कोई और ही रहा है जो वो खेल बना रहा है मोबाइल के लिए, है ना, और आप उसमें बंधते जा रहे हो, ठीक है। और बच्चों फिर आप क्या करते हो, धीरे धीरे आप रियलाइज करना, आप अकेले होते जाते हो, क्योंकि आप बाहर नहीं जा रहे, मोबाइल बात तो कर नहीं सकता आपसे, है ना, बस वो आपके लिए खूब सारी गाड़ियां दौड़ाता जा रहा है, आप स्क्रॉल करते जा रहे हो और आपको लग रहा है आप खेल रहे हो। और ये बात मैं कर रही हूँ अपने छोटे छोटे बच्चों की, 7 साल के 8 साल के 9 साल के ऐसे बच्चों की। तो बच्चों ये बात आपको बहुत समझना जरूरी है कि जब आप बहुत समय मोबाइल पर गेम खेलते हुए बिताओगे, आपका दोस्त कौन बचेगा, सोचो आप किसके कंधे पर हाथ रखोगे। अगर आप स्कूल जाते वक्त आपके दोस्तों से बात नहीं करोगे तो आप बात करने का तरीका ही भूल जाओगे। सच्ची मानिए, मैंने बहुत बच्चों में ये चीज देख रही हूँ कि वो समझ ही नहीं पाते कि क्या बात करें, हेलो बस चुपचाप बैठ गए, ये नहीं पूछते आज तुमने क्या पढ़ा, कहानी पढ़ी क्या कोई, और आज तुम खेलने गए थे कौन सा खेल खेल रहे हो, तो क्या बताओगे आप? मैं मोबाइल पर गाड़ियों की रेस लगा रहा हूँ। क्या बताओगे आप? मैं मोबाइल पे वो खेल रहा हूँ, क्रिकेट। मैं मोबाइल पे ही बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। तो ठीक है, आपके टीम प्लेयर्स कौन है? वो नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप अकेले रहते हो। जब आप स्क्रीन पे खेलते हो तब आप अकेले होते हो, और जब आप बाहर खेलते हो तो आपके साथ पूरी टीम होती है जो आपको एक संवेदनशील नागरिक बनाने में बहुत सपोर्ट करती है। क्योंकि जब कोई गिर जाता है तो आप उसका हाथ पकड़ के उठाते हो, जब किसी के चोट लग जाती है तो आप उसको पानी से साफ करते हो, उसके घर तक उसको लेके जाते हो। तो इससे आपको बिहेवियर में बहुत चेंजेस आने लगते हैं। आप अचानक से हेल्पिंग होने लगते हो, आप अचानक से बहुत मीठा बोलने लगते हो, आप अचानक से फ्रेंडली हो जाते हो, है ना? लेकिन ये सब कब आता है? जब आप घर के दरवाजे खोलते हो, अपने अकेलेपन से बाहर निकलते हो, जब आप लोगों के बीच उठते बैठते हो। नहीं तो क्या होता है? नहीं तो एक कमरा, आपकी स्क्रीन, आपका हाथ, और उससे आपका सारा खेल, खेलते जा रहे हो। तो बच्चों, मैं नहीं सुनूं अब कि कोई भी बच्चा स्क्रीन टाइम ज़्यादा ले रहा है। मैंने आज खेल क्यों ज़रूरी है इस विषय पे बात ही इसलिए रखी थी कि ये जो छुट्टियां चल रही हैं इसमें आप कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलोगे, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, जूडो हो, कराटे हो, कुछ भी हो, सेल्फ डिफेंस से लेकर गेम जो भी जुड़े हुए हैं वो आपको ज़रूर सीखने चाहिए, वो भी आपको काम आते हैं, है ना? वो खेल ज़रूर खेलिए, क्योंकि यही खेल बच्चों आपको न सिर्फ फिट करेंगे बल्कि आपको, मैं बार बार बोलती हूँ कि खेल से खेल भावना का विकास होता है, और खेल भावना से आप एक बहुत अच्छे बच्चों में बढ़ते जाते हो, तब्दील होते जाते हो। आपकी अचानक से सारी कमजोरियाँ आपको बाय बाय कहने लगती हैं, है ना? और अब ऐसी ही एक, आपको तो पता ही है एवरेस्ट की बातें हम लोग कर रहे हैं आजकल, तो अब हम फिर से आपको सुनाते हैं बचेंद्री पाल जी का आगे का हिस्सा कि उनका जो प्रथम अभियान था एवरेस्ट का वो कैसा रहा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिसमें वो हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। काठमांडू में कुछ दिन बिताने के पश्चात हम जीरी चले गए, जो वहां से 4-5 घंटे की यात्रा पर था। जब हमने नामचे बाजार तक की 8 दिन की यात्रा आराम से की, पर्वतों के स्वभाव के विपरीत हम रोज लगभग 1000 मीटर ऊपर नीचे चढ़ते उतरते, जिससे हम में मजबूती आई और ऊंचाइयों के वातावरण और जलवायु के अनुकूल स्वयं को ढालने में हमें मदद मिली। रास्ते में हमें हसमुख और मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ उस क्षेत्र के व्यक्ति विशेष शेरपा मिले। नामचे बाजार शेरपा लैंड की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरी क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को यहीं से निहारा था, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है, और मुझे ये नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का एक बड़ा फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज जैसा लग रहा था। मुझे बताया गया कि ये दृश्य शिखर की ऊपरी सतह से लगभग 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ का पत्थर उड़ता रहता था। बर्फ का ये ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। हम पर्वतीय लोग सदा से पर्वतों की पूजा करते आए हैं, अतः इस भय मिश्रित प्रेरणास्पद दृश्य के प्रति मेरे ऊपर हावी भावना एक प्रकार से श्रद्धा भाव की थी। मैंने अपने हाथ जोड़े और सागर माथा की तरफ श्रद्धा से सिर झुकाया। एक दिन के बाद हम प्रसिद्ध थ्यांग बोके मठ तक पहुंचे, जहां मूर्तिमान थामा ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी सफलता तथा सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की। थ्यांग बोके न केवल सुंदर था बल्कि उसकी 4000 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई हमारी जलवायु अनुकूलता प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त थी। तो बच्चों, ये पर्वत पर जाने की, आप जो हिमालय तक पहुंचने की यात्रा सुन रहे हैं बचेंद्री पाल जी की, वो भी हमें हर पल यही संदेश देती है कि हमें जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, थोड़ी हिम्मत करना ज़रूरी है। तो बस एक बार जो आप सोच लें उसे पूरा करके दिखा दीजिए। और यहाँ जो बच्चे अभी, हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट टीम में हो, किसी स्टेट टीम में हो, या फिर हमारे यहाँ के कुछ बच्चे नेशनल भी खेल रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि जूनियर, सब जूनियर, ऐसे बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। और एक बार आप स्कूल का जो खेल विभाग है बच्चों, उसमें ज़रूर जाना। और जो आपके कोच, जो आपके स्पोर्ट्स टीचर, जो भी होंगे, उनसे मिलकर कहना कि आपको कोई ना कोई खेल ज्वाइन करना है। और जब आप कोई खेल खेलने लगोगे तो सच बोल रही हूँ, आपकी मनीषा दी को बहुत अच्छा लगेगा। और यही बाल सभा में मेरी आपसे बातें करने का जो पूरा पूरा मंतव्य है, वो यही है कि हम यहाँ जो बोलते हैं ना बच्चों स्टूडियो में बैठ के, बस उसका असर बच्चों पे पड़े, है ना। तो अगर आप में से दो बच्चों ने भी अपना स्क्रीन टाइम कम कर दिया, दो चार बच्चे अगर किसी खेल टीम में चले गए, तो सच मानिए मेरा तो पर्पस पूरा हो गया। और रेडियो आज़ाद हिंद भी यही चाहता है कि जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमको सुनते हैं ना, बस वो धीरे धीरे अच्छे मार्ग पर चलें, है ना। एक बात चलते चलते और बताऊंगी कि जो पारंपरिक खेल थे ना, जिनके बारे में आज मैंने चर्चा की थी आपसे, उसके बारे में अपनी मम्मी से, अपने पापा से पूछना कि आप लोग कौन से खेल खेलते थे जब छोटे थे, वो ज़रूर कुछ ना कुछ मज़ेदार कहानी किससे बताएंगे। और तो और एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ना, धीरे से अपनी दादी, दादा, नाना, नानी से भी पूछ लेना, दादू आप छोटे थे तो कौन सा खेल खेलते थे, देखना कितनी मज़ेदार कहानियाँ निकल के आएंगी और देखना कितने अच्छे अच्छे खेल आपको पता चलेंगे। और फिर आप उन पारंपरिक खेलों को खेलने की कोशिश करना, उससे क्या होगा, अच्छी चीज़ें अगली पीढ़ी तक ऐसे ही पहुँचेंगी। तो बच्चों अब चलने का वक्त आ गया है, आपको पता ही है हमारा आपसे जो अंतिम संवाद होता है वो होता है संकल्पों का। तो वो संवाद शुरू करते हैं एक धीमा संगीत और उसके बाद अपनी बातें। शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अब आज खुद से ये प्रॉमिस कीजिए कि आप कोई ना कोई खेल जरूर खेलेंगे। जो भी बच्चे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, वो अगर वीडियो गेम या स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, उसे कम करने का प्रयास जरूर करेंगे। एक इंडोर गेम साथ ही साथ एक आउटडोर गेम में महारत हासिल करने का प्रयास करेंगे। अपनी कॉलोनी, अपने मोहल्ले में या जहां भी आप रहते हैं, आसपास बच्चों की एक टीम बनाएंगे और सप्ताह में कम से कम 3 दिन कोई ना कोई टीम गेम खेलेंगे, ताकि आप में खेल भावना का विकास हो। अब आंखें आप खोल सकते हैं और अब मुझे बाय बाय भी कह सकते हैं, क्योंकि बाल सभा का समय पूरा हो चुका है। बच्चों चलती हूँ, अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए और ये प्रॉमिस कीजिए भले ही चाहें तो रेडियो के पास आ जाइए। अगर आप मुझे कार में सुन रहे हैं, मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो अपने मन ही मन खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने मम्मी पापा की बात मानेंगे और कोई ना कोई खेल में हिस्सा ज़रूर लेंगे। तो चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए, गर्मी से खुद को बचा कर रखिए, थोड़ा सा धूप में कम निकलिए जैसे मैंने उस बच्चे की कहानी सुनाई थी, और शाम को खूब जम कर खेलिए। बाय बाय और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।
2: बाल सभा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय था खेलना क्यों ज़रूरी है। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना दीति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और आपके साथ थी मैं आपकी दोस्त मनीषा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। एक अंतराल के बाद सुनिएगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम टैग गुरु।
2: मैं हूं शिवानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। हमारे टेक गुरु प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये प्रोग्राम विशेष रूप से उन सभी तकनीकी प्रेमियों के लिए तैयार किया गया है जो तकनीक की दुनिया में यानी टेक्नोलॉजी में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और तकनीक की दुनिया में एक सच्चे गुरु बनने की कोशिश करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स और फास्टिंग, यानी मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग कम करना, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एकता सरीन जी, जो कि एक प्रैक्टिसिंग काउंसलर हैं, जो बिहेवियर काउंसलिंग और स्पेशली टीनेज काउंसलिंग में सर्टिफाइड करियर काउंसलर है, प्रैक्टिसिंग विद NCERT। आपका बहुत बहुत स्वागत है एकता सरीन जी।
3: नमस्कार शिवानी जी।
2: जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आखिरकार ये जो डिजिटल डिटॉक्स है या मोबाइल फास्टिंग कह लीजिए, डिजिटल डिवाइसेस से फास्टिंग है, डिटॉक्स है, ये क्या है और इसके लाभ क्या है?
3: चलिए इसको एक बहुत साधारण लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं
2: जी।
3: सपोज शिवानी जी, आपको कल एक पार्टी में बुलाया गया था, आप एक पार्टी से होके आए और क्योंकि पार्टी में बहुत लावश फूड था और आपको लगा कि आपने ओवर ईटिंग कर लिया है। सो नेक्स्ट डे आप जो रेगुलर मॉर्निंग में आप उठते हो, एक अच्छा फील करते हो, आपको लगा बहुत आप हैवी फील कर रहे हो, तो आपने जो प्लान किया था कि आज शायद आप राजमा चावल खाने वाले हैं, तो आपने कहा कि आज मैं राजमा चावल ना खा के क्यों ना खिचड़ी खाऊं या थोड़ा सा सूप ले लूं, तो मेरे को लाइट फील कर
2: लाइट फील होगा। हाँ।
3: और मैं वैसा करती हूँ, राइट। सिमिलरली हम बोलते हैं कि जिसको डायबिटीज हो जाता है उसको एक्सेस शुगर के कारण बोला जाता है कि आपको डायबिटीज हो गया, तो शुगर कंट्रोल करने की जरूरत है आपको। सिमिलरली इज डिजिटल डिटॉक्स या मोबाइल फास्टिंग, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं। जैसे आप, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ चुका है हर एक का, अभी आप बच्चों को देखिए, बुजुर्गों को देखिए, एज अ प्रोफेशनल हम सभी, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ चुका है कि हम हर मिनट में देखते हैं कि हमारा क्या नोटिफिकेशन आया, हम अपना सोशल नेटवर्क जो हमारा अभी तक था वो हमारा कम हो गया है, हमारी सामाजिक गतिविधियां जिसमें हम अक्सर भाग लेते थे वो कम हो गई हैं। तो इट इज समथिंग लाइक अपने उस स्क्रीन टाइम को कम करना। कम हम अलग अलग वेज में कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज डिजिटल डिटॉक्स।
2: वैसे डिजिटल डिटॉक्स करने के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य उससे सुधर सकता है, तो क्या ये सच्ची बात है कि उससे हमारे स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है?
3: बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल शत प्रतिशत ये बात बोल सकती हूँ। सपोज कीजिए आप दिन में 6-7 घंटे स्क्रीन टाइम आपका रहता है और आप उसको कोशिश कीजिए कि मैं एकदम नहीं बोलूंगी आप 4 घंटे के लिए कम कर लीजिए, 1 घंटे से आप शुरू कीजिए, आप 1 घंटा उसे कम करने की कोशिश करते हैं, तो आप डेफिनेटली आप देखेंगे आपका नींद, जो आपका स्लीप पैटर्न है उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आता है। एक बार हमारा स्लीप पैटर्न इम्प्रूव होता है, जो आजकल बहुत सारे लोग इंसोम्निया के शिकार हैं, उससे आपका डेफिनेटली, अगर आपका स्क्रीन टाइम कम होगा, आप उसको क्रिएटिव वे में यूज करोगे या सिंपली रिलैक्स करोगे, उससे आप बहुत हद तक आपका जो मानसिक तनाव है, जो आपका मेंटल इलनेस है, वो डेफिनेटली कम होगी।
2: यानी कि बहुत हद तक जो मानसिक तनाव हमें हो रहा होता है वो बहुत कुछ डिवाइसेस की, इंटरनेट, मोबाइल्स एंड फोन्स की वजह से होता है। मतलब हम उत्सुक हो जाते हैं अपने नोटिफिकेशंस के लिए क्या आ रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत मानसिक तनाव भी हो सकता है, सोशल प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है। वैसे क्या मोबाइल फास्टिंग की अगर बात करें तो उसके दौरान कौन कौन सी गतिविधियां की जा सकती है जब हम मोबाइल फास्टिंग कर रहे हैं?
3: ये अभी मैंने अपने एक कुछ स्टूडेंट्स के साथ में इस प्लान को, इस पर्टिकुलर मोबाइल फास्टिंग को स्टार्ट किया है। उसमें मैंने उनको ये बिल्कुल नहीं बोला कि आप दिन भर के लिए मोबाइल मत यूज कीजिए। ये छुट्टियों से हमने अभी बहुत रिसेंटली ये स्टार्ट किया, दिस वॉज ऑन 1st of May वी स्टार्टेड और ऑलरेडी हम इसको 20 days तक कम्प्लीट कर चुके हैं। उनके साथ में जब ये लोग मेरे चैम्बर में होते हैं, हम लोग उस पर वर्क करते हैं, जैसे वो मेरे चैम्बर में आते हैं वो मेरे पास 2 घंटे के लिए होते हैं, तो उस 2 घंटे में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम होता है ना, मैं ना वो मेरे बच्चे उन मोबाइल को टच करते हैं। 2 hours तक हमारा मोबाइल बिल्कुल उस बॉक्स में रहता है, कितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं हम उसको नहीं देखते, और ये हर रोज का पैटर्न हो चुका है। और मैं माई सेल्फ, आई डू इट विद माई फैमिली, मेरा एक सैटरडे का दिन होता है जिस दिन मोबाइल को हम लोग टच नहीं करते हैं, दैट इज दैट डे हम प्लान करते हैं कि मोबाइल को टच नहीं करना। तो उस दिन हम क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं ऐसी जगह पर चले जाएं जहां नेटवर्क भी नहीं मिलता हमको, तो बट क्वाइट ऑब्वियस, आपके पास चॉइस ही नहीं होती कुछ.
2: चॉइस नहीं
3: तो होती. इनिशियली हम कुछ ऐसा कर सकते हैं. मैं एक दिन बिल्कुल किसी को नहीं बोलूंगी जो शुरुआत में कर रहा है. आप कोशिश कीजिए कि आप एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटे से शुरुआत करेंगे जहां आपको लगता है कि अभी कैन बी अ फैमिली टाइम. सपोज हम एक फैमिली में बैठे हुए हैं शिवानी, तो हम भी ऐसा बात कर सकते हैं क्योंकि आज डिनर टाइम है. हम लोग इस टाइम पे मोबाइल लेके नहीं बैठेंगे. एक मोबाइल बॉक्स रख दिया, उसमें मोबाइल को रख दिया गया और हम उस टाइम पे नॉर्मल रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज डिस्कस कर सकते हैं कि आज मम्मा आपने क्या किया, मम्मा आपका दिन कैसा निकला, डैडी आपके ऑफिस में क्या क्या हुआ. बच्चे अपना, क्योंकि वेकेशन चल रही है, बच्चे घर में हैं, उनके साथ कैरम हो सकता है, उनके साथ कुछ बुक रीडिंग एक्टिविटी हो सकती है, कुछ स्टोरी टेलिंग. अगर मेरे दादा दादी हैं तो उनको स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मैंने देखा इवन बुजुर्ग भी हर टाइम मोबाइल को लेके बैठे होते हैं. तो उनके साथ भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उनसे हम कुछ सीखने को मिल जाए. कुछ ऐसे गेम्स, कुछ ऐसे खेल जो उनके जमाने में होते थे, हम वो चीज भी उनसे सीख सकते हैं. तो एज अ फैमिली वो खेला जा सकता है.
2: आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि स्पेशली डिनर के टाइम पे, ब्रेकफास्ट या जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, तब अगर हम डिजिटल डिटॉक्स पूरी तरीके से करें, ना कि सिर्फ हम मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल ना करें बल्कि टेलीविजन का भी इस्तेमाल ना करें, एक दूसरे से बातें करें, दिनचर्या के बारे में पूछे, तो बहुत ही अच्छी बात है. इससे डिजिटल डिटॉक्स हो जाएगा और एक दूसरे के बारे में जो जानकारी हमें नहीं पता है वो मिल जाएगी हम लोगों को. ये बहुत अच्छी बात है एकता सरीन जी. अब मुझे आप ये बताइए कि क्या चुनौतियां हो सकती है डिजिटल डिटॉक्स, अगर हम लैपटॉप्स यूज नहीं कर रहे, मोबाइल फोन्स यूज नहीं कर रहे, तो उसकी कोई चुनौतियां तो होंगी.
3: डेफिनेटली चैलेंजेस हर चीज में आते हैं, फॉर श्योर आते हैं. इनिशियली बहुत ज्यादा आपको डिप्रेशन जैसी चीजों की, बिकॉज आप अपने यूज टू हो उस चीज को देखने के लिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम हमारा इतना बड़ा हुआ है. आप देखोगे किसी भी रेस्टोरेंट में आप बैठते हो या किसी भी पार्टी में आप जाते हो, हर कोई अपने मोबाइल के साथ बैठा होता है. आप कोई रेल यात्रा कर रहे हो, आपको पुराना टाइम याद होगा कि आपस में पैसेंजर्स डिस्कस करते थे. आजकल हर कोई अपने मोबाइल के साथ में होता है. आप वो साइड सीन जो साइड में दिख रहे होते थे वो आप मिस कर जाते हो कि आसपास में क्या हो रहा है, कौन सा सीन था, कोई वॉटरफॉल्स आए, कोई फील्ड्स आए. बच्चों को पता नहीं होता कि आजकल आपका ट्रैक्टर्स का यूज कैसे हो रहा होता है फील्ड्स में. उनको स्पेशली लेके जाना पड़ता है गांव में दिखाने के लिए, या पॉटर्स व्हील किस तरह से यूज होते हैं. तो ये सब चीजें बच्चे आराम से देख सकते हैं ड्यूरिंग रोड जर्नीज, ट्रेन जर्नीज. इवन मैं बोलूंगी जब हम रोड जर्नी पे भी साथ साथ हैं, उस टाइम पे भी हम पर्टिकुलरली डिजिटल डिटॉक्स रख सकते हैं कि उस टाइम पे हम यूज ना करें और शेयर करते हुए जाएं स्टोरीज, क्या हमारे आसपास में हो रहा है, क्या हम आपस में शेयर कर सकते हैं, क्या हम आसपास के लोगों को देख रहे हैं. लेट्स डिस्क्राइब थिंग्स अराउंड. कुछ पेड़ों के बारे में बच्चों को नहीं पता होता, उसके बारे में उनको बताया जा सकता है. किस तरह की चीजें, किस तरह से आपका वाटर फ्लो है आसपास के जगहों पे, क्या आपका वाटर इनटेक चल रहा है उस एरिया में, हम हर चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. सो जीके भी बच्चे का बढ़ता है और हम मोबाइल से भी अपने आप को दूर करते हैं. और जहां तक चैलेंजेस की बात होती है, अगर हम उस चीज में अपने आप को कंटिन्यू रखेंगे उस डिस्कशन में, तो बच्चे का ध्यान मोबाइल से दूर हटेगा. ग्रेजुअली हम भी एज एडल्ट उससे दूर हो पाएंगे.
2: जैसे एडल्ट्स की आपने बात की है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी जिन्होंने ये कहा था कि हम भी डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, और स्पेशली जब हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं या इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं, तब हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास मोबाइल फोन ना हो, क्योंकि कुछ लोगों की आदत ऐसी हो जाती है कि वो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं, तो वो वॉक भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, साथ साथ में ये चीजें भी हो रही है, डिवाइस उनके साथ है, तो डिजिटल डिटॉक्स तो हो नहीं रहा है. ऐसे आपने बताया कि सीनरीज हम मिस कर रहे होते हैं जब हम ट्रेन में जा रहे हैं, आपस में बातचीत नहीं हो रही, सब लोग अपने मोबाइल में लगे हुए हैं. तो ये जो डिजिटल डिटॉक्स है, अगर ये हम करें सही मायने में, तो क्या उससे नींद में भी सुधार आ सकता है?
3: बिल्कुल. इंसोम्निया एक बहुत, एज ए काउंसलर मैं रेगुलरली ये केसेस देख रही हूँ. बच्चे जो देखिए, आप सोचिए 3-3 बजे तक बच्चा अगर जगा हुआ है, और सुबह तो उसका स्कूल टाइम 7 o'clock, बस का रिपोर्टिंग टाइम होता है, या इवन स्कूल पहुंचने का भी 7:30 बच्चों को पहुंचना होता है. इवन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को भी 8-7 के आसपास में उनको रिपोर्ट करना पड़ता है. तो अगर बच्चा देर रात तक सोता है और मोबाइल के पास में रहता है, तो डेफिनेटली उसकी नींद पर फर्क पड़ता है. और आपने देखा होगा जो ब्लू लाइट मोबाइल से आपको मिलती है, बी द स्क्रीन टाइम, तो वो डेफिनेटली, चाहे वो टेलीविजन है, और बच्चा अंधेरे में स्पेशली जब उसका यूज करता है, फॉर श्योर उसकी आई साइट पे भी फर्क पड़ता है. ना केवल ये, आपने देखा होगा कि मेरे पास तो इस तरह के केसेस बहुत सारे आए हुए हैं, हार्ट डिजीजेस, शुगर, डायबिटीज, इसके कारण बहुत बढ़िया बच्चे, बिकॉज आपकी फिजिकल एक्टिविटीज पे फर्क पड़ा है. आप वॉक करने नहीं जा रहे हो, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज पहले होती थी वो आप नहीं कर रहे हो. आप मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे बैठे हुए हो, कभी आप छोटे स्क्रीन पे हो, बी एट ए मोबाइल स्क्रीन, और कभी आप टेलीविजन पे हो, या इवन अपनी रील्स बना रहे हो, उसमें भी आप स्क्रीन पे ही बैठे हुए हो. उसके कारण कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. नॉट जस्ट कि आपको नींद में प्रॉब्लम आती है, बट इवन आपको अदर डिजीज, आप छोटे छोटे बच्चों को आजकल डायबिटीज की शिकायतें आ रही है, हृदय रोग उनके बढ़ते जा रहे हैं. रीजन यही है कि उनका सिटिंग टाइम, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनकी सामाजिक गतिविधियां नियरली लिस्ट पे आ गए हैं। तो अगर हम ये बेस्ट टाइम है वेकेशन, एक बेस्ट टाइम है मैं पेरेंट्स को भी, एजुकेटर्स को भी, मेंटोर्स को भी, सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कनेक्ट कीजिए अपने आप को। जो भी कॉलोनीज हैं, पार्क्स हैं, वहाँ पर बच्चे इकट्ठा हो, उनसे कुछ भी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं विच कैन बी अ लेसन फॉर एवरी फैमिली मेंबर, नॉट जस्ट द चिल्ड्रन। पेरेंट्स अपने आप में रोल मॉडल होते हैं बच्चे के लिए, तो अगर पेरेंट्स करेंगे उनको देख के, बच्चा ऑटोमेटिकली वो पिकअप करता है।
2: एकता जी, तो फिर ये सवाल उठता है कि मना कैसे करें हम बच्चों को, कि क्या हम एकदम से उनको डांट दें कि नहीं आप डिजिटल डिवाइसेस को नहीं छुएंगे, या थोड़ा सा अंतराल, थोड़ा टाइम लगेगा जहाँ पे वो समझ सकेंगे धीरे धीरे, और क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है? मतलब अगर हमने अभी मना किया बच्चे को कि नहीं आप मोबाइल फोन नहीं छुएंगे, आप ये प्रोग्राम टीवी पे नहीं देखेंगे, तो रिप्लेसमेंट्स क्या हो सकती हैं? क्या वो एज ग्रुप के हिसाब से है या रिप्लेसमेंट्स आसान है बच्चों के लिए?
3: आई थिंक बहुत सारी रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। आप वो समय याद कीजिए जब मोबाइल नहीं थे, जब हम लोग ग्रो कर रहे थे, आप याद कीजिए कि उस समय पे मोबाइल नहीं थे, तो ये तो था नहीं कि उस टाइम पे आपकी ग्रोइंग अप में कुछ फर्क आया था, क्योंकि ये बच्चा मिलेनियल बच्चा है, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। जब वो बच्चा बॉर्न होता है उसको आसपास स्क्रीन्स ही दिखाई दिए हैं, दे आर अ डिजिटल चाइल्ड, लेकिन उनको हमें उसे समझाना है, उस लेवल पे पहुंचना है। कभी कभी हमें प्यार से बताना होता है, कभी कभी स्ट्रिक्ट होना होता है, और कभी कभी प्ले वे मेथड यूज करना होता है, लेकिन यू शुड नॉट बी रूड विद देम, ट्राई टू बी लिटिल सॉफ्ट, और करके दीजिए। जब आप खुद करोगे बट ऑब्वियसली बच्चा करेगा। मुझे याद आता है एक जर्नी, जब मैं दिल्ली से भोपाल ट्रेवल कर रही थी, उससे मेरा बेटा वॉज नियरली 6-7 ईयर्स का रहा होगा, तो मुझे बुक का बहुत शौक है, मैं रीडिंग बहुत करती हूँ, तो मेरे पास मैं अपना एक नॉर्मल रीडिंग कर रही थी उस टाइम, और बेटे को क्योंकि कॉमिक्स का बहुत शौक था, उसने कॉमिक हाथ में लिया हुआ था, आसपास के बच्चे मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे, तो मुझे किसी ने पूछा कि मैम ये बेटा बहुत देर से बैठा हुआ है, सिर्फ पढ़ ही रहा है वो, तो मैंने बोला वो पढ़ भी रहा है और साथ में उसकी मस्ती भी चल रही है। वो आपने देखा होगा उसने उसी कॉमिक बुक में कुछ कुछ गेम्स भी होते हैं, जहाँ पे आपको गेम्स साथ साथ में आप कर रहे होते हो, तो वो भी आप एक्टिविटीज भी आप साथ में कर रहे हो, उसके हाथ में पेंसिल बराबर चल रही थी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो की जा सकती है, बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं जो हम खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड जिसमें हर फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हो सकता है, लूडो है, इवन आजकल चेस हम खेल सकते हैं, इवन क्रिकेट एज अ फैमिली गेम किया जा सकता है, जहाँ पे बच्चे को बोला जाए क्योंकि आप कमेंट्री करो आज, तो आप उसको बड़ा मजा आएगा, उसको एंजॉय करेगा वो चीज, जिसमें भी बच्चे को इंटरेस्ट है वो चीज हम करवा सकते हैं। बच्चे के साथ आप साइकिलिंग ट्रिप पे जा सकते हो, लेट्स गो साइकिलिंग टुगेदर, तो आज फैमिली साइकिलिंग डे है, या कुछ कॉम्पिटिशन हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ओके आज फैमिली टाइम है, तो कॉलोनी के 5-6 फैमिली से मिलकर एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया, आज हम स्विमिंग पूल में साथ में जा रहे हैं, एंड वी हैव अ लिटिल लिटिल फन टाइम, आज स्विमिंग होगा एंड वी हैव अ लिटिल फन टाइम। Hide and seek can be a great game. धूप ज्यादा है, गर्मी है, हम अंदर डार्क रूम खेल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो की जा सकती हैं और उनके लेवल पे जाके की जा सकती हैं। कुछ हम जोक्स का राउंड, जैसे हम जोक्स, कुछ अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर कीजिए उनके साथ में, तो बहुत सारी चीजें हैं। एक मैं बच्चों के साथ स्पिना यान करती हूँ। स्पिना यान इज लाइक आई स्टार्ट अ स्टोरी एंड दे हैव टू कंटिन्यू इट। सो शिवानी, आज टुडे वॉज अ वेरी ग्रेट डे, यू नो व्हाट हैपेंड, आई मेट अ film star, you know, so what happened after that, Shivani will ask me that, okay. And then we just continue with the storyline in our own manner. Similarly, I'll ask you, Shivani, so aaj morning mein aapke saath kya kya hua, Shivani? So just tell me something about yourself. So it's a spinner yarn where we give a opening line and they continue with their own yarns, and uski koi right or wrong nahi hota, aur bachche ko we can give chocolates and anything, any prizes, small prizes can be given to them.
2: ओके ये शायद वही गेम है जिसमें हम कुछ नेगेटिव नहीं कहते, ना नहीं कहते, हम कंटिन्यू कर रहे होते स्टोरी को, बिल्ड अप
3: को कंटिन्यू करते जाते हैं, व्हाट एवर कम्स टू योर माइंड। अगर 10 मेंबर्स हैं तो एवरीबॉडी कैन गिव अ टर्न, हम एक दूसरे को टर्न्स दे सकते हैं, वी कैन इवन हैव फायरलेस कुकिंग टुगेदर, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर कुछ बनाते हैं, तो क्या बनाएंगे आज, तो लेट अ चाइल्ड मेक अ लेमनेड समथिंग, सैंडविचेस कैन बी मेड, भेल पूरी कैन बी अ ग्रेट आइडिया। मैं तो उस दिन बच्चा किचन में और आप उसको बिल्कुल कुछ ना नहीं बोलने वाले, वो कितना भी मेसी हो जाए, प्लेटफॉर्म को कितना भी गंदा कर दे, बट यू जस्ट एंजॉय कि बच्चा कुछ कर रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड चिल्ड्रन एंजॉय दैट वेरी मच।
2: आपने एकता जी बहुत सारी रिप्लेसमेंट्स बताए जिसका ध्यान हम रखेंगे और की जा सकती है सारी रिप्लेसमेंट्स, कुकिंग है, साइकिलिंग है, गेम्स है, बोर्ड गेम्स है, बहुत कुछ किया जा सकता है बच्चों के साथ। हम जब बच्चों को मना करते हैं कि नहीं आप जो है अभी डिजिटल डिटॉक्स में हैं, आप मोबाइल नहीं इस्तेमाल करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, लैपटॉप नहीं यूज करेंगे, आप किताब पढ़िए, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है किताब की ओर, क्योंकि हमारा भी समय ऐसा ही रहा है जहाँ पे हम किताबों के बारे में किताबों को ज्यादा पढ़ा करते थे और किताबों से वाबस्ता होते थे ज्यादातर। तो जब हम बच्चों को बोलते किताब पढ़ने के लिए, ये कितनी सही बात है, कितना मतलब किताब इतनी जरूरी क्यों है?
3: देखिए, किताबों से कनेक्ट करना मुझे लगता है हर घर का एक अनसेट रूल होना बहुत जरूरी है। हम हर जगह रूल्स लिखना जरूरी नहीं होता, अनसेट रूल हो जाना चाहिए एक जगह पे कि ओके आज एक स्टोरी बुक, मैं तो बोलूंगी स्टोरी बुक भी क्यों, स्टोरी से शुरुआत करते हैं, छोटी छोटी कहानियां कि ओके आज आपने क्या पढ़ा। तो हमारे ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं जिससे हम बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं, और आज के टाइम में अपने ग्रंथों से बच्चों को जोड़ना बहुत जरूरी है
2: जी,
3: अपने कल्चर से कनेक्ट करना, क्योंकि आज तो बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज भी बात करते हैं भगवद गीता
2: के
3: बारे में, तो बच्चों को कैसे कनेक्ट करें। एंड आई थिंक भगवद गीता अपने आप में एक मैनुअल है, इट्स नोन एज अ लाइफ मैनुअल इन एवरीवन्स लाइफ, रामायण इज अ मैनुअल। सो अगर हम बच्चों को कनेक्ट करते हैं और उनकी स्टोरीज उनको कनेक्ट करते हैं, स्टोरी से कनेक्ट करते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम लेके आते हैं, एंड एट अ टाइम हम उनको बोलते हैं आज अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप ऐसा होते तो आप क्या करते, तो बच्चे आजकल के बच्चे क्वेश्चनिंग वाले होते हैं, दे विल आस्क यू रीजन। तो आपके पास रीजन पहले होना बहुत जरूरी है अगर आप बच्चे को किसी भी किताब से जोड़ रहे हो। ओके, रस्किन बॉन्ड, सो क्यों रस्किन बॉन्ड, ठीक है, रबिन्द्रनाथ टैगोर, तो क्यों रबिन्द्रनाथ टैगोर, रामायण, तो क्यों रामायण। तो बच्चे को जब हम रीजन देते हैं, ये बच्चा जो प्रेजेंट जनरेशन है वो रीजन मानती है, तो अगर आप रीजन देके चलोगे और सॉफ्टली उसको एक्सप्लेन करोगे तो बच्चा बहुत इजीली कनेक्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, वापस आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। आप खुद मोबाइल लेके बैठे हो और बच्चों को बोला कि बेटा तू पढ़ाई कर ले,
2: तू नहीं हो पाएगा,
3: तू रीडिंग कर ले, तू कॉमिक पढ़ ले, बच्चा नहीं पढ़ेगा। आप बी अ रोल मॉडल, बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट, ओके उस समय पापा घर पे आए, 6 बजे का टाइम है, चाय सर्व हो रही है, बच्चे के लिए आपने दूध सर्व किया है, लेट्स हैव अ रीडिंग टाइम, इट्स अ कार्पेट रीडिंग, आप टेबल पे भी मत बच्चे को बैठिए, कार्पेट पर बिठा दीजिए, लेट अ चाइल्ड स्लेप डाउन, रिलैक्स होके कंफर्टेबल चेयर पे हो जाए, बच्चा रीड करे, जो बुक उसको चाहिए वो बुक पढ़े, उसको एक चॉइसेस दे दीजिए। आजकल तो इवन आपकी कार्पेट बुक्स अवेलेबल है, बच्चे को रख दीजिए बुक्स, इवन आजकल वॉल्यूम बुक्स अवेलेबल है, वॉइस राइट प्रोनाउंसिएशन भी बच्चे को समझ में आएगा। और उस टाइम पे बच्चे को टोकिए मत, अगर बच्चा कुछ गलत भी रीड कर रहा है, डोंट से योर रीडिंग रॉन्ग, दिस इज रीडिंग फॉर प्लेजर, बच्चा उसकी क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने वाला, लेट द चाइल्ड एंजॉय रीडिंग, अगर बच्चा एंजॉय करना शुरू करेगा तो उसको हर तरह की रीडिंग में मजा आएगा।
2: और यही बात एडल्ट्स के लिए भी लागू है एकदम।
3: बिल्कुल
2: जी हाँ। जहाँ तक हम इस फास्टिंग की बात करते हैं, मोबाइल फास्टिंग, डिजिटल डिटॉक्स, ये कितनी अवधि के लिए होना चाहिए, मतलब एक दिन, एक सप्ताह, उसके बाद क्या, मतलब कब तक हम उनको बोले, या कि दिन में हम बांध ले कि नहीं इतना समय आप किताबें पढ़ेंगे या आप इंटरनेट पे रहेंगे, मतलब हमारा किस तरीके से हम एक टाइम टेबल सेट करें जिसके जरिए हम बच्चों को

0: टाइम आपके लिए ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 आवर. एक घंटा हम मोबाइल नहीं देखेंगे या एक घंटा हम डिजिटल डिटॉक्स करेंगे. इट कैन स्टार्ट विद 1 आवर और ग्रेजुअली हम उसको लंबा टाइम लेके जा सकते हैं. अच्छा ठीक है, मैं उस एक घंटे में क्या कर सकता हूँ, फिर मम्मा वो पूछेगा आपसे. सो आप वहाँ पे चॉइसेस दे सकते हो, उससे बुलवाइए. ओके, उस टाइम पे आप फुटबॉल खेलना पसंद करोगे क्या, या उस टाइम क्या हम फैमिली डिस्कशन करें क्या, या उस टाइम आप स्विमिंग पूल जाओगे क्या बेटा. और अगर बच्चे का इंटरेस्ट डांसिंग में तो व्हाई नॉट, आप डांसिंग भी जा सकते हो. सो लेट द चाइल्ड डिसाइड नाउ. जब हम बच्चे को मौका देते हैं तो वो आपकी बात सुनता है. अगर आप उसको डिक्टेट करते हो तो बच्चे को लगता है कि वो थोड़े समय के लिए है और वो उसको भूल जाएगा. द आइडिया इज लेट द चाइल्ड डिसाइड. तो आप उसको बोल सकते हो कि ओके, जो आपने प्लान किया था वो वर्क कर रहा है क्या. एक हफ्ते बाद हम एक क्वेरी कर सकते हैं, बेटा आप मुझे चेक करना मेरा, अगर मैं 6 से 7 मैं कुछ और मोबाइल लेके बैठ रही हूँ तो प्लीज मुझे बताना कि मैंने मोबाइल उठाया था उस टाइम पे. सो जस्ट चेक, यू विल टेल मी एंड आई विल टेल यू. लेट्स मॉनिटर ईच अदर.
1: ओके ओके, ये बहुत ही अच्छा प्लान है जहाँ पे हम बच्चों से खुद पूछ सकते हैं कि बताइए आपका प्लान क्या है, उसी मुताबिक हम भी आपसे बात करेंगे. और देखा गया है कि आजकल जैसे सामाजिक संबंध है, सोशलाइजिंग की अगर बात करें, तो लोगों को लगता है बच्चों को स्पेशली कि हम तो सबसे मिल रहे हैं, ये मेरा फेसबुक फ्रेंड है, ये मेरा इंस्टाग्राम फ्रेंड है, और हम इसे फॉलो कर रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, तो उनको लगता है यही सामाजिक संबंध है. तो अगर हम डिजिटल डिटॉक्स भी करते तो उससे हमारे सामाजिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, किस तरीके से ठीक हो सकते हैं.
0: इसको भी हम इस तरह से ले सकते हैं, अगर हम फैमिली गैदरिंग्स में होते हैं तो बच्चे, क्योंकि बच्चों को प्रायोरिटी अभी क्या लगता है कि उनको मोबाइल देखना, उनका स्क्रीन टाइम इतना बड़ा हुआ है. सो लेट्स मेक इट एज अ फैमिली डिसीजन कि इस टाइम पे हम 4 फैमिलीज आपस में मिल रहे हैं तो उस समय पे हम लोग मोबाइल कैरी नहीं करेंगे. उस टाइम पे हम कुछ फैमिली गेम्स खेल सकते हैं, उस टाइम पे हम इंटरेक्शन कर सकते हैं एक दूसरे से. अगर हम इंटरेक्शन करेंगे, और पॉइंट आउट मत कीजिए बच्चा क्यों घबराता है सामाजिक गतिविधि से, कि उसको लगता है उससे पूछा जाएगा.
1: अच्छा,
0: कि आपके मार्क्स कैसे आए बेटा.
1: राइट.
0: इस तरह की चीजें भी हम प्लान कर सकते हैं कि अच्छा आपकी तो हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ी है, तो बच्चा नेगेटिव चीजों से भागना है. उसको क्यों अच्छा लगता है फेसबुक फ्रेंड्स, क्यों अच्छे लगते हैं डिजिटल फ्रेंड्स, कि वहां पे उससे क्वेश्चनिंग नहीं होती है. वो जो कर रहा होता है उसको लाइक्स मिलते हैं, तो बेसिकली वो लाइक्स का भूखा है. उसको लाइक्स दीजिए. आज यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, हाउ ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग, लाइक योर ड्रेस इज एक्सट्रीमली वंडरफुल. सो उसको आप अगर लाइक्स देते रहोगे, लाइव लाइक्स मिलेंगे, तो वो क्यों डिजिटल की तरफ जाएगा.
1: सही बात.
0: सो लेट्स मेक इट अ पॉइंट कि फैमिली में तारीफ कीजिए. किसी और का इंतजार मत कीजिए कोई आपकी तारीफ कर रहा है. आप एक दूसरे की तारीफ कीजिए और बच्चा वो सीखेगा, घर में ही सीखेगा कि हमको एक दूसरे की तारीफ करना इम्पोर्टेंट है. दैट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. हम क्यों देखते हैं हमको कितने लाइक्स मिले, क्योंकि हमें घर में तारीफ नहीं मिल रही.
1: सही बात.
0: ये मैं अडल्ट से भी बात करती हूँ. हस्बैंड वाइफ जब मेरे पास एज अ मैरिटल काउंसलिंग आते हैं तो मैं बोलती हूँ एक दूसरे की तारीफ, आपने एक दूसरे को आई लव यू कब बोला था लास्ट. हैव यू गिवन ईच अदर अ हग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. सो जस्ट ट्राई टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर. बच्चा जो देखता है वो एग्जैक्टली वही चीज फॉलो करता है. सो लेट्स हैव अ लाइकिंग फॉर ईच अदर. तो बच्चा ऑटोमेटिकली जो फैमिली में एक पॉजिटिव ऑरा देखेगा तो the things will go on.
1: ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही एकता सरीन जी, कि कितना जरूरी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना, एक दूसरे की तारीफ करना. बच्चे भी उससे सीखते, उससे मनोबल भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है, और कंपैशन भी पैदा होता है, एक एम्पैथी पैदा होती है जिससे बच्चों में सुधार आ जाता है. सो अब हमने किताबों की भी बातें की, मुझे आप बताइए आजकल जैसे ऑडियो बुक्स की आपने बात की जो कि अच्छी बात है सुनना, लेकिन अगर बच्चे चाहते कि नहीं हम जो है मोबाइल से ही PDF पे या किताबें डाउनलोड करके पढ़ें, तो ये ठीक है कि उससे भी कुछ असर पड़ता है आंखों पे अगर मोबाइल पे ही किताबें पढ़ते रहे बच्चे?
0: देखिए, मोबाइल पे किताबें पढ़ने से बेटर है PDF वाला ऑप्शन, है ना, क्योंकि मोबाइल पे अभी किंडल पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है. इवन मैं आपसे शेयर कर लूंगी कुछ कुछ इस तरह के साइट्स भी जो हम आराम से बच्चा इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो अवेलेबल हैं.
1: Okay.
0: कुछ लाइब्रेरीज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं. लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि फिजिकल बुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप कनेक्टेड रहते हो किसी फिजिकल बुक से, अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली. और हम बिल्कुल बच्चे को बांधे नहीं कि बच्चा यही पढ़ना है. अगर बच्चे को स्पोर्ट्स पे इंटरेस्ट है, बहुत सारी स्पोर्ट्स पे बुक्स है. अगर आपका बच्चे का इंटरेस्ट इंसाइक्लोपीडियाज पे है, बच्चा उसको कनेक्ट करे अपने आप को. अगर उसको साइंस पे इंटरेस्ट है, बच्चा साइंस रिलेटेड बुक्स पढ़ सकता है. अगर फिक्शन में इंटरेस्ट है तो बच्चा फिक्शन रिलेटेड बुक्स पढ़ सकता है. तो उसकी बेसिकली स्किल्स को हमें बढ़ाना है कि वो स्किल्स पे अपने आप को फोकस करे, कि हो सकता है उसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाए पढ़ने के बाद, उसकी विकैबुलरी बहुत एनरिच हो जाए, तो अगर वो बढ़ती है आप उसको ये भी साथ में बोलिए कि ओके आपने अगर ये एक पर्टिकुलर स्टोरी पढ़ी है, आपने ये तीन वर्ड्स उसमें से देखे हैं, तो हम उसको कैसे और अपनी उस विकैबुलरी को आप कैसे यूज कर सकते हो अपने डे टू डे लैंग्वेज में, इवन दैट विल हेल्प यू आउट एनरिच योर विकैबुलरी. तो तारीफ कीजिए, ओके आज आपने इस वर्ड का यूज किया, दैट्स रियली नाइस, ये वर्ड आपने कौन सी बुक में पढ़ा था, तो बच्चा आपको बताएगा. इवन आप भी कुछ नया वर्ड यूज कर सकते हो और आपको भी अंदाजा रहेगा.
1: ये बहुत अच्छी बात कही आपने, इससे एक खेल जैसा माहौल भी शुरू हो जाता है जहाँ पे हम बच्चों को उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं, जो नए वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में पूछते हैं, हमारा भी ज्ञान बढ़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों का ही ज्ञान बढ़ता है. अच्छा, क्या बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है जब वो लोग डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, क्या उनके ध्यान केंद्रित करने में भी सुधार होता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि अगर बच्चा कॉन्स्टेंटली स्क्रीन टाइम देख रहा है तो उसका नोटिफिकेशंस थ्रू आउट वो देखता रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली उसका बढ़ेगा क्योंकि वो उस चीज से हटके वो कुछ और नया कर रहा है और उसका बराबर ध्यान से स्क्रीन में नहीं है, वो रीडिंग कर रहा है, वो फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा है, वो सोशल इंटरेक्शंस कर रहा है, उससे डेफिनेटली उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता ही बढ़ता है.
1: okay.
0: so, बच्चे को अगर हम उस एक घंटे के लिए सिंपली मेडिटेशन के लिए भी बोलते हैं, ये ठीक है आप बेटा आंखें बंद करके एक जगह पे बैठ जाओ, या आप सिर्फ एक जगह पे सिर्फ सिटिंग दे दो, क्योंकि बच्चों को आजकल एक जगह पे बैठना भी अपने आप में एक टास्क होता है. तो ठीक है आज हम एक जगह पे बैठते हैं, नॉट मूव फ्रॉम देयर, सो लेट्स सिट. या हम एक उनको फोकस करते हैं कि कौन आंखें पहले ब्लिंक नहीं करेगा, उससे भी वो गेम भी गेम का गेम हो जाता है कि ठीक है हम लोग आपस में गेम खेलते हैं जिसमें आंखें कौन पहले ब्लिंक नहीं करेगा, दैट इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज फॉर कॉन्सेंट्रेशन. सो उसमें भी हम ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते आ रहे हैं लेकिन हम भूलते जा रहे हैं उन चीजों को, तो डे बाय डे अगर हम बच्चे के साथ बैठेंगे और वो सब करेंगे, या एक पॉइंट लगा लीजिए आप वॉल पे और बच्चा उसको देखेगा, तो कैसे हम देख सकते हैं, तो वन बाय वन आप ट्राई कर सकते हो, पेंसिल एक सामने रखिए और पेंसिल को बच्चा मूव करे टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट, उसका आई मूवमेंट बढ़ेगा, उसमें उसका आई से कॉन्सेंट्रेशन, उसका मेंटल लेवल, पीस दोनों में फर्क आएगा.
1: ओके, पीस की जहाँ आपने बात की वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखा गया है कि बच्चों में ज्यादा तनाव आ जाता है इस वजह से कि ज्यादा चीजें यूट्यूब पे देख रहे हैं या बहुत ज्यादा कंटेंट बढ़ गया है, ओवरफ्लो ऑफ कंटेंट हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस कंटेंट को हम कैसे समाएं, क्या करें इस कंटेंट का. तो जब हम डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं, क्या इसमें टेलीविजन भी आता है? कि वैसे तो आजकल बच्चे टेलीविजन पे रेगुलर प्रोग्राम्स नहीं देखते, यूट्यूब पे ही जो उनका कंटेंट होता है वही देखते हैं, एड्स को स्किप करके करते रहते हैं, प्रोग्राम्स देखते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हमें टेलीविजन का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कार्टून नेटवर्क्स देखना या ये चीज़ों पे भी हमें थोड़ा बहुत जो है लगाम लगानी पड़ेगी?
0: बिल्कुल, देखिए डिजिटल डिटॉक्स में जब बात आती है तो बिग स्क्रीन स्मॉल स्क्रीन दोनों वर्क करते हैं, लेकिन बिग स्क्रीन जैसे कि आपने खुद बताया कि बिग स्क्रीन बच्चे को लिमिटेड टाइम के लिए ही चांस मिलता है, मोबाइल छोटा स्क्रीन उसके पास हमेशा ही रहता है, लेकिन डेफिनेटली स्क्रीन तो स्क्रीन ही है. अगर आप लाइट ऑफ करके बराबर टीवी भी देख रहे हो, आजकल तो बच्चे इवन कनेक्ट भी कर लेते हैं, कनेक्ट करके यूट्यूब भी आप टेलीविजन पे देख लेते हो, तो इवन ऑल दोस थिंग्स मैटर, स्क्रीन तो स्क्रीन ही है ना मैम, तो डेफिनेटली उसका मेंटल पीस, उसका मेंटल इलनेस, उसका कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली लैक करता है वहां पर. तो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ डिजिटल डिटॉक्स. अगर हमने प्लान किया है तो उस समय पे हम टेलीविजन भी नहीं देखेंगे.
1: ओके ओके, तो आज हमने बातें की इस बारे में एकता सरीन जी से, डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है, कैसे हम कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी आज हमें हासिल हुई, और कितना ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी और जो डिजिटल मीडिया है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी से, और बच्चों का और मन लगा रहेगा इन कामों में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप रेडियो आज़ाद हिंद पर आई. तो ये है देश का चैनल देश के लिए, टेक गुरु प्रोग्राम हम आपके लिए लेते आएंगे जिसमें हम आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में सारी बातें करेंगे. तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद एकता सरीन जी.
0: थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस स्पीकिंग टू यू शिवानी जी.
1: थैंक यू सो मच. नमस्कार.
0: नमस्कार.

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सीना हमारा गर्व। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
3: 90.8 MHz पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम इन दिनों इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के इतिहास को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसी प्रयास में चलते चलते हम उस मोड़ पर अब आ पहुंचे हैं जहां हम अपनी सेना के तीनों अंगों को एक परिपक्व, अनुभवी और आधुनिक उपकरणों से लैस, आत्मविश्वास से भरी हुई सेना के रूप में पाते हैं, उसे नए कलेवर में पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध जीत के बाद के वर्षों में भारतीय सेना की स्थिति की। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी देश की सेना का रोल केवल दुश्मन से युद्ध करने का ही नहीं होता, बल्कि देश की सेना हर दिन हर वक्त देश की शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भूमिका अदा करती रहती है और देश की सीमाओं पर 24 घंटे चाक चौबंद रहती है। श्रोताओं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, समय कोई भी हो, मौसम के तेवर कैसे भी हों, भारतीय सेना देश के हित को सर्वोपरि रखकर अपने कर्तव्यों में निरत रहती है। श्रोताओं, आज के इस कड़ी में हम देश की सीमाओं की सुरक्षा की ऐसी ही मिसाल पेश करने वाली एक शौर्य गाथा आपके लिए लेकर आए हैं। ये गाथा लिखी गई समुद्र से लगभग 20,000 फीट ऊंचे यानी दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन में। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए जानते हैं कि क्या है वो गौरव गाथा हमारे विषय विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से, जिन्होंने लगभग 20 तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और स्वयं सियाचिन का अनुभव भी रखते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर।
4: थैंक यू पुरवा जी। एंजॉय श्रोताओं, आपने बहुत अच्छा समराइज किया
3: जी।
4: जो आर्म फोर्सेस होती हैं वो सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में नहीं कार्य करती हैं, बल्कि उसके अलावा भी जो है 24/7 365 डेज अ ईयर दे आर एक्टिव ऑन द बॉर्डर। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर एन नंबर ऑफ अदर ड्यूटीज आल्सो व्हिच दे परफॉर्म, लाइक असिस्टिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अदर एस्पेक्ट्स। एनीवे, आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने बताया सियाचिन ग्लेशियर, इंडीड इट इज द हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये 76 किलोमीटर लंबा है एंड इट इज नोन एज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड आउटसाइड द इन द नॉन पोलर रीजन।
3: ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है।
4: और कहते हैं कि जो सिया होता है वो वर्ड जो है मल्टी लैंग्वेज में मतलब फ्लावर्स के लिए यूज होता है और चेन का मतलब होता है कि जो चीज बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, अबंडेंस में होती है
3: जी।
4: तो सियाचिन रेफर्स टू अ लैंड फुल ऑफ रोजेस।
3: क्या बात है, वहां पर तो एक भी नहीं होता होगा सर मेरे ख्याल से।
4: नहीं, समर्स में जब है काफी जगह है वहाँ पे जहाँ बहुत अच्छे फूल उगते हैं।
3: अच्छा, जी जी, घाटियों में
4: वहाँ पे है काफी जगह है जहाँ समर्स में ये फूल होते हैं, एक्चुअली होते हैं। ये जो जगह है सियाचिन जो है, इट इज लोकेटेड नॉर्दर्न मोस्ट एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, एंड काराकोरम रेंजेस जो है उसमें है। मैं उसको रेफरेंस के तौर पे बताऊं, जैसे अगर हम लेह है लद्दाख में, तो लेह से अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं खारदुंगला पास से, उसको क्रॉस करने के बाद हम नुब्रा वैली जाते हैं और उसके नॉर्थ में जो है जहाँ से नुब्रा रिवर शुरू होती है, दैट इज द प्लेस जहाँ ग्लेशियर जो है खत्म होता है एंड वहां से आगे 76 किलोमीटर तक जो है ऊपर जाता है एंड ये जो जगह है मतलब इट इज अ वेरी रगेड स्नो कवर टेरेन मतलब बहुत ज्यादा बर्फीला इलाका है जिसमें कि टेम्परेचर -50 तक जाता है एंड माउंटेन हाइट्स उसमें जो है 20,000 से ऊपर हैं तो जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके वेस्ट में जो है एक रिच लाइन है जिसको सोल्टोरो रिच बोलते हैं।
3: अच्छा।
4: एक तरह से जो हमारी डिप्लॉयमेंट है जो है वो सोल्टोरो रिच के ऊपर है।
3: अच्छा।
4: और यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे अभी मैंने बोला कि बहुत ही मतलब ज्यादा सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन होती है
3: जी।
4: तो फ्रीक्वेंटली वहाँ ब्लिजर्ड्स आते हैं एवलांचेस रहते हैं क्रेवासेस का खतरा रहता है और इससे जो है मतलब ये टेम्परेचर जो है कंडीशंस और हाइट के कारण जो है एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो की एफिशिएंसी पे बहुत इफेक्ट करता है और जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग होती है नॉर्मल जिसको हम समझते हैं एपेटाइट सोना टाइम से इवन मेंटल हेल्थ इन सब के ऊपर इम्पैक्ट आता है तो वर्किंग परफॉर्मिंग ड्यूटीज इन सच एनवायरनमेंट इट्स अ ग्रेट ग्रेट चैलेंज इट्स अ बिग चैलेंज। ये एक तरह से मतलब वो ऐसा इलाका है जहाँ पे कि पहुँच के हमने जो है अपनी पोस्ट बनाना और उसको गार्ड करना 24/7 इट्स अ मेजर चैलेंज एंड विच हैज बीन प्रूव्ड बाय द आर्म फोर्सेस कि वी कैन एक्चुअली डू इट। अगर आप वहाँ कभी हेलीकॉप्टर्स को उड़ते हुए देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इस हाइट के ऊपर जो अपनी वो लिमिट है उनकी जो लिमिट है उससे भी बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं
3: जी
4: क्योंकि वो हमारी लाइफ लाइन है उनके सपोर्ट के बगैर हम मतलब वहाँ नहीं रह सकते हैं ऐसे बहुत सारी मतलब वहाँ पे बातें होती हैं। तो बिफोर वी प्रोसीड अहेड लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ इट।
3: जी बिल्कुल सर मेरा प्रश्न यही था कि आखिर इस युद्ध का क्या इतिहास है ये क्यों हुआ क्या कारण है।
4: ये जो डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर को लेके ये शुरू हुआ था जो एंड पॉइंट है हमारा इसका LOC का उसके इंटरप्रिटेशन को लेके।
3: अच्छा।
4: देखिए जो 47 जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद अगर आपको याद हो हमने जिक्र किया था कि सीज फायर हुआ था तो जो सीज फायर लाइन थी वो शुरू हुई थी जम्मू के ऊपर से एंड वहां से होते हुए पूरा एक पॉइंट पे जो कि काराकोरम रेंजेस में है इसको हम मैप पे NJ 9842 बोलते हैं। बड़ा लोकप्रिय नाम है मतलब तो वहां तक इसकी मार्किंग हुई थी। अब उस समय भी जो है इसके ऊपर का जो इलाका था और है आज भी मतलब इट वाज अ वेरी रिमोट एरिया रगेड जैसे अभी हमने जिक्र किया उसके बारे में
3: बिल्कुल निर्जन है।
4: हाँ वहाँ पे ना कोई रहता था ना अप्रोचेबल था स्नो बाउंडेड था एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन थी तो वहां तक मार्क करके इट वाज सेड की एंड देंस नॉर्थ टुवर्ड्स द ग्लेशियर मतलब उसके आगे नॉर्थ की तरफ ग्लेशियर की तरफ ये लाइन जाएगी।
3: अच्छा।
4: ऐसा ये हुआ। अब 71 का जो वॉर हुआ उसमें क्या हुआ कि ये CFL जो है इसको लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट कर दिया गया था क्योंकि उसमें काफी चेंजेस हुए थे वॉर के दौरान जो है लेकिन इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम रहे
3: वही रहा।
4: NJ 9842 था
3: यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ
4: उस पॉइंट पे एंड अगेन इट वाज सेम कि इट वाज म्यूचुअली एग्रीड कि भाई जो NJ 9842 है उसके आगे जो हमारे बीच में जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है वो देंस नॉर्थ टू ग्लेशियर मतलब नॉर्थ की तरफ ग्लेशियर की तरफ जो है जाएगी।
3: स्पष्ट नहीं था यानी सर उसके आगे।
4: देखिए ये स्पष्ट तो बिल्कुल था
3: जी।
4: ऐसा है कि उस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो सोल्टोरो रिज है
3: जी
4: बहुत ऊंची है बहुत ऊंचे 22,000 फीट के ऊंचे पहाड़ है ठीक है एंड जो भी कभी बाउंड्री मार्क होती है तो हमेशा ये हाइट्स के ऊपर होती है।
3: अच्छा। पर्वतों की ऊंचाई पर।
4: जी जैसे हम अपने खेत की मेड़ भी बनाते हैं तो आप देखेंगे एक ऊंचा बना हुआ होता है जिससे हमें बिल्कुल क्लियर कट होता है। अगर हम देखें उस समय जिन्होंने भी मार्किंग करी थी शायद उनके भी मतलब जो है दिमाग में कोई किसी तरह का डाउट नहीं था इसको लेके तो लॉजिक एम्प्लाइज की मतलब वो जो है नॉर्थवर्ड्स होना चाहिए एंड हाईएस्ट जो वाटरशेड है जैसे मैंने अभी बताया सोल्टोरो रिज लाइन है उसके साथ होना चाहिए। 63 में अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं पाकिस्तान ने उसके साथ में जो एरिया है शाक्सकाम वैली
3: अच्छा।
4: उसको चाइना को हैंडओवर कर दिया था जो है, और उससे क्या हुआ कि अब जब वो चाइना को हैंडओवर हो गया तो जो चाइना की सीमा है वो और
3: करीब आ गई जी, भारत के करीब आ गई।
4: अब ये जो शास्कांग वैली है उसके बाद जो अगर आपको याद होगा चाइना ने जो है काराकोरम हाईवे बनाना शुरू किया जो कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में
3: हमने जिक्र भी किया था
4: है ना, तो जो है उन्होंने शुरू किया एंड 78 में खत्म करा था। अब ये जो है अगर आप देखेंगे तो शास्कांग वैली हैंडओवर करने के बाद एक तरह से नॉर्थ सिम की सीमा हमारी तरफ आ गई, ठीक है, ईस्ट में ऑलरेडी चाइना था, अब वेस्ट में जो पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं था कि जो सियाचिन वाला एरिया है वो हमारा है, इंडिया का है, है ना, और ये जो शास्कांग वैली को जो दिया है वो तो इंडिया रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है, तो इंडिया के साथ है हमारा कि ये जो है J&K का हिस्सा है, तो पाकिस्तान को तो पहले कोई हक ही नहीं था कि वो देने का जो है। एनीवे तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर का एरिया जो उसके ठीक नीचे आता था, मतलब इट वाज अ रिमोट एरिया जैसे हमने अभी जिक्र किया है, अनविजिटेड अनइम्पोर्टेंट, तो काफी टाइम तक तो मतलब डोरमेंट रहा
3: जी।
4: इसमें मतलब जो है कोई ज्यादा हलचल नहीं थी, कुछ नहीं था,
3: किसी भी देश की कोई हलचल नहीं थी, ना भारत ना पाकिस्तान।
4: या अब क्या हुआ कि उसके बाद में धीरे धीरे सेंटर स्टेज में आना शुरू हुआ जब इंडिया चाइना पाकिस्तान तीनों ने इसके ऊपर जो है अपना हक जमाना शुरू किया। इंडिया का तो हक है ही, पाकिस्तान और चाइना ने भी दी उस पे, इवन सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान की तरफ से जो हुआ। पाकिस्तान ने क्या किया, एक तो उन्होंने ना एक नया अलाइनमेंट दिखाना शुरू किया अपने मैप्स के ऊपर, जिसमें कि जो NJ-9842 है उससे उन्होंने एक सीधी लकीर ईस्ट की तरफ खींची, जिसमें कि NJ-9842 को उन्होंने काराकोरम पास से जोड़ दिया। अकबर ये आप सीधी लकीर खींचते हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पूरा सियाचिन ग्लेशियर जो है वो पाकिस्तान के मैप में दिखने लग गया।
3: अच्छा, पाकिस्तान के नक्शे में पूरा सियाचिन चला गया।
4: हाँ, सियाचिन जो है वो उन्होंने दिखाना शुरू करा, जबकि उसका अलाइनमेंट जो हमने देखा जिक्र किया कि नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो नया अलाइनमेंट आया इसको उन्होंने अपने मैप्स में दिखाना शुरू किया, और उन्होंने एक और काम करना शुरू किया कि जो माउंटेनियर होते हैं
3: वेस्टर्न कंट्री,
4: हाँ जी, उनको उन्होंने वहाँ पे माउंटेनियरिंग के लिए इनवाइट करना शुरू किया, उनको परमिशन देनी शुरू कर दी।
3: अच्छा, पाकिस्तान सरकार ने,
4: पाकिस्तान सरकार ने अपनी तरफ से जो है
3: जी।
4: तो मतलब ये एक तरह से सोची समझी
3: साजिश है
4: कि भाई
3: अपने नक्शे में
4: हम उसको धीरे से नक्शे में दिखाया,
3: अंतर्राष्ट्रीय
4: लेवल पे इवन जब उन्होंने परमिशन देनी शुरू करी तो काफी सारी वेस्टर्न कंट्रीज और बाकी देश भी उनको भी ऐसा लगने लगा कि ये जो है पाकिस्तान का है, वो भी अपने मैप पे उसको वैसे ही दर्शाने लगे। तो जब ये बात सामने आई तो इंडियन गवर्नमेंट ऑब्जेक्टेड टू इट, इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप हमारे इलाके में कैसे आ रहे हैं, ठीक है। सोल्टोरो रिज जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, ठीक है, ये मैंने जैसे बोला था सियाचिन ग्लेशियर के वेस्ट में पड़ती है, एंड दिस इज द हाईएस्ट वाटरशेड, मतलब कि जो हाईएस्ट हाइट है उस एरिया में, जिसको कि मतलब मोर देन 20,000 जिसकी हाइट्स हैं, मतलब पीक्स हैं, इसको जो है चार जगह से मतलब क्रॉस करा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: क्योंकि पहाड़ी काफी दुर्गम इलाका है, तो अगर हम नॉर्थ से देखें तो सबसे पहले सियाला आता है, फिर बिलाफोंडला आता है, फिर ग्योंगला आता है, फिर चालोंगला आता है, ऐसे मतलब जो है चार प्रोमिनेंट पासेस हैं जहां से कि इसको क्रॉस किया जा सकता है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा था कि जो बिलाफोंडला है इसका यूटिलाइज कर रहा था फॉर प्रमोटिंग फॉरेन माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन द रीजन। अब पाकिस्तान का जो ये क्लेम है इसको सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर अगर करना है, बंद करना है, तो सबसे ज्यादा पर्टिनेंट ये था कि हमें ये जो पासेस हैं इसमें हमारा नियंत्रण होना चाहिए, हमारा हक होना चाहिए, पासेस के लिए फिर उसकी जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं उन पे भी नियंत्रण होना चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इस इलाके में माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस ऑर्गेनाइज कर रही, जिसमें कि जो आर्म फोर्सेस के आर्मी के जो एक्सपर्ट माउंटेनियर्स थे, जिसमें कि सबसे फेमस जो नाम आता है कर्नल कुमार साहब का आता है, जिनको कर्नल बुल कुमार भी बोलते हैं, और जिनके नाम पे जो है एक पोस्ट भी है सियाचिन में, उन्होंने वहां पे जो है माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन लॉन्च किया, जिसमें कि वो इंद्रा कॉल सिया कांगरी वगैरह हाइट पे गए, और तभी उनको ये भी मालूम चला कि यहाँ पे पाकिस्तान जो एक्सपेडिशंस करवा रहे हैं, और भी मतलब ये बात सब्सटेंशिएट हुई, इसके पुख्ता
3: सबूत
4: मिले हैं। अब जब पाकिस्तान को पता चला कि इंडिया ने भी यहाँ पे एक्सपीडिशन शुरू करे हैं, तो उनको लगा कि हमें जो है इस इलाके पे कब्जा करना चाहिए. तो दे स्टार्टेड प्लानिंग अ मिलिट्री ऑपरेशन टू कैप्चर दिस एरिया.
3: अच्छा, अभी तक तो सर नक्शे की लड़ाई थी,
4: अभी नक्शे की लड़ाई थी,
3: अब जमीनी लड़ाई.
4: अब जमीनी लड़ाई जो है जिसपे की आर्म फोर्सेस की लड़ाई वाली बात थी. अभी इसकी इंटेलिजेंस के लिए, क्योंकि इस जगह पे इस ऊंचाई पे लड़ने के लिए आपको स्पेशल क्लोथिंग चाहिए होती है, स्पेशल जो है आपको टेंट्स वगैरह चाहिए, आर्किटेक्ट टेंट्स वगैरह चाहिए, इक्विपमेंट अलग से चाहिए. तो वो कहते हैं कि जहाँ पे मतलब जैसे ऑर्डर्स जब प्लेस करे थे पाकिस्तान ने
3: जी,
4: तो ये इंटेलिजेंस मिली. तो इंडिया गॉट अ क्लियर कट इन्फॉर्मेशन कि भाई दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू, पाकिस्तान इज गोइंग टू लॉन्च एन ऑपरेशन.
3: अच्छा, इस षड्यंत्र का पता चल गया
4: कि हाँ, लॉन्च एन ऑपरेशन टू कैप्चर सियाचिन. इंडिया डिसाइडेड टू प्रीएम्प्ट, मतलब जो है इंडिया ने डिसाइड किया कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये इलाका हमारा है, इस पे हक हमारा है.
3: जी.
4: तो इस एरिया पे उन्होंने पाकिस्तान के मंसूबों पे पानी फेरते हुए यहाँ पे अपने जो है फोर्सेस लॉन्च कर दिया.
3: अच्छा,
4: तो सबसे पहले जो है ये जो पासेस थे जिसका भी मैंने जिक्र किया, मेन जो है बिला कोंडला और सियाला, इसके ऊपर जो है इनिशियली हमने अपनी दो प्लटून स्ट्रेंथ भेजी थी. प्लटून मतलब आप ये देखिए करीब 35 से 40 लोग जो होते हैं.
3: अच्छा,
4: अब आप कहेंगे कि इतने कम लोग क्यों गए, एक तो अचानक उस इलाके में नहीं जा सकते हैं आप.
3: जी,
4: आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, आपके प्रॉपर रूट्स होने चाहिए, देन उसके बाद एक्लिमेटाइजेशन होना चाहिए, देन उसके बाद टाइम बहुत कम था.
3: जी,
4: तो ये जो ट्रुप्स थे जो माउंटेनियरिंग के एक्सपर्ट थे, जो यूनिट्स वहां पे थी आसपास अल्टीट्यूड एरिया में, उनको लेके जो है
3: जी,
4: दो प्लटून जो है वहां पे गई.
3: अच्छा,
4: और इनको बाय एयर इंडक्ट किया गया था.
3: अच्छा,
4: अब जैसे हमने पहले जिक्र किया जो हेलीकॉप्टर्स हैं, अब वहां पे उनकी जो एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है.
3: जी, हवा पतली हो जाती है.
4: जी, और लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाती है. तो एक बार हेलीकॉप्टर से दो जवानों को ले जाने की क्षमता रख रहे थे.
3: अच्छा,
4: ऐसा हाल था. तो सबसे पहले जो है 13 अप्रैल को पहली प्लटून जो है एयरलिफ्ट होके उन्हें बिला फोंडला के पास ड्रॉप किया गया था, और जो दूसरी प्लटून है वो 17 अप्रैल को सियाला में उनको लैंड किया गया था. अब पाकिस्तान ऑलरेडी मतलब वो तैयारी में था इसको ऑक्यूपाई करने की. जब उन्हें इस बात की भनक लगी कि इंडियन आर्म फोर्सेस ऑलरेडी वहां पहुंच गई हैं, तो उन्होंने भी जो है अपना ऑपरेशन तेज किया.
3: अच्छा,
4: और उन्होंने बिला फंडला पे कब्जा करने की कोशिश करी, और यहाँ से शुरू हुई लड़ाई. और जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है एट द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर. जो है इनिशियली जैसे हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ बहुत कम थी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी स्ट्रेंथ से जो है, क्योंकि जब आप एक जगह पे वहां पहुंचे हैं तो आपको दूसरी जगह पे भी जाना है, उसकी डोमिनेटिंग हाइट्स भी लेनी है, फिर आपको वहां पे गन्स का सपोर्ट भी चाहिए, आपको लॉजिस्टिक बेस भी चाहिए. तो ये बढ़ते बढ़ते जो है ब्रिगेड प्लस लेवल पे स्ट्रेंथ पहुंच गई. मतलब जो एक शुरू हुई थी 70 बंदों से, 100 बंदों से जो शुरू हुई थी, वो 4,000-4,500 तक पहुंच गई जो है. अब फाइटिंग स्टार्ट हुई, अब ऑपरेशन का साइज बढ़ता चला गया. इसमें जो ये जो ऑपरेशन किया था हमने प्रीएम्प्ट करके जो ऑक्यूपाई किया
3: जी,
4: वो एक बहुत ही सोचा समझा और बहुत ही वेल प्लान्ड एंड इट वाज अ एक्सेलेंट मूव एक्चुअली. अगर हमने उस दिन यहाँ पे अपनी फोर्सेस नहीं भेजी होती
3: जी,
4: तो हो सकता है 15 दिन के अंदर जो है या सो पाकिस्तान ऑपरेशन लॉन्च करके इस पे ऑक्यूपाई कर लेता, कब्जा कर लेता, और फिर उसको हम नहीं निकाल सकते थे.
3: जी.
4: तो ये मतलब एक बहुत ही इट वाज अ मैटर ऑफ प्राइड.
3: पहला कदम हमने उठाया,
4: पहला कदम उठा के हमने बहुत अच्छा
3: जंग लगभग जीत ली.
4: जी बिल्कुल बिल्कुल जी. जो है तो ऑक्यूपेशन एंड डोमिनेशन ऑफ साल्टोर रिच जो है हमारे हाथ में आया. और जो ये जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है सियाचिन ग्लेशियर का और एंटायर रीजन जो है वो जो है हमारे हाथ में रहा. है तो सही, ये लड़ाई जो है काफी मुश्किल लड़ाई है, काफी ज्यादा जो है यहाँ पे हमने पहले भी बताया कि जो मौसम के कारण जो है आप सिर्फ एनिमी से नहीं लड़ते हैं,
3: मौसम से लड़ते हैं,
4: मौसम से ज्यादा लड़ते हैं. जी है, यहाँ पे कैजुअल्टी भी जब हम देखेंगे तो मौसम के कारण ज्यादा हुई है बजाय जो है गोलियों से जो है.
3: सर जैसे आप फौजियों की भाषा में एक सेंटेंस बोला जाता है कि पहाड़ों की जंग, पहाड़ों की जंग का एक उसूल होता है कि जो ऊंचाई पर बैठा है वही सिकंदर है।
4: बिल्कुल सही बोला,
3: तो यहाँ पर ये सही है।
4: बिल्कुल सही है
3: जी।
4: ये जो फाइट थी
3: जी,
4: ये भी जो है इट वॉज अ कंट्रोल ऑफ सॉल्टोरो रिज, ठीक है, जो कि 80 किलोमीटर लंबा है। तो इसको कंट्रोल करना, इसको डोमिनेट करना ही है मेन जो है
3: जी।
4: अगर आपने सॉल्टोरो रिज लाइन कंट्रोल करी हुई है तो आपने सियाचिन ग्लेशियर कंट्रोल किया हुआ है। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। आपने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बात बोली जो है
3: जी।
4: जैसे हमने तो ये इम्पोर्टेंट पासेस थे, इनको कंट्रोल कर लिया था, डोमिनेटिंग हाइट्स को कंट्रोल कर लिया था। अब पाकिस्तान भी जो है स्ट्रगल कर रहा था कि किसी तरह से सॉल्टोरो रिज लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं वो अपना हक जमा सके जो है। तो उसका जो फोकस था कि वो किसी तरह से बिला फांडला जो पास है
3: जी,
4: उसको कब्जा कर सके या उसके आसपास जो हाइट्स है उसके ऊपर जो है अपना वर्चस्व बना सके। क्योंकि अगर आपने वहां पे कोई भी हाइट भी ले ली जिससे आप जो है बिला फांडला के या कोई सियाला के पासेस में अगर आप इंटरफेयर कर सकते हैं जो, तो भी जो है आप आधी लड़ाई जीत जाते
3: जी,
4: हैं।
3: वही ऊंचाई पर बैठे रहेंगे तो आप नीचे सबको कंट्रोल कर सकते
4: हैं। एग्जैक्टली वही था। तो फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने एक लोकेशन सेलेक्ट करी एंड ये जो है काफी मतलब जो है स्टीप वर्टिकल एक हाइट थी
3: जी,
4: और उसके ऊपर जो है उन्होंने वो पोस्ट एस्टैब्लिश करी। छोटी सी बहुत पोस्ट थी, उसमें इवन जाने के लिए वो मतलब आप ये समझ के 90 डिग्री की चढ़ाई है, ठीक है। और उसको चढ़ने के लिए मतलब आपको रस्सी और लैडर के सहारे ही चढ़ सकते थे।
3: अच्छा,
4: तो उसको उन्होंने कैद पोस्ट का नाम दिया, कायदे आजम के नाम पे शायद उन्होंने। और ये जो क्या था, ये जो पोस्ट थी ये डोमिनेट करती थी बिला फांडला
3: पूरे दर्रे को,
4: जो बिला फांडला पे जो हमारी डिप्लॉयमेंट थी उसके ऊपर आ गई है। इस कारण से उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो प्रॉपर हो गया, तो उससे जो है आर्टिफायर जो है बिला फांडला पे जो है इंटेंस आने लगा। एंड इसके अलावा जो मूवमेंट होती थी, ट्रूप्स की मूवमेंट होती थी, उसमें भी वो लोग इंटरफेयर करने लगे, ठीक है। तो ये जो है कैच पोस्ट जो है इट बिकम ए मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडियन आर्मी ड्यू टू इट्स डोमिनेंट लोकेशन एंड कॉन्स्टेंट इंटरफेरेंस। अब इसको कब्जा करना एक तरह से हमारे लिए निहायत जरूरी हो गया था,
3: चुनौती बन गया सर,
4: चुनौती बन गया था
3: जी।
4: अब जैसे अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि ये जो लोकेशन थी इसको, लेकिन कब्जा करना जो है इसको कैप्चर करना इटसेल्फ वाज अ बिग चैलेंज। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल हाइट थी 21,000 फीट के ऊपर और अप्रोच नहीं थी सीधा, मतलब जो है आपको क्लाइम करना है, ठीक है। अच्छा, ऊपर से एक और है कि स्नो बाउंडेड है तो वहां पे कोई कवर अवेलेबल नहीं है। आप जब मूव करते हैं तो दूर से नजर आता
3: खुले
4: है, खुले में आप दिखते हैं, जैसे आप पहुंचेंगे तो नजर आएगा। इवन फायर सपोर्ट नहीं अवेलेबल हो सकता क्योंकि वो ऐसी पोस्ट थी कि आपको आसपास के वेपन भी कवर नहीं करते थे, इवन आर्टिफायर भी कवर नहीं कर पाता था। उस पोस्ट के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। एरियल से हम जो पता कर सकते थे वो तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसका लेआउट क्या था, उसमें कितने हथियार थे, क्या उसकी मैन पावर थी, उसका साइज क्या था, मतलब ये सब जानकारियां होना बहुत जरूरी होता है जब आप कोई भी ऑपरेशन ऐसे लॉन्च करते हैं। तो ये सब जानकारी हासिल करने के लिए एक पेट्रोल हम बोलते हैं कि जो एक टुकड़ी होती है जो कि जानकारी हासिल करने के लिए जाती है।
3: अच्छा,
4: उस टुकड़ी का जनरली काम यही होता है कि वो जानकारी हासिल करे, उसको हम पेट्रोल बोलते हैं
3: जी।
4: तो उसमें एक ऑफिसर साहब, एक जेसीओ साहब और 7 अदर रैंक, छोटी सी टीम थी, बहुत ही मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड पीपल। ये 24 मई को 87 को उधर गए थे, रात के टाइम मूव किया। अब वर्टिकल क्लाइम था
3: जी।
4: अब इन्होंने अच्छा ये काम किया कि जब वर्टिकल क्लाइम कर रहे थे तो साथ साथ रोप लगाते चले गए।
3: अच्छा,
4: क्योंकि ताकि जब अटैक करने के टाइम पे इसको सहायता से ऊपर जा सकते हैं। इवन उन्होंने क्या किया, वहां पे लेजेस भी बनाई थी, मतलब लेजेस मतलब इन द सेंस की जगह बर्फ काट के, ताकि वहां हम स्टोर रख सकते हैं। तो ये जो टीम है ये ऊपर पहुंची। अब ऐसा होता है ना, जैसे आप सीधे ऊपर चढ़े हैं वर्टिकल क्लाइम से और झट से आप उसके ऊपर पहुंच गए, और वहां पे ये क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते रहे। इन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करी। अब इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद, मतलब इन्फॉर्मेशन इन द सेंस की लेआउट क्या है, उनको जो अंदाजा था
3: जी।
4: बट ये जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ रहे थे, सडनली वहां से मशीन गन फायर शुरू हो गया।
3: दुश्मन ने देख लिया,
4: एंड जो अफसर साहब थे साथ में, जो है इनके 4 जवान थे, वो वहीं पे मतलब जो शहीद हो गए। इट वाज इंटेंस फायर, तो जैसे वो जो रिमेनिंग सोल्जर्स थे वो किसी तरह से उन्होंने अपना को रिट्रैक्ट किया और जो है वापस अपनी पोस्ट पे पहुंचे, नीचे आए। मानने लायक वो है कि जो पेट्रोल थी ये जो वापस इंफॉर्मेशन लेके आई, इट वाज अ वेरी इमेंस वैल्यू, जो
3: है अमूल्य थी,
4: अमूल्य थी, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर जो है अटैक प्लान किया। और ये अटैक जो प्लान किया गया, जो ये शहीद हुए हैं ऑफिसर साहब और जवान, ये उनकी जो है शहादत, उनकी जो बहादुरी का एक बहुत बड़ा मतलब उनका योगदान रहा। दे डिड अ रियली आउटस्टैंडिंग एंड कमेंडेबल जॉब इन दिस। तो वो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे फिर जो है अटैक प्लान किया गया और जून के महीने में जो है अटैक लॉन्च हुआ। एंड इस अटैक में भी जो फोर्स गई थी वो दे वर ऑल वॉलंटियर्स, हाईली मोटिवेटेड पीपल। अब ये भी मालूम था सबको कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मतलब 90% तो ये है कि हो सकता है हम नहीं वापस आएंगे। उसके बावजूद भी आप में कितना हौसला, कितना जज्बा होता है, कितना देश प्रेम होता है, कितना अपनी यूनिट के लिए जो है प्राइड होता है, कि उसके बावजूद सब वॉलंटियर करके गए थे, जो है
3: सर पर कफन
4: बांध के गए थे। बिल्कुल सही बोला आपने, जो है। और वर्टिकल स्टीप क्लाइम जो था, रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच था, तो उसमें क्या है बहुत सारे लोग भी एक साथ नहीं जा सकते,
3: नहीं जा सकते,
4: ठीक है। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, ठीक है, वेरीफाइड ऑक्सीजन है, सांस नहीं आ रहा है और उसके बाद जो है
3: हथियारों के साथ चढ़ना
4: और ऊपर गए, जो है पहला जो अटैक हुआ उसमें जो है मतलब काफी फायरिंग चल रही जो है। एंड उसके बाद फिर से दूसरी जगह से जो है अटैक किया, एक और पार्टी ने अटैक किया। तो वो जो एक स्मॉल टीम थी उसको नायब सुधार बाना सिंह साहब लीड कर रहे थे, जेसी साहब, उनके साथ सिक्स सोल्जर्स और थे, वो किस ऊपर पहुंचने में सफल रहे। एंड उन्होंने वहां जाके पोस्ट के ऊपर अटैक किया ग्रेनेड से और स्मॉल आर्म से। पाकिस्तानी सोल्जर जो थे वहां पे उन्होंने भी जो है डट के मुकाबला किया, जवाब दिया, लेकिन फाइनली द इंडियन सोल्जर्स ओवरकम।
3: चौकी पे भारतीयों का
4: कब्जा हो गया। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो पीछे से जो पाकिस्तान की तरफ से जो लैडर्स थी रोप से उनको काट दिया,
3: अच्छा, ताकि और आमद ना आ पाए,
4: ठीक है, और जो है इस पोस्ट के ऊपर कब्जा किया। तो ये जो पोस्ट है फिर इसी को हम आज बाना पोस्ट के नाम से जानते हैं, नायब सुधार बाना सिंह साहब। आफ्टर दैट ही बिकेम ऑनरी कैप्टन, ठीक है, जिन्होंने असॉल्ट लीड किया था उनके ऑनर में ये पोस्ट उनके नाम से जानी जाती है,
3: परमवीर चक्र विजेता।
4: जी, ही वाज अवार्डेड द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र फॉर हिज आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी एंड लीडरशिप ना अंडर मोस्ट एडवर्स कंडीशंस। मेरे ख्याल से ये जो ऑपरेशन हुआ था इस कंडीशंस में, बाय द वे मैंने खुद देखी वो पोस्ट, और वो रियली वर्टिकल हाइट है, उसपे चढ़ना मतलब इट्स रियली इम्पॉसिबल। जब हेलीकॉप्टर भी जाता है तो बिल्कुल जाके ऊपर जाके बैठ जाता है, ऐसा लगता है। इट वॉज अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री, आई बिलीव इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशन एवर कैरिड आउट। ओके, एंड वी सल्यूट दिस ब्रेव सोल्जर्स हु पार्टिसिपेटेड इन दिस एंड ब्रॉट अस प्राइड।
3: वाकई में सर, बाना सिंह सर की इस परमवीरता को नमन है जिनके कारण हम इस महत्वपूर्ण पोस्ट को अपने कब्जे में ले पाए। श्रोताओ, सियाचिन की ये जंग सन 1984 में उसी दिन समाप्त नहीं हुई। आज भी इस वक्त जब आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारी सेना के जवान -50 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली ठंड में सीना ताने वहां खड़े हैं। दुश्मन से ज्यादा घातक वहां का बर्फीला मौसम, फ्रॉस्ट बाइट, लो ऑक्सीजन और बर्फीले तूफान में भी उनके हौसलों को डिगाया नहीं जा सकता। ये गौरव गाथा आगे भी जारी रहेगी हमारे कार्यक्रम की अगली कड़ी में। सर, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने ऑपरेशन मेघदूत के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू पूर्वा जी, एंड जय हिंद श्रोताओं।
3: तो श्रोताओ, आज का हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश पाथम का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। अब दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
2: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रजा मुराद और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं सोनाली राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए जय हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम देश के संस्थान।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: श्रोताओं, अब तक हम भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और विभिन्न सुरक्षा बलों और रक्षा संस्थानों के बारे में जान चुके हैं, लेकिन क्या केवल सैनिकों और सुरक्षा बलों के साहस से ही देश की रक्षा होती है? नहीं, उनके पीछे ऐसे अनेक वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ भी काम करते हैं जो देश की सुरक्षा को नई शक्ति देते हैं। श्रोताओं, आज हम जानेंगे ऐसे ही एक महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

0: पुनर्गठन किया गया और इसका नाम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड रखा गया।
1: और इसका मुख्यालय कहाँ पर है?
0: कर्नाटक की राजधानी बेटा, बेंगलुरु में।
1: दादू, मुख्यालय बेंगलुरु में है तो क्या इसके सभी कारखाने भी वहीं स्थित है?
0: नहीं बिटिया, इसका मुख्यालय तो बेंगलुरु में है लेकिन इसके कारखाने, उत्पादन इकाइयां और अनुसंधान एवं विकास केंद्र देश के कई राज्यों में स्थित हैं।
1: कहाँ कहाँ दादू?
0: बेंगलुरु के अलावा बेटा नासिक, कानपुर, कोरापुट, उड़ीसा, हैदराबाद, लखनऊ और अन्य कई स्थानों पर हाल की इकाइयां कार्य कर रही हैं।
1: अच्छा।
0: प्रत्येक केंद्र की अपनी विशेष भूमिका होती है बेटा। कई विमानों का निर्माण होता है, कहीं इंजन बनाए जाते हैं तो कहीं अनुसंधान, परीक्षण और तकनीकी विकास का कार्य किया जाता है।
1: यानी हाल केवल एक शहर तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में फैला हुआ एक विशाल तकनीकी नेटवर्क है।
0: बिल्कुल सही बेटा, यही कारण है कि देश के विभिन्न भागों के वैज्ञानिक, इंजीनियर और टेक्नीशियन और कुशल कर्मचारी मिलकर हाल को भारत की अग्रणी एयरोस्पेस संस्था बनाते हैं।
1: वाह दादू, यानी ये वाकई पूरे देश की सामूहिक प्रतिभा और परिश्रम का प्रतीक है।
0: बिल्कुल बिटिया, जब देश के अलग अलग हिस्सों की प्रतिभाएं एक लक्ष्य के लिए मिलकर काम करती हैं, तभी ऐसी महान संस्थाएं राष्ट्र की शक्ति बनती हैं।
1: वैसे दादू, क्या विमान बनाना आसान प्रोसेस है?
0: नहीं बिटिया, ये इतना आसान नहीं है बल्कि किसी विमान के निर्माण से पहले सालों तक अनुसंधान, परीक्षण और डिजाइन का कार्य किया जाता है और हाल के अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास केंद्रों में वैज्ञानिक और इंजीनियर नई तकनीकों पर लगातार काम करते रहते हैं।
1: मतलब पहले शोध, फिर डिजाइन और उसके बाद निर्माण।
0: बिल्कुल सही, शाबाश। इसी प्रक्रिया को अनुसंधान एवं विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहा जाता है बेटा।
1: वैसे दादू, आपने एवियोनिक्स शब्द का भी जिक्र किया था, ये क्या होता है?
0: देखो बेटा, विमानों में लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एवियोनिक्स कहा जाता है।
1: ये किस तरह के उपकरण होते हैं दादू?
0: ये रडार, संचार प्रणाली, नेविगेशन प्रणाली, उड़ान नियंत्रण प्रणाली और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इनके बिना आधुनिक विमान सुरक्षित रूप से उड़ान नहीं भर सकते बेटा।
1: यानी एवियोनिक्स विमान का दिमाग होता है।
0: वाह, बिल्कुल सही, शाबाश बेटा।
1: दादू, तो क्या हाल केवल विमान बनाकर अपना काम पूरा कर देती है?
0: नहीं नहीं बेटा, विमानों और हेलीकॉप्टरों की देखभाल, मरम्मत और समय समय पर तकनीकी उन्नयन भी हाल की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है।
1: अच्छा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
0: इसे बेटा MRO कहा जाता है, यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। इसे हिंदी में कहेंगे रखरखाव, मरम्मत और गहन तकनीकी निरीक्षण।
1: मतलब हाल विमान के निर्माण से लेकर उसकी पूरी सेवा अवधि तक उसकी कार्य क्षमता का ध्यान रखती है।
0: बिल्कुल बेटा।
1: दादू, विमान बनाते समय सबसे ज्यादा किस बात का ध्यान रखा जाता है?
0: सुरक्षा और गुणवत्ता का बेटा। विमान का प्रत्येक पुर्जा कई बार जांचा और परखा जाता है, छोटी सी गलती भी बड़े खतरे का कारण बन सकती है।
1: वो तो है दादाजी। अच्छा ये बताइए कि यदि कोई स्टूडेंट भविष्य में हाल जैसी संस्था में काम करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए?
0: सबसे पहले तो विद्यार्थियों को अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान विज्ञान और गणित पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विमान, हेलीकॉप्टर, रॉकेट और आधुनिक तकनीकों की पूरी दुनिया विज्ञान और गणित की मजबूत नींव पर खड़ी होती है बेटा।
1: यानी गणित और विज्ञान से दोस्ती करना बहुत जरूरी है दादाजी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से हमें उड़ान के सिद्धांत समझ में आते हैं। गणित से जटिल गणनाएं की जाती हैं और कंप्यूटर विज्ञान आधुनिक प्रणालियों को संचालित करने में मदद करता है।
1: तो फिर आगे कौन कौन से विषय पढ़े जा सकते हैं दादाजी?
0: 12वीं के बाद विद्यार्थी अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कई क्षेत्रों का चयन कर सकते हैं बेटा।
1: जैसे?
0: जैसे कि एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, इन क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करके वे हाल DRDO, इसरो, इन जैसे कई अन्य वैज्ञानिक संस्थानों में कार्य कर सकते हैं बेटा।
1: दादू, तो क्या केवल इंजीनियर ही हाल में काम करते हैं?
0: नहीं बिटिया, हाल जैसी बड़ी संस्था में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ साथ तकनीशियन, कंप्यूटर विशेषज्ञ, डिजाइनर, गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञ, प्रोजेक्ट प्रबंधक, वित्त अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी कार्य करते हैं। इसीलिए हर प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए यहाँ अवसर मौजूद है।
1: अच्छा, यानी हर किसी के लिए कोई ना कोई भूमिका होती है।
0: बिल्कुल बेटा, लेकिन एक बात सभी के लिए समान है, अनुशासन, परिश्रम, जिज्ञासा और निरंतर सीखने की इच्छा। विज्ञान का हर क्षेत्र हर दिन आगे बढ़ता है बेटा, इसीलिए सीखना कभी नहीं रुकता।
1: दादू, क्या विद्यार्थियों को भविष्य के लिए पहले से कुछ विशेष आदतें भी विकसित करनी चाहिए?
0: बिल्कुल करनी चाहिए बेटा, उन्हें विज्ञान की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, विज्ञान प्रदर्शनियों में भाग लेना चाहिए, मॉडल बनाना चाहिए, रोबोटिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए और नई तकनीकों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, इससे उनकी वैज्ञानिक सोच विकसित होती है।
1: दादाजी, यानी आज की पढ़ाई ही कल देश सेवा का माध्यम बन सकती है?
0: बिल्कुल बन सकती है बेटा, देश की रक्षा केवल सीमा पर खड़े सैनिक ही नहीं करते, बल्कि प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केंद्रों और कारखानों में कार्य करने वाले वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीशियन भी करते हैं बेटा। जब कोई वैज्ञानिक नई तकनीक विकसित करता है, कोई इंजीनियर सुरक्षित विमान बनाता है और कोई तकनीशियन उसे पूरी निष्ठा से तैयार करता है, तब वे भी राष्ट्र सेवा ही कर रहे होते हैं बेटा।
1: मतलब देशभक्ति केवल हथियार उठाने में नहीं है दादाजी, बल्कि ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त बनाने में भी है।
0: बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, यदि आज का विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करे, विज्ञान को समझे और बड़े सपने देखने का साहस करे, तो कल वही भारत की नई उड़ान का निर्माता बन सकता है।
1: वाह दादू, अब तो मुझे भी समझ में आ गया है कि हाल जैसे संस्थान केवल विमान ही नहीं बनाते, बल्कि देश के युवाओं को भी बड़े सपने देखने की प्रेरणा देते हैं।
0: हाँ बेटा, और यही प्रेरणा भारत को आत्मनिर्भर, वैज्ञानिक और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ाती है, साथ साथ नई पीढ़ी के नई सोच के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सेना तैयार करती है।
1: ये तो वाकई सुपर मेकर है दादू।
0: बिल्कुल सुपर मेकर है बेटा। तुम जानती हो बेटा, हाल द्वारा विमानों और हेलीकॉप्टरों की देखभाल, मरम्मत, उन्हें समय समय पर नई तकनीकों के अनुरूप उन्नत बनाने की प्रक्रिया का काम कभी नहीं रुकता। हाल के वैज्ञानिक कर्मचारी दिन रात इसे बेहतर बनाने की दिशा में लगे रहते हैं बेटा।
1: मतलब एक विमान के निर्माण से लेकर उसकी पूरी सेवा अवधि तक।
0: बिल्कुल बिटिया, तभी तो हाल भारत की वायु शक्ति को मजबूत बनाने वाले प्रमुख संस्थानों में गिना जाता है।
1: दादू, ये तो बिल्कुल ऐसा है मानो एक पौधा लगाकर उसे पेड़ बनाने तक की जिम्मेदारी ले ली जाए।
0: ऐसा ही समझो बेटा।
1: मतलब आज की मेहनत ही भविष्य की उड़ान बन सकती है।
0: सही कहा बेटा, जब वैज्ञानिकों का ज्ञान, इंजीनियरों की मेहनत और राष्ट्र के प्रति समर्पण एक साथ आते हैं, तब आकाश में नई उड़ानें जन्म लेती हैं।
1: और शायद इसी कारण हाल को आकाश की शक्ति के निर्माण करने वाले संस्थान के रूप में जाना जाता है।
0: बिल्कुल बेटा।
1: दादू, हाल भविष्य की किन परियोजनाओं पर काम कर रहा है?
0: फिलहाल बेटा, हाल की कई अहम परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान, नई पीढ़ी के हेलीकॉप्टर, आधुनिक ड्रोन प्रणालियां और भविष्य के लड़ाकू विमान शामिल हैं।
1: यानी आने वाले सालों में भारत सुपर पावर और आत्मनिर्भर बनने वाला है दादाजी।
0: बिल्कुल बेटा, आत्मनिर्भर भारत का मतलब बस अपने उत्पाद बनाना नहीं होता, बल्कि अपनी तकनीक, अपने वैज्ञानिक ज्ञान और अपनी निर्माण क्षमता विकसित करना भी होता है।
1: इसका मतलब हाल इसी दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
0: हाँ बेटा, हाल ने केवल विमान नहीं बनाए, बल्कि भारत को वैश्विक एयरोस्पेस क्षेत्र में सम्मानजनक पहचान दिलाने में भी योगदान दिया है।
1: दादू, आज मुझे समझ में आया कि किसी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सेना में नहीं बल्कि उसके वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अनुसंधान संस्थानों में भी होती है।
0: बिल्कुल सही कहा बेटा, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार ही भविष्य के भारत की असली शक्ति है।
1: दादू, आपने हाल के विमानों और हेलीकॉप्टरों के बारे में तो बताया, लेकिन अब और क्या नया बताएंगे मुझे?
0: देखो बेटा, अब हम हाल के एक ऐसे पक्ष को जानेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
1: वो क्या?
0: हाल केवल विमान और हेलीकॉप्टर ही नहीं बनाता, बल्कि विमान इंजनों, अंतरिक्ष कार्यक्रमों और भविष्य की रक्षा तकनीकों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।
1: सही दादू?
0: हाँ बेटा।
1: मुझे तो लगता था कि हाल का काम केवल विमान बनाना ही है।
0: यही तो खास बात है, किसी भी विमान को उड़ाने के लिए केवल उसका ढांचा पर्याप्त नहीं होता, उसे शक्ति देने के लिए एक अत्याधुनिक इंजन की जरूरत होती है बेटा। जिस तरह मानव शरीर में हृदय रक्त का संचार करता है, उसी प्रकार इंजन विमान को गति और शक्ति प्रदान करता है।
1: यानी इंजन विमान का दिल होता है दादाजी?
0: बिल्कुल बेटा, यदि विमान का ढांचा उसका शरीर है तो इंजन उसका दिल है। बिना इंजन के विमान उड़ ही नहीं सकता।
1: लेकिन दादू, विमान का इंजन बनाना तो बहुत कठिन काम होगा।
0: हाँ बेटा, ये दुनिया की सबसे जटिल तकनीकों में से एक मानी जाती है। विमान के इंजन को अत्यधिक तापमान, तीव्र गति और भारी दबाव में भी सुरक्षित रूप से कार्य करना पड़ता है। इसलिए इसके निर्माण में अत्यंत उन्नत धातुओं, खास मिश्र धातुओं और सटीक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है।
1: तो क्या हाल अपने इंजन स्वयं बनाता है दादाजी?
0: हाल ने सालों से कई तरह के जेट और हेलीकॉप्टर इंजनों के निर्माण, असेंबली, परीक्षण और रखरखाव में खास भूमिका निभाई है बेटा। इसके अलावा हाल स्वदेशी इंजन तकनीक के विकास के लिए भी लगातार प्रयास कर रहा है।
1: दादू, स्वदेशी इंजन तकनीक का क्या महत्व है?
0: इसका मतलब है कि हम महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों के लिए दूसरे देशों पर कम निर्भर रहें। अगर इंजन जैसी महत्वपूर्ण तकनीक देश में ही विकसित हो जाए तो हमारी आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों मजबूत होती है बेटा।
1: क्या इस दिशा में कोई विशेष संस्थान भी काम कर रहा है?
0: हाँ बेटा, बेंगलुरु स्थित एयरो इंजन अनुसंधान एवं विकास केंद्र, यानी एयरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। यहाँ वैज्ञानिक और इंजीनियर भविष्य की इंजन तकनीकों पर लगातार अनुसंधान करते रहते हैं।
1: दादू, क्या इंजन बनने के बाद उसे सीधे विमान में लगा दिया जाता है?

0: उससे कहीं अधिक कठिन उसे बनाने वाली तकनीक विकसित करना है।
1: सही कह रहे हो बेटा, और यही कारण है विमान इंजन तकनीक किसी भी राष्ट्र की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का महत्वपूर्ण मापदंड मानी जाती है।
0: वाह, अब तो मुझे हाल के काम का दायरा पहले से भी अधिक बड़ा दिखाई देने लगा है दादाजी।
1: और अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है बिटिया। अगली बैठक में हम जानेंगे कि हाल भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में किस प्रकार योगदान देता है और कैसे वो भविष्य के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
0: सचमुच दादू?
1: हाँ बेटा, लेकिन एक शर्त है।
0: वो भला क्या?
1: तुम मुझे बढ़िया सी चाय बना के पिलाओ पहले।
0: बस
1: हाँ,
0: इतनी सी बात?
1: हाँ बेटा,
0: अभी बना के लाती हूँ दादू।
1: थैंक यू प्यारी बिटिया।
0: जय हिंद दादाजी।
1: जय हिंद बच्चे, जय हिंद।
2: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का। आपके साथ हम थे आपके रेडियो सेट पर, मैं भगवती सक्सेना
1: और मैं दीपक नेमा।
2: लेखन किया स्वाति गिरी ने। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान। ये रेडियो आजाद हिंद है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं उमेश वीनस तरकसवार के संगीत निर्देशन में मध्य प्रदेश गान।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर अपनी ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फ़ोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आज़ाद हिंद टाइप करें। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आज़ाद हिंद

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम आजाद हिंद में। आजाद हिंद में अभी तक हमने आपको सुनाए क्रांति कथाएं, शौर्य गाथाएं, महापुरुषों की जीवनियां, उनसे जुड़े प्रेरक प्रसंग, आजादी के मुकदमे, संस्मरण और देशभक्ति से ओतप्रोत गीत। आइए इसी तारतम्य में आज बात करते हैं उर्दू साहित्य के कोहिनूर कहे जाने वाले मिर्जा गालिब जी की।
1: श्रोताओं, उर्दू साहित्य के एक पारखी ने एक जगह लिखा है कि मुगल साम्राज्य ने हमें तीन चीजें दी हैं, ताजमहल, उर्दू और गालिब। मिर्जा गालिब उर्दू के बहुत ही विख्यात कवि हुए हैं, केवल उर्दू के ही नहीं फारसी के भी। उनका पूरा नाम मिर्जा असदुल्ला बेखां गालिब था। उनके दादा कौकान बेखां शाह आलम के जमाने में समरकंद से हिंदुस्तान आए थे। आगरा में 1797 में मिर्जा गालिब का जन्म हुआ।
0: गालिब अभी छोटे ही थे कि उनके पिता मिर्जा अब्दुल्ला बेखां का देहांत हो गया। उनके चाचा मिर्जा नसरुल्ला बेखां ने उनका पालन पोषण किया। मिर्जा गालिब केवल 8 ही बरस के थे जब उनके चाचा का भी देहांत हो गया। लोहारू के नवाब अहमद बख्श खां ने लॉर्ड लेक से सिफारिश की और वहाँ से पेंशन का इंतजाम किया। वो पेंशन मिर्जा नसरुल्ला बेग खां के संबंधियों के लिए थी। 5,000 रुपए वार्षिक पेंशन में से मिर्जा गालिब का केवल 750 रुपए सालाना था। वैसे उस जमाने के हिसाब से ये अच्छी खासी रकम थी।
1: गालिब ने आगरा के मौलवी मोहम्मद मुअज्जम और एक ईरानी मुल्ला अब्दुल रस्मत से फारसी पढ़ी, परंतु उन उस्तादों से ज्यादा जिस चीज ने गालिब पर असर किया वो था उनका वातावरण। इनका बचपन आगरा के जिस मोहल्ले में गुजरा वो गुलाब खाना कहलाता था। उस जमाने में वो गोया फारसी जबान का केंद्र था और यहीं से मिर्जा असदुल्ला बेग खां गालिब एक शायर बनने की तरफ बढ़ चले।

लगजिश ना खाऊं जिस्म पे आफत हजार हो, खिदमत में कौम की मेरा ये सर निसार हो, ये सर निसार हो।

इज्जत की ख्वाहिश दिल में ना, जिनहार हो मुझे, चढ़ जाऊं वतन के लिए, गरदार हो मुझे, गरदार हो मुझे।

वतन की हर घड़ी करता सफर रहूं, जाने के लिए जेल में सीना सिपर रहूं, सीना सिपर रहूं।

हाकिम की क्या लिखने से जब कलम बंद हो, इजहार हो मेरा यही आजाद हिंद हो, आजाद हिंद हो।

0: 13 बरस की उम्र में गालिब की शादी नवाब अहमद बख्श खां के छोटे भाई इलाही बख्श खां मारूफ की 11 साल की सुपुत्री उमराव बेगम से हो गई। उन दिनों शादियां छोटी उम्र में ही हो जाया करती थी। गालिब जब तक आगरा में रहे उन्हें खर्च की कोई तंगी नहीं हुई, बल्कि सच तो ये है कि रुपए पैसे की बहुतायत ही थी। दिल्ली में जब वो आए तो वो 750 रुपए की पेंशन उनकी जान का रोग बन गई। कभी बंद हो गई और कभी मिलने लगी। उस पेंशन से गालिब का गुजारा भी मुश्किल से ही होता था। गालिब ये भी समझते थे कि पेंशन नियत करने के बारे में उनके साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय हासिल करने के लिए वे कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता पहुंचकर उन्हें पेंशन के मामले में सफलता तो मिली नहीं, लेकिन वहां के साहित्यिक लोगों से झगड़े जरूर मोल ले लिए। उनमें से मिर्जा कतील और उनके शिष्यों से उनके झगड़े बहुत मशहूर हैं।
1: गालिब की पेंशन का मुकदमा करीब 16 साल तक चलता रहा। इस पर उनका हजारों रुपया उठ गया, जिसका बड़ा हिस्सा उन्होंने महाजनों से ब्याज पर कर्ज लिया था। बदकिस्मती से मुकदमे का फैसला उनके खिलाफ हो गया और उनकी बाकी उम्र इस कर्ज को चुकाने में कट गई। गालिब बड़े स्वाभिमानी थे। केवल एक उदाहरण से इस बात का पता चल जाएगा। एक बार मिर्जा गालिब को दिल्ली कॉलेज में फारसी के मुख्य अध्यापक का पद पेश किया गया, परंतु उन्होंने अपने स्वाभिमान के कारण उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर टॉमसन कॉलेज को देखने आए तो उन्होंने मिर्जा गालिब को बुलवा भेजा। अगले दिन वो पालकी पर सवार होकर बंगले पहुंचे और दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करने लगे कि अभी कोई स्वागत करने को आएगा। जब किसी ने आकर उनसे कहा कि हजरत तशरीफ लाइए, तो गालिब ने कहा, साहब कोई लेने आए तो उतरूं?
0: ये सुनकर मिस्टर टॉमसन स्वयं बाहर निकल आए और कहने लगे, चूंकि आप रस्मी मुलाकात के लिए नहीं बल्कि नौकरी के लिए आए हैं, इसलिए कोई पेशवाई को कैसे हाजिर होता? मिर्जा बोले, नौकरी इसलिए करना चाहता हूँ कि इससे मेरा सम्मान बढ़े, न कि जो पहले से है उसमें भी कमी आ जाए। इतना कहकर मिर्जा ने पालकी के कहारों को हुक्म दिया कि वापस चलो।
1: मिर्जा गालिब 4 जुलाई 1850 को बादशाह जफर के दरबार में पेश हुए। बादशाह ने नज़्मुद्दौला दरीबु मुल्क निजाम जंग कहकर खिताब दिया। 50 रुपए माहवार वेतन मुकर्रर हुआ। गालिब की जरूरतों के सामने इन 50 रुपयों की हस्ती ही क्या थी, और इस पर वे भी मिले 6-6 महीनों में।

0: सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद किले की ये मुलाजमत भी जाती रही। रामपुर के नवाब यूसुफ अली खां मिर्जा गालिब के प्रसिद्ध शिष्यों में से थे। उन्होंने 1859 में मिर्जा की 100 रुपए महीना तनख्वाह नियत कर दी थी। इस पर भी उनकी आर्थिक परेशानियां खत्म नहीं हुई।
1: मिर्जा खुद एक रईस खानदान के थे, रईसों से रिश्तेदारी और याराना था, बादशाहों और नवाबों के उस्ताद थे, इसलिए रख रखाव की आदत इनका स्वभाव बन गई थी। वो घर पर दिल्ली के बड़े लोगों की तरह पजामा और खुली अस्तीन का कुर्ता या अंगरखा पहनते थे। सिर पर आम तौर पर मलमल की खुली हल्की टोपी होती, जिस पर कामदानी या कसीदे का काम होता। जाड़ों में सर्दियों से बचने के लिए किसी गर्म कपड़े का कलीदार पजामा और मिर्जई पहनते। बाहर निकलते तो तंग मोरी का आड़ा पजामा, कुर्ता और उस पर सदरी, ऊपर किसी भारी और कीमती कपड़े का चोगा और उस पर एक जामा, पांव में घेतली जूती और हाथ में मूठदार लंबी लकड़ी, जिस पर उनका नाम असदुल्ला अल गालिब खुदा हुआ था।
0: मिर्जा गालिब ने अपने दोस्तों, शागिर्दों और संबंधियों को जो अमूल्य पत्र गद्य में लिखे हैं, उनके संग्रह उर्दू ए मुअल्ला, उदे हिंदी और मकातीबे गालिब के नाम से छप चुके हैं। उनकी उर्दू कविताओं का संग्रह दीवान ए गालिब के नाम से सर्वविख्यात है। हास्य रस उनकी घुट्टी में पड़ा था। उनकी कोई बात लतीफे और चुटकुले से खाली नहीं होती थी। गालिब की कविता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने पुरानी डगर को छोड़कर नए रास्ते को ग्रहण किया। उनकी गजलें अब भी लोगों को जुबानी याद हैं। उनमें मनोविज्ञान, आदमी की मानसिक वृत्तियों का उतार चढ़ाव, ईश्वर और प्रेमिका से छेड़छाड़ और हास्य रस के अमूल्य उदाहरण मिलते हैं।
1: उर्दू के गद्य और पद्य को पुरानी परंपरा की जंजीरों से आजाद करके एक नए रंग की बुनियाद मिर्जा गालिब ने डाली। उनका अनुकरण तो बहुतों ने किया, मगर सफलता किसी को नसीब नहीं हुई। 15 फरवरी 1869 को मिर्जा गालिब की मृत्यु हो गई, जिसने एक तरफ इस देश में फारसी के साहित्य को ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया। वो महान शायर चुपचाप, खामोश, मौत के आगोश में चला गया। मिर्जा गालिब तो चले गए, लेकिन उनके कहे हुए शेर और गजलें आज भी जिंदगी के फलसफे को बयां करती हैं, और उन्हीं के कारण मिर्जा गालिब हमेशा लोगों के दिल में जिंदा रहेंगे। हमारा उनको सादर नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं, वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं शान की आवाज में मध्य प्रदेश गान।

0: अभी आपने सुना शान की आवाज में मध्य प्रदेश गान। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं, वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें।
1: नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
2: दावा है हर रान हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। परिक्रमा सुनने वाले सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं हूं आपकी रेडियो मित्र दीप्ति। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की, साथ ही जानकारी देंगे मौसम की भी। तो बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। रविंद्र भवन स्थित हंस ध्वनि सभागार में आज एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम में चंडीगढ़ की बाल नृत्यांगना नव्या बटकर भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति देंगी। इस शाम को शुरू से सजाने मुंबई के नामचीन कलाकार मंच पर उतरेंगे। शहर की प्रतिष्ठित रंग संस्था कोशिश नाट्य संस्था द्वारा आज 14 जून को चर्चित नाटक आओ तनिक प्रेम करे का मंचन किया जाएगा। मानव संग्रहालय में भारतीय शास्त्रीय कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए आयोजित 15 दिवसीय कुचिपुड़ी समर वर्कशॉप का समापन आज 14 जून को होगा। इस अवसर पर संध्या 5 बजे से विशेष मंच प्रस्तुतियां, नृत्य साधना का आयोजन किया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु वनश्री राव द्वारा परिकल्पित एवं कोरियोग्राफी की गई इस प्रस्तुति में प्रतिभागी समूह एवं एकल नृत्य रचनाओं के जरिए आंध्र प्रदेश की इस समृद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली की अनूठी गतियों, मुद्राओं और पारंपरिक सौंदर्य का प्रदर्शन करेंगे। संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर अमिताभ पांडे ने बताया, कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं में कला के प्रति संवेदनशीलता व आत्म अनुशासन विकसित करना है। राजधानी की एक शाम उस समय रूहानी संगीत के रंग में डूब गए जब रंग श्री लिटिल वेले ऑडिटोरियम में सूफी कव्वाली की गूंज उठी। मौका था कला और संस्कृति के क्षेत्र में अपने नवाचारों के लिए मशहूर यूथ ग्रुप द्वारा आयोजित कार्यक्रम अनहद का, जहां विख्यात अधिरोहा बैंड ने अपनी सूफी कव्वाली से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। और श्रोताओं, आप जा सकते हैं नाटक आओ तनिक प्रेम करें का मंचन देखने के लिए चेतना प्रेक्षागृह नीलबड़ में शाम 7 बजे से। प्रदेश में प्री मानसून आंधी बारिश का दौर जारी है। शनिवार शाम भोपाल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी के साथ 23 मिनट में 19.6 मिलीमीटर बारिश हुई। एयरपोर्ट में 0.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के 26 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल जिले में प्री मानसून सीजन में अब तक 49.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ये सामान्य बारिश से 374% ज्यादा है। आज इंदौर संभाग को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। भोपाल समेत ज्यादातर जिलों में आंधी बारिश के आसार रहेंगे। परिक्रमा में आज बस इतना ही। रखें अपना और अपने अपनों का खास ख्याल, हमें दें अनुमति। नमस्कार, सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: जिसमें कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी।
1: अब समय है अगली मनमोहक प्रस्तुति का, जो है नटेश गौतम, जो भगवान नटराज को समर्पित एक ऊर्जावान और भक्तिमय रचना है। यह प्रस्तुति शिव के दिव्य पांडव और उनकी महिमा का सुंदर वर्णन करती है। यह एक तेज गति वाला टुकड़ा है जिसमें नटेश की सुंदर मुद्राएं हैं, जिसमें सभी ऋषि और असुर पूजते हैं और जो एक हाथ में डमरू के साथ नृत्य करते हैं। नटेश कौतवम राग हंस ध्वनि और काल चतुष्य एकम में रचा है, जो तंजावर कॉर्डेट की रचना है।

और आइए अब रेडियो रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं और कालांजलि कला उत्सव से आपके लिए चलते हैं। स्मरण हबीब 22वें रंग आलाप नाट्य महोत्सव में, जिसका समापन हुआ 12 जून को, इस मौके पर नाटक चरणदास चोर का मंचन किया गया।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम काव्य गुंजन।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए ऐसा काव्य विन्यास लेकर आए हैं जहां पंखुड़ियां रण की चमक से नहीं, तप की शांति से दमकती हैं। यहीं से श्रोताओं, रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग की ये अंतर्मुख और गहन यात्रा आरंभ होती है।
0: श्रोताओं, प्रथम सर्ग में हमने उस क्षण को जिया जहां पराक्रम ने जन्म से प्रश्न किया और प्रतिभा ने पहचान से टकराकर अपना स्वर रचा। वहां कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह मनुष्य था जो सम्मान, अपमान, मित्रता और विवेक के बीच खड़ा होकर अपने भाग्य की दिशा तय कर रहा था। दिनकर जी ने हमें दिखाया कि तेज केवल बाहुबल में नहीं, चयन की अग्नि में तपकर प्रकट होता है। और अब जब वह अग्नि भीतर जल चुकी है, तब हम द्वितीय सर्ग की उस यात्रा की ओर बढ़ते हैं जहां शोर थम जाता है, प्रश्न गहरे होते हैं और आत्मा अपने ही प्रतिबिंब से संवाद करने लगती है।
2: यहां रणभूमि का कोलाहल नहीं, तपोवन की निस्तब्धता है। दिनकर जी हमें उस स्थान पर खड़ा करते हैं जहां शांति कोई पलायन नहीं बल्कि शक्ति का संचय है। ये वो भूमि है जहां अस्त्र विश्राम करते हैं और आत्मा सजग रहती है। आइए सुनते हैं रश्मिरथी के दूसरे सर्ग के प्रथम भाग का पाठ। शीतल विरल एक कानन शोभित अदित के ऊपर कहीं उत्स प्रस्त्र वर्ण चमकते, झरते कहीं शुभ निर्झर, जहां भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन, आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं, कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य, दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन, हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीन भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है, धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हूं शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं, सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर, अजिन दर्भ पलाश कमंडलु एक ओर तप के साधन, एक ओर टंगे धनुष तूणीर तीर बरझे भीषण, चमक रहा त्रिणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली।
0: दिनकर जी यहाँ ऐसे आश्रम का चित्र रचते हैं जहाँ प्रकृति स्वयं तपस्विनी बन गई है। यह स्थान शांति, पवित्रता और संतुलन का प्रतीक है, एक ऐसा परिवेश जहाँ आत्मा सहज ही स्थिर हो जाती है। यह केवल दृश्य नहीं, साधना की भूमि है।
2: ये कानन केवल प्रकृति का सौंदर्य नहीं रचता, ये जीवन का संतुलन सिखाता है। यहाँ हवन की अग्नि बुझ चुकी है पर उसका संस्कार वायु में शेष है, पशु पक्षी निर्भय है क्योंकि यहाँ शक्ति हिंसा में नहीं संयम में निहित है। दिनकर जी संकेत देते हैं कि जो समाज को दिशा देता है वो पहले स्वयं को तपाकर उज्जवल बनता है।
0: वन की निस्तब्धता में मानो प्रकृति स्वयं कर्ण से संवाद कर रही हो और दिनकर जी की वाणी उसमें सांस ले रही हो। हरियाली कहती है, हे सूर्य पुत्र, यह शांति पलायन नहीं साधना है। झरनों की अविरल धारा समझाती है कि जैसे संघर्ष थमता नहीं, वैसे ही पुरुषार्थ भी रुकता नहीं। दिनकर जी इस कानन को केवल वन नहीं, चेतना की पाठशाला बना देते हैं, जहां कर्ण रण के शोर से पहले आत्मा की नीरवता सीखता है। यहां प्रकृति सिखाती है कि जो अपने भीतर के द्वंद को समझ लेता है, वही आगे चलकर धर्म और युद्ध के बीच सही मार्ग चुन पाता है। आइए सुनते हैं दूसरे सर्ग का दूसरा भाग, जहां कर्ण इस दिव्य आश्रम को अपने जीवन की रणभूमि और अपने अंतर मन में कहीं आत्मसात कर रहा है। श्रद्धा बढ़ती अजन दर्भ पर, परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह, उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह सुबा, उसी की कैसे हो सकती है तलवार। आई है वीरता तपोवन में, क्या पुण्य कमाने को, या सन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव ना तो तप ही करता है, ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है।
2: किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहां धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असि की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। ये कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर, व्रती वीर प्रणपाली का। हां हां वही, कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे, आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है।
0: श्रोताओं, ये केवल एक आश्रम का दृश्य नहीं है, यह इतिहास की वह नीरव घड़ी है जहां नियति सांस रोके खड़ी है। एक ओर तप की शांति है, दूसरी ओर शस्त्रों की चेतावनी। जिस भूमि पर अभी धूप चुपचाप उतर रही है, वहीं से कल महायुद्ध की ज्वाला उठेगी। यहां गुरु विश्राम में है और शिष्य सेवा में, पर इसी विश्वास की छाया में छिपा है वह क्षण जो कर्ण के जीवन की दिशा बदल देने वाला है। अब कथा उस बिंदु की ओर बढ़ती है जहां तप की परीक्षा होने वाली है।
2: कर्ण अचल बैठा है, उसकी जांघ पर परशुराम का मस्तक टिका है। गुरु निद्रा में है, शिष्य सजग है। न सांस डगमगाती है, न मांसपेशी कांपती है, पर उसी अडिग स्थिरता में इतिहास की धड़कन तेज हो उठी है। ये केवल विश्राम का क्षण नहीं, ये विश्वास और वीरत्व की कठोर परीक्षा है। एक पल का हिलना तप को भंग कर सकता है, एक क्षण की दुर्बलता युग की दिशा बदल सकती है। इसलिए कर्ण स्थिर है, अचल, अडिग, सूर्य पुत्र की गरिमा में स्थित और उसी महावीर की स्थिरता में इतिहास सहमा हुआ कांप रहा है, मानो वो स्वयं से कह रहा हो।
3: मैं यहां केवल अस्त्र पाने नहीं आया हूं, मैं स्वयं को गढ़ने आया हूं। गुरु का स्नेह मुझे मिला, पर क्या मैं उस विश्वास के योग्य हूं? क्या मेरा जन्म ही मेरी पहचान है? क्या मेरा पुरुषार्थ ही मेरा नाम रचेगा? यदि सत्य का भार उठाना ही मेरी परीक्षा है, तो हे दिवाकर, यदि ये पीड़ा ही मेरी दीक्षा है, तो मुझे इतना धैर्य दो कि मैं इसे मुस्कान की तरह धारण कर सकूं। यदि सत्य का भार ही मेरी परीक्षा है तो मेरी आत्मा को इतना अडिग कर दो कि अपमान का महासागर भी मेरे संकल्प की एक रेखा ना डिगा सके। मैं टूट जाऊं, रक्त बह जाए, प्राण कांप उठें, पर मेरा धैर्य ना टूटे, क्योंकि जो पुरुष विपत्ति के अंधकार में भी अपने पथ से नहीं लौटता, वही समय की शिला पर अपना नाम अग्निलेख की तरह अंकित करता है। और मैं लौटने नहीं आया, मैं अपने भाग्य को स्वयं गढ़ने आया हूं।
0: परशुराम का स्नेह अथाह है, पर उसी स्नेह की छाया में उनका क्रोध भी प्रलयंकारी है। ये तपोवन अभी शांति से सांस ले रहा है, पर कौन जाने भविष्य के गर्भ में क्या धधक रहा है। एक क्षण की चूक, एक असत्य का भार और विद्या का वर शाप बन सकता है। दिनकर जी संकेत देते हैं, वीरता केवल रण की गर्जना नहीं, वह उस मौन क्षण में परखी जाती है जहां भाग्य तलवार की धार पर खड़ा प्रतीक्षा करता है। आई श्रोताओं, अब सुनते हैं द्वितीय सर्ग के भाग 3 का काव्य पाठ, जहां संयम की एक पल की स्थिरता आने वाले युगों की दिशा तय करने वाली है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है, उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृशकाया, उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाने रहते ममता कितनी। कहते हैं,
2: ओ वत्स, पुष्टिकर भोग ना तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा,

0: और कर्ण, वह इस भरोसे को अपने प्राणों से भी भारी मानकर थामे बैठा है। दिनकर जी का यह काव्य इसलिए सदा प्रासंगिक रहेगा क्योंकि इसमें परशुराम और कर्ण का संबंध मानवीय सत्य बनकर उभरता है। गुरु की कठोरता में छिपी ममता और शिष्य की मौन सहनशीलता, यह मर्म हर युग में वैसा ही रहता है। समय बदले, शास्त्र बदले, पर जहां प्रतिभा को तपाया जाता है और विश्वास को परीक्षा से गुजरना पड़ता है, वहां यह रिश्ता आज भी उतना ही जीवित है। द्वितीय सर्ग के इस भाग को सुनकर मानो ऐसा महसूस हो रहा है कि दिनकर जी स्वयं ही परशुराम का मन बनकर बोल उठे हों।
1: ये शिष्य साधारण नहीं है, इसकी नसों में तप और रण दोनों का रक्त बहता है। यदि इसे केवल संयम सिखाया गया तो इसकी देह युद्ध का भार न सह पाएगी, और यदि केवल शस्त्र दिए गए तो आत्मा भटक जाएगी। इसलिए मेरी कठोरता आवश्यक है, मेरी मर्यादा अडिग है। मैं इसे तोड़ने नहीं, गढ़ने आया हूं। जो भविष्य के महासंग्राम का भार उठाएगा उसे आज अनुशासन की अग्नि में तपना ही होगा। ये कठोरता दंड नहीं है।
0: आइए श्रोताओं, अब हम द्वितीय सर्ग भाग 4 की ओर कदम रखें। यहां मौन अब बोझ नहीं रह जाता, वह अर्थ बनकर उभरता है। पीड़ा स्वर पाती है और धैर्य अपनी अंतिम कसौटी पर खड़ा होता है। इसी क्षण कर्ण का भाग्य उससे प्रश्न करता है, क्या तप से जन्मा तेज बिना झुलसे आगे बढ़ सकता है? यही वह मोड़ है जहां ये काव्य रूपी कथा नई दिशा लेती है। आइए सुनते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का भाग 4।
1: खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असविहीन मन डरता है। राजा देता मान भूप का, वो भी आदर करता है। सुनता कौन यहां ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही शोणित में भू को, भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को। पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को, नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें, वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले। भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वो समाज के सिर पर चढ़ता जाता है।
0: अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जभी पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहां रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहां पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। श्रोताओं, दिनकर जी के ये पद्य केवल प्राचीन राजाओं की कथा नहीं कहते, वे आज के मनुष्य को आईना दिखाते हैं। जब सत्ता प्रश्नों से चिढ़ने लगे, जब विवेक को दुर्बल समझा जाए और जय घोष सत्य से ऊंचा हो जाए, तब समाज भीतर ही भीतर खोखला होने लगता है। आज भी हम उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां शक्ति तर्क को दबा रही है और भीड़ सोचने की बजाय तालियां बजा रही है। यही पतन की पहली सीढ़ी है, जहां युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं मूल्यों के विरुद्ध लड़ा जाने लगता है।
1: यहां प्रश्न युद्ध का नहीं, दिशा का है। जब सत्ता स्वयं को ही सत्य मानने लगे, तब धर्म शस्त्रों से नहीं मौन से हारने लगता है। ऐसे समय में जो सोचता है वही अकेला पड़ता है, और जो जय जयकार करता है वही सुरक्षित रहता है। कर्ण का जीवन इसी विडंबना में गढ़ा जा रहा है। एक ऐसा वीर जिसे लड़ना तो आता है, पर जिस युग में वो खड़ा है वहां न्याय से अधिक शोर की कीमत है। यही इस प्रसंग की पीड़ा है और यही इसकी सबसे बड़ी सीख भी। ये यात्रा यहीं ठहरती नहीं, क्योंकि कर्ण का पथ अभी लंबा है और उसकी परीक्षा अभी शेष है।
0: तो श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का, पर ये विदा केवल एक विराम है, इस यात्रा का अंत नहीं। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 5, 6 और 7, जहां कथा और भी गहन होगी और भावनाएं और भी प्रखर। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित गुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का था, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की थी, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का। आपके साथ मैं थी भगवती सक्सेना,
1: मैं संदीप शर्मा
2: और मैं दीपक नेमा।
0: इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा अब यहीं पर विराम लेती है। आप सबसे हम फिर मिलेंगे एक नए अंक में, तब तक के लिए
1: नमस्कार।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन, ये रेडियो आजाद हिंद है 90.8 MHz पर। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
2: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने ट्यून इन किया है रेडियो आज़ाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आज़ादी। तराने आज़ादी सुनने वाले सभी श्रोताओं को दीप्ति का बहुत बहुत नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। तराने आजादी सुनने वाले सभी श्रोताओं को दीप्ति का बहुत

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीप्ति को दें इजाजत। नमस्कार, सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने आजादी 90.8 MHz पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम भारत भारती। इसके अंतर्गत सुनिए तेजस्विनी मंजरी का शास्त्रीय गायन।
2: आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमिला। लेकर आई हूँ आज का भारत भारती कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शास्त्रीय गायिका तेजस्वी मंजरी असनारी केलकर का शास्त्रीय गायन।

अभी आप शास्त्रीय गायिका तेजस्वी मंजरी अस्नारे केलकर का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। अब दीजिए भारत भारती कार्यक्रम से प्रमिला को इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं नाटक काकोरी कांड का 7वां भाग।
2: रेडियो आजाद हिंद प्रस्तुत करता है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास से कुछ रोमांचक प्रसंग श्रृंखला, आजादी के मुकदमे। आज सुनिए 9 अगस्त सन 1925 की घटना पर केंद्रित काकोरी कांड की 7वीं कड़ी।

0: जिन फौजदारी मामले में किसी मुलजिम की शिनाख्त जरूरी होती है उसे हवालात में नहीं जेल में रखा जाता है। ऐसे मुलजिम को पुलिस कस्टडी में नहीं बल्कि फौरन जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। ऐसी क्या वजह थी ऐनुद्दीन साहब कि आप इन मुलजिमान को लगातार पुलिस रिमांड पर हवालात भेजते रहे, जबकि आप बखूबी जानते थे कि इनकी शिनाख्त लाजमी तौर पर करानी होगी। ऐसा तो नहीं कि मुलजिमान को मुसलसल हवालात में रखकर पुलिस को मौके फराहम किए गए कि उनके खुले चेहरे बार बार लोगों को दिखाकर एक से एक फर्जी गवाह तैयार किए जा सके। जिस तरह आपने मुलजिमान के लिबास से मिलते जुलते लिबास वालों को शिनाख्त परेड में साथ खड़ा करने की बात लिखी है, जबकि साथ खड़े कैदियों को लिबास और हुलिये से अलग ही पहचाना जा सकता था। सच तो यह है कि सारे गवाहों को एक जगह साथ साथ इस तरह बिठाया जाता था कि मुलजिमान को पहले अच्छी तरह देख सके। पुलिस के आदमी उनके बीच मौजूद रहते थे, वो गवाहों को मुलजिमान की पहले ही शिनाख्त करा देते थे। आपने बेशक बहुत एहतियात बरती, लेकिन इन मुलजिमान के हक में नहीं बल्कि पुलिस के हक में। मुलजिम अशफाकुल्ला खान की गिरफ्तारी के लिए तसद्दुक हुसैन के साथ आप ना सिर्फ दिल्ली गए बल्कि सेकंड क्लास के रिजर्व कंपार्टमेंट में उनके साथ लखनऊ वापस भी लौटे।
1: भैया, काम मैंने अपनी एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में किया था, कोई एतराज है आपको?
0: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बस जरा सी क्यूरियोसिटी थी। दिल्ली से लखनऊ ट्रेन सीधे आती है, लेकिन आपने अलीगढ़ जाकर वापस लौटना पसंद किया, ऐसा क्यों?
1: गलती हो गई वकील साहब, गलती हो गई। आइंदा आपसे पूछकर रूट तय करूंगा मैं। और कुछ?
0: अरे आप तो हो गए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ जनाब। मुलजिम अशफाकुल्ला खान की कमिटल प्रोसीडिंग आपके कोर्ट में चल रही है।
1: चल रही थी, मैंने वो केस सेशंस को कमिट कर दिया है। रही वाया अलीगढ़ लौटने की बात, तो अब इस छोटी सी बात पर सवाल उठाकर आप कौन सी तोहमत लगाना चाहते हैं?
0: बात इतनी छोटी भी नहीं है जनाब। दरअसल इतना घूम फिर कर वापस लौटने के पीछे एक ही मकसद था, हर स्टेशन पर मुलजिम की शक्ल उन लोगों को दिखाना जिन्हें पुलिस फर्जी गवाह बनाकर पेश करना चाहती है और जिसका पूरा दिलोजान से साथ देने के लिए तैयार रहे आप। केस चाहे अशफाकुल्ला खां का हो या बिस्मिल का या उनके साथियों का।
1: सरासर गलत इल्जाम है ये, तौहीन है मेरी।
0: तौहीन तो आपने ही की है मजिस्ट्रेट साहब, कानून की, इंसाफ की भरपूर मौके अता किए आपने पुलिस को। अपने झूठ बनावटी और फर्जी गवाहों से मुलजिमान को जैसे भी मुमकिन हो शिनाख्त कराने में कामयाब, जो कहना चाहे कह दीजिए।
2: परेड में शामिल किए गए लोगों का पहनावा कमोबेश एक सा रखा जाता था, लेकिन जिरह में ये झूठ पकड़ी गई। परेड में मुलजिमान के साथ खड़े हुए वो सजा याफ्ता कैदी और उनका वो मखसूस लिबास, और ये सारी हिकमत फर्जी तरीके से शिनाख्त कराने की नीयत से। मजिस्ट्रेट अनुद्दीन का ये झूठ बोलने और झूठ ही लिखने का रवैया जितना शर्मनाक था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक ब्रिटिश हुकूमत, पुलिस और प्रोसिक्यूशन के इस मैकेनिज्म में एक बेहद अहम औजार बनना मिस्टर अनुद्दीन का।
3: योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं अशफाक हुसैन। आइए अशफाक हुसैन साहब।
4: मेरा नाम अशफाक हुसैन है, मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ। 26 सितंबर 1925 को मैंने हाजिर अदालत मुलजिम गोविंद चरण कार को लखनऊ में अमीनुद्दौला पार्क में गिरफ्तार किया था। मुलजिम की जाया तलाशी लेने पर एक अदद फाउंटेन पेन बरामद किया था, फिर उसके कमरे की तलाशी लेने पर एक येलो लीफलेट भी बरामद किया। सबूत में पेश आर्टिकल P-123 वही फाउंटेन पेन और एग्जिबिट P-124 वही येलो लीफलेट हैं।
3: तो आपने ये गिरफ्तारी किस बिना पर की थी?
4: मुलजिम गोविंद चरण का मेलजोल अपने पड़ोसी जदुनाथ सेन नाम के एक स्टूडेंट से था, जिसे ये बागियाना किताबें वगैरह पढ़ने के लिए दिया करता था। काकोरी डकैती की वारदात के बाद जदुनाथ अचानक घबरा सा गया। उसने अपने क्लास टीचर को मुलजिम की काबिले शक सरगर्मियों के बारे में बता दिया। क्लास टीचर ने फौरन पुलिस को इत्तला दी और मुलजिम के खिलाफ वारंट जारी हुआ। उसी वारंट की तामील में मैंने इसे गिरफ्तार किया।
3: वेल, इस फाउंटेन पेन आर्टिकल 123 के बारे में कुछ बता सकते हैं?
4: जी हाँ, इस फाउंटेन पेन का मार्का अपोलो है। उसी स्टूडेंट जदुनाथ सेन ने जब्त शुदा पेन को देखने पर बताया कि ये पेन तो मुलजिम राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का है।
3: That's all, Your Honor. Your witness, please, Mr. Pant.
0: जदुनाथ सेन, कहीं ये लड़का उसी केस का मुलजिम तो नहीं?
4: जी हाँ, मगर अब वो सरकारी गवाह है।
0: ओहो, so he is a co-accused now. क्या इस पेन पर राजेंद्र लाहिड़ी का नाम लिखा हुआ है क्या? नहीं तो जदुनाथ ने जरूर कोई ऐसा निशान बताया होगा जिससे पता चले कि ये पेन राजेंद्र लाहिड़ी का है।
4: जी नहीं, ऐसा कोई निशान तो नहीं, अलबत्ता मार्क जरूर बताया था, अपोलो।
0: अपोलो, ये दो पेन देखिए, कोई एक फर्क बता सकते हैं?
4: दोनों अपोलो पेन हैं।
0: बाजार से कोई भी खरीद कर ला सकता है।
4: लेकिन जदुनाथ सेन ने तो मुझे यही बताया था कि
0: अपोलो पेन उसने राजेंद्र लाहाड़ी के पास देखा था।
4: जी हाँ,
0: अगर वो अपोलो ना होता, कोई भी होता, जदुनाथ उसे राजेंद्र लाहाड़ी का होना बताता, क्योंकि आप जो भी पेन उसे दिखाते वो उसके बारे में वही कहता जो आप कहलाना चाहते थे।
4: अब हम क्यों कुछ कहलाना चाहते?
0: क्योंकि आप किसी भी पेन के जरिए गोविंद चरण का ताल्लुक राजेंद्र लाहाड़ी जैसे नामी रेवोल्यूशनरी से जोड़ सकते थे, उनकी पार्टी से जोड़ सकते थे, किसी भी संगीन वारदात में उनका साथी करार दे सकते थे, और अपनी बात को पुख्ता करने के लिए वो खत तो था ही आपके पास जो राजेंद्र लाहाड़ी ने बिस्मिल को भेजा था, और सही पते पर पहुंचाने से पहले ही पुलिस उसे लापता कर चुकी थी। वो खत एग्जिबिट P125 है। इसमें लिखा है, प्लीज ब्रिंग माई शर्ट एंड पेन फ्रॉम चौधरी। पेन कोई भी हो सकता था। रहा चौधरी, तो गोविंद चरण कार को लोग चौधरी साहब के नाम से जानते थे। इस तरह एक तीर से दो निशाने लगा डाले। क्या कहना है आपको?
4: अब मैं क्या कहूं, आपका अंदाज कुछ भी हो सकता है।
0: लेकिन आप इस अपोलो पेन और इस अपोलो पेन में कोई फर्क नहीं बता सकते।
4: फर्क मैं नहीं, जदुनाथ बता सकता है।
0: भला क्या फर्क बता सकता है वो? यही तो पूछ रहा हूं आपसे, एक जहीन स्मार्ट तजर्बेकार पुलिस सब इंस्पेक्टर से। गौर से देख लीजिए साहब।
4: उसकी तो वही जाने ना। जहां तक मेरा सवाल है, ये दोनों पेन बिल्कुल एक से ही हैं।
0: अगर कहूं कि इन दोनों में से कोई भी पेन गोविंद चरण कार का हो सकता है उतना ही जितना राजेंद्र लाहाड़ी का, हाँ कि ना?
4: जितना हाँ उतना ही ना। अब तो पीछा छोड़ दीजिए हुजूर।
0: बेहतर है, मेरी तरफ से आप तशरीफ ले जा सकते हैं। बस इतना बताते जाइए, वो जो येलो लीफलेट बरामद होना बताया आपने, क्या ये वही लीफलेट है जो जगह जगह बांटे गए?
4: जी हाँ, इसी तरह के पैम्पलेट जगह जगह बांटे गए थे।
0: जाने कितने घरों में ऐसे पैम्पलेट होंगे जो बांटे जाने पर लोगों ने ले लिए होंगे, बिना किसी खास वजह के, बिना पढ़े पटक भी दिए होंगे घर में। अक्सर ऐसा होता है, नहीं?
4: मैं कुछ नहीं बता सकता।
2: बिस्मिल को भेजे राजेंद्र लहरी के खत को बीच में ही गायब कर उसकी इबारत को तोड़ मरोड़ कर गोविंद चरण के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जदुनाथ सेन की झूठी गवाही पर महज एक पेन की बिना पर गोविंद चरण कार को ताजिंदगी कैद खाने के अंधेरों में गर्क कर दिया गया। वो पेन जो खुले बाजार में कोई भी खरीद सकता था, वो पेन जिस पर कोई खास पहचान नहीं थी, जिसकी बिना पर कोई कह पाता कि वो फलां शख्स का है, वो एक पेन जबरदस्ती इतना पेनफुल बना दिया गया। गजब तो ये कि कोर्ट ने भी आंख मूंद कर उसे राजेंद्र लहरी का मानकर उस गरीब गोविंद चरण का ताल्लुक लहरी से जोड़ दिया। कोर्ट किसी भी बहाने गोविंद चरण या किसी और मुलजिम को सख्त तरीन सजा देने पर बुरी तरह आमादा थी, भले ही वो बहाना कितना भी लचर और खोखला क्यों ना हो, भले ही उसके मुतालिक पेश की गई गवाही बज़ाहिर कितनी भी नाकाबिले एतबार, एब्सर्ड और झूठी क्यों ना हो।
5: योर ऑनर, मैं बिचपुरी में हुई वारदात डकैती का एक अहम गवाह पेश करना चाहता हूँ।

0: वो बिहारी नाम है ऊको, ऊको भी बहुत ही लप्पड़ थप्पड़ मारे, कहने लगे तेरी आंखें निकाल लेंगे। हाँ हुजूर, जे बड़ो छुरा मेरी आंख पे धर दाओ, मेरे बेटा को पकड़ लाओ, बाकी गर्दन पे छुरा धर दाओ। एक ने आवाज दे के पूछी, कप्तान साहब रेत दूं जाकी गर्दन? ऊपर छत पे दो लोग बंदूक पकड़े थे, उन्हीं से पूछी थी।
1: क्या पूछा था?
0: बोई कहां है कप्तान साहब, रेत दूं जा छोरे की गर्दन? तू ऊपर खड़े बिन के कप्तान ने मना कर दई।
1: अच्छा, वो कप्तान कहाँ खड़े थे?
0: वो हमारे पड़ोसी का नाम है शोभा की छत पे। हाँ भाई से ठाए ठाए गोली दागत रहे, ललकारत रहे, दूर रहो बीच में मत आना वरना गोली मार देंगे।
1: टोटी, इसके बाद क्या हुआ?
0: पूरो घर छान मारे हुजूर, सारे रुपया पैसा खोच खोच के निकाल के ले गए मालिक, लूटपाट के ले गए हमें।
1: तो तुमने किसी को मदद के लिए पुकारा नहीं?
0: खूब चिल्ला पुकार करी साहब, बहुत से गांव वाले जुड़ गए रहे, मनो बंदूक तमंचा देख के आगे नहीं आओ कोई। हाँ मनो सामलाल दद्दा हिम्मत वाले आते घर से निकले, मुंह को ऐसो खड़े देख के ललकारे, कोरे टोटिया ऐसो मरो पिटो काला ने खड़ो है वहां पे। मैंने कही बंदूक तमंचा ताने खड़े हैं डकैत, तो सामलाल दद्दा ने डांट लगाई, अरे फटाके छोड़ रहे हैं फटाके, जबरन डरानो है बेमकूफ, कोई अमन तो तमंचा नहीं है उनके पास।
1: फिर क्या हुआ?
0: फिर कहा सामलाल दद्दा बड़े आ गए, खूब ललकार है, गाड़ी गरोच करी, निकलो बे बाहर, खबरदार कोई हरकत करी तो एक एक को पहचान लाओ है मैंने।
1: इसके बाद क्या हुआ?
0: इधर से कोई चिल्लानो पहचान लाओ है तो ले जोर को फटाको, और सामलाल दद्दा जमीन पे लोटन लगे, लहू लुहान हो गए बे, छटपटाहट छटपटाहट हो भाई, प्राण पखेरु उड़ गए उनके।
1: ओ, फिर इसके बाद क्या हुआ?
0: मार भगदड़ मच गई, सबरे गांव मारे तितर बितर हो गए, और बे डाकू सबरो माल भत्ता समेट के निकल गए, सरकार निकल गए।
1: अच्छा टूटी, उन डाकुओं को देखकर पहचान सकते हो?
0: खूब पहचान सकते हैं हुजूर, एक तो बेठाने हैं बे, कप्तान कप्तान कहते जिने बेलो। हाँ और जे जे जे
1: मन्मथनाथ, गोविंद चरण कार और मुकंदीलाल।
2: बस तुमने जो बताया था 15-20 लोग थे?
0: हाँ साहब, लोग तो बहुत सारे आते।
2: तो फिर पहचानो उन्हें, इन चारों लोगों के अलावा और कौन कौन था?
0: चार के अलावा तो हुजूर एक और आदमी रहा, खुबाई गोरो चिट्टो हतो तगड़ो नौजवान।
2: कौन है इनमें से?
0: इनमें से तो नहीं है हुजूर, एक और आदमी नहीं है यहाँ, बहुत ही मोटो तगड़ो तो सरकार, बड़ी बड़ी मूछो मारो।
1: योर ऑनर, ही इज रेफरिंग टू बोथ द एब्सकॉन्डर्स।
2: तुमने बताया छत पर से दो लोग गोलियां चला रहे थे।
0: हाँ साहब,
2: श्यामलाल को किसने गोली मारी?
0: वो तो हम नहीं देखे हुजूर।
2: क्यों, दो लोग थे ना छत पर?
3: यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ मिस्टर जज, अपनी ना सही इंसाफ की इस मुकद्दस कुर्सी की तो बेहुरमती ना कीजिए।
2: व्हाट हैव आई डन, क्या कर दिया ऐसा मैंने?
3: फांसी का फंदा कस रहे हो मेरी गर्दन के गिर्द, फिर भी पूछते हो क्या किया? टॉटी, बता दो इन्हें कहां था और क्या कर रहा था उस वक्त में।
0: बे तो छुरा ताने थे आंख पे, तो इते इते इते कट गो, खून बहन लगो, तो नीचे उतर के जे कप्तान जखम धो के पट्टी मान रहे थे कि बाहर से आवाज सुनानी, पहचान लाओ है पहचान लाओ है, तो ले ढाए ढाए की आवाज, और उते श्यामलाल दद्दा धड़ाम से नीचे।
3: सुन लिया आपने, पूछिए और क्या क्या पूछना है।
2: दिस इज आउटरेजस, यू नो यू जस्ट कांट मिसबिहेव विद द जज एंड द प्रोसीजर।
3: सर्टेनली, इफ द जज बिहेव्स हिमसेल्फ एंड विद द प्रोसीजर।
2: यू द कोर्ट इज एडजर्न। मिस्टर मुल्ला, क्या प्रोसिक्यूशन कोई और गवाह पेश करना चाहता है?
1: नहीं योर ऑनर, और एविडेंस इज क्लोज्ड।
2: क्या मुल्जिमान सफाई में कोई गवाही पेश करना चाहते हैं?
3: जरूर पेश करना चाहते थे हम, लेकिन
2: चाहते थे मतलब आप कहना क्या चाहते हैं?
3: हम क्यों सफाई में गवाहान पेश नहीं कर पा रहे हैं? यूं तो उन वजूहात का तफसील से बयान कर दिया गया है इस मेमोरेंडम में, लेकिन इस खुली अदालत में भी वो खुलासा करना हम जरूरी समझते हैं योर ऑनर। सफाई के गवाहान पेश करने का ये सुनहरा मौका हम जिस वजह से छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, वो वजह कोई और नहीं, आप हैं मिस्टर जज हैमिल्टन, आप। केस की सुनवाई के पहले ही दिन से आपका रवैया जाहिर हो चुका है। आपका रुझान हमेशा प्रोसिक्यूशन की तरफ रहा है, बल्कि हमारे खिलाफ केस साबित करने की धुन में कई कई मर्तबा आप प्रोसिक्यूशन से भी कई कदम आगे निकल गए हैं। इस हद तक कि मिस्टर प्रोसिक्यूटर भी आपकी हरकतों पर पानी पानी होकर रह गए। हमारे वकीलों को न सिर्फ मुकम्मल तौर पर जराय करने से रोकते रहे, बल्कि अपनी कुर्सी का बेजा फायदा उठाते हुए बेवजह कोर्ट क्वेश्चंस करना और दौरान जिरह मुल्जिमान के हक में आए जवाबों पर पानी फेर फेर देना आपका मामूल रहा है। इस गवर्नमेंट की तरह आप भी हमें हर हाल में फांसी के फंदे पर झुलाने की कसम खाए बैठे हैं। मिस्टर हैमिल्टन, आपने अपने रद्द अमल से इंसाफ की कुर्सी और इंसाफ के उसूलों को शर्मसार किया है। आपकी अदालत में उन्हें हम आपके सवालात का निशाना बनाने और इस तरह खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की गलती नहीं करना चाहते।
2: और कुछ?
3: बहुत कुछ। आपकी बेइंसाफी का पूरा चिट्ठा इस मेमो में मौजूद है, इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा।
2: Who is this man and what he is doing in this court?
4: Your Honor, मैं इंडियन डेली टेलीग्राफ का रिपोर्टर हूँ।

0: मजिस्ट्रेट अनुद्दीन की मौजूदगी में हुई निहायत गैरकानूनी और धांधलियों से भरपूर शिनाख्तों की दुहाइयां दे देकर बिस्मिल लहरी और रोशन सिंह की गर्दनों के गिर्द फांसी का फंदा कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नजीरों और दलीलों के अंबार लगा दिए गए। फिर उनकी बहस का जवाब देते हुए मिस्टर पंत ने प्रोसिक्यूशन के केस की कानूनी नुक्ते नजर से हर खामी और कमजोरी को उजागर किया। प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के बयानों में मौजूद इम्प्रोबेबिलिटीज, कॉन्ट्रडिक्शंस और हर नाकाबिले एतबार इम्प्रूवमेंट की तफसील से चीरफाड़ करते हुए प्रोसिक्यूशन को जुर्म साबित करने में नाकामयाब करार दिया। मुलजिमान को पूरी तरह बेकसूर साबित करते हुए उन्हें बाइज्जत बरी किए जाने की मांग की। साथ ही अदालत के सामने हलफ लेकर भी झूठा बयान देने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त तरीन स्ट्रिक्चर्स पास किए जाने की मांग की। पंडित गोविंद वल्लभ पंत सरी के दिग्गज कानूनदा की इस शानदार बहस के बाद रही सही कसर राम प्रसाद बिस्मिल ने पूरी कर डाली। अपनी इस मुख्तसर लेकिन जज्बात से लबरेज और पुर असर तकरीर से
1: योर ऑनर, बहस का दौर पूरा हो चुका है। प्रोसिक्यूटर जनाब जगत नारायण मुल्ला साहब ने पूरी काबिलियत से अपना केस पेश किया। हमारे काबिल वकील पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने अपनी शानदार बहस में इस मुकदमे के सारे वाकियाती और कानूनी पहलुओं पर रोशनी डालते हुए हमें हर तरह से बेगुनाह साबित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी और अब मुकदमे का फैसला बाकी है। फैसला जो महज एक रस्म अदायगी है, एक फॉर्मेलिटी है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। हम अच्छी

0: इस तौर पर शासक हो या जिसे शासक तस्लीम कर लिया गया हो, लेकिन ना तो शाहे बरतानिया इस देश के जायज तौर पर शासक थे और ना हैं। हमने, इस पूरे देश ने कभी उन्हें अपना शासक, अपना हुक्मरान नहीं माना। हिंदुस्तान का, हम अहले हिंद का असल बादशाह तो वो अजीम शख्स था, बहादुर शाह जफर, जिसकी धरती पर सौदागरों के भेष में कभी धोखे से घुसाए थे ये अंग्रेज। वो जिसने उन्हें हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर खदेड़ देने के लिए अपने बूढ़े हाथों में शमशीर थामी थी, और आखिरी दम तक जिसके लबताज दारे बरतानिया को यही चुनौती देते रहे, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वो चुनौती आज भी हिंदुस्तान ने वापस नहीं ली है। हम गाजियों का ईमान अब भी कायम है, हमारी तेगें आज भी तख्ते लंदन से टकरा रही हैं। न हम राजद्रोही हैं न बागी, हम तो अपना अधिकार हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने वाले क्रांतिकारी हैं। और आप लाख ना चाहें, फिर भी इतिहास में हम क्रांति के जंगजू सिपाही की हैसियत से ही याद किए जाएंगे। हम पर इल्जाम है कि देश में बदअमनी फैलाने, कत्लोगारत करने और तोड़फोड़ मचाने के लिए हमने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ी। इस इल्जाम से हमें इनकार नहीं, हम मानते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हथियारबंद जंग में हिस्सा लिया, लेकिन ये जंग हमने नहीं छेड़ी, सिर्फ इसे जारी रखा है। ये वो जंग है जिसे छेड़ा था मैसूर की पहाड़ियों में टीपू सुल्तान ने, जिसे छेड़ा था प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला ने। ये वो जंग है जो दिल्ली के शाही लाल किले से रंगून के कब्रिस्तान तक लड़ी जाती रही। मकॉल शेक्सपियर, हु इज हियर सो वाइल दैट विल नॉट लव हिज कंट्री। योर ऑनर, इस्तगासे के मुताबिक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियारबंद जंग छेड़ने और असला जुटाने की गरज से जगह जगह डाके डालने की हमने एक संगीन साजिश की। इस साजिश की शुरुआत उनके मुताबिक येलो लीफलेट छापने बांटने से लेकर मेरठ में की गई किसी सीक्रेट मीटिंग तक हुई, और ये कि उसी साजिश के तहत बमरौली, बिचपुरी, द्वारकापुर और काकोरी टैंड डकैती की वारदातें अंजाम दी गईं। योर ऑनर, येलो लीफलेट पर एक तारीख दर्ज है जब वो शाया किया गया, और वो तारीख है जनवरी सन 1925। मेरठ की सीक्रेट मीटिंग की तारीख बताई गई है 13 सितंबर सन 1925। बमरौली की डकैती इन्हीं साजिशों का नतीजा बताई गई है, और ये वारदातें डकैती हुई 25 दिसंबर 1924 को, यानी येलो लीफलेट के शाया होने से करीब एक महीना पहले और मेरठ मीटिंग से करीब 9 महीना पहले। बाकी तीनों डकैतियां भी मार्च 1925 से अगस्त 1925 के बीच अंजाम दी गईं। यानी हर हाल में मेरठ की सीक्रेट मीटिंग से कोई एक महीना पहले, कोई 4 महीना पहले, तो कोई 6 महीना पहले। यानी डाके डालने वालों ने डाके तो पहले डाल दिए, फिर महीनों बाद चोरी छिपे मिलकर ये साजिश रची कि उनमें से कौन सा डाका कब कहां और किस तरह डाला जाए। कमाल है जज साहब, कमाल है। और साजिश की ये वो थ्योरी है जिस पर इस पूरे केस का दारोमदार है, पर आप खुद ही देख लीजिए किस कदर लचर, धोती और अहमकाना खामखयाली है ये। ऐसी वाहियात और खोखली नींव पर इस मुकदमे का 18 महीने तक टिके रह जाना भी किसी मिरेकल से कम नहीं है। बहरहाल, तसद्दुक हुसैन और मिस्टर हार्टन ने ढेरों गवाह जुटा लिए, लेकिन उन नकली गवाहों से हमारी शिनाख्त किसी शिनाख्त परेड में करा लेना कोई आसान काम नहीं था। अब इस मौके पर सैयद एनुद्दीन मजिस्ट्रेट ने अपनी खिदमात पेश की। शिनाख्त परेड में वो नाजायज और अनफेयर हथकंडे अपनाए सैयद साहब ने, और वो भी इस बेशर्मी के साथ कि बताते हुए घिन आती है। अब भी जैसे कुछ और सितम बाकी था, जज साहब की अजीम और बेनियाज कुर्सी पर आप जलवा फरोज हुए। योर ऑनर, बेनियाजी, इम्पार्शलिटी, निष्पक्षता एक जज की पहचान मानी जाती है। सुना था इंसाफ की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, लेकिन अफसोस, आपने वो पट्टी अपनी आंखों पर नहीं बल्कि न्याय की भावना पर, अपनी अंतर आत्मा पर बांध रखी थी। इस्तगासे की मनगढ़ंत गवाहियों को आपने हर मुमकिन शह दी। उन झूठे और फर्जी गवाहों से जब जब हमारी जिरह ने सच उगलवाया, आपने गैर जरूरी तौर पर मदाखलत की। जिरह में आए हर उस जवाब को जो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता था, आपने अपने सजेशंस के जरिए तार तार कर डाला। आपके बारे में अपने जज्बात बयां करने के लिए मैं ओल्ड टेस्टामेंट की ये इबारत ही काफी समझता हूं, Thou art weighed in the balance and art found wanting। बहरहाल, जो आप कर सकते थे कर गुजरे, जो हम कर सकते हैं कर गुजरेंगे। अपनी बात खत्म करने से पहले आयरलैंड के बहादुर सपूत डी वेलोरा का वो पैगाम दोहराना चाहता हूं जो देश की आजादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लोहा लेते नौजवानों के नाम था। बॉयज, यू हैव वन लाइफ टू लिव एंड वन डेथ टू डाई। सी दैट, डू बोथ लाइक अ मैन। योर ऑनर, हम सरफरोशों का भी यही अकीदा है, यही धर्म है, यही ईमान है। हम शहीदाने वतन का दीनो ईमा और है, सजदे करते हैं हमेशा पांव पर जल्लाद के।
1: और फैसले की घड़ी आ पहुंची। 6 अप्रैल 1927 को स्पेशल सेशंस जज मिस्टर हैमिल्टन ने भरी अदालत में अपना फैसला सुनाया। इस्तगासा मुलजिमान हाजिर अदालत के खिलाफ जुर्म साबित करने में कामयाब रहा है। गवाहों के बयान और सबूतों के मद्देनजर अदालत मुलजिमान को जेरे दफा 120B और 120A और ताजीरात हिंद गुनहगार ठहराते हुए मुलजिम शचिंद्र नाथ सान्याल को काला पानी, मनमत नाथ को 14 बरस कैद बामशक्कत, मुलजिमान योगेश चैटर्जी, मुकंदी लाल, गोविंद चरणकार, राजकुमार सिन्हा और रामकृष्ण खत्री को 10-10 बरस कैद बामशक्कत, विष्णु शरण डबलिस और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य को 7-7 बरस, मुलजिमान प्रेम कृष्ण खन्ना, रामदुलारे त्रिवेदी और भूपेंद्र नाथ सान्याल को कैद बामशक्कत 5-5 बरस और मुलजिम प्रणवेश चटर्जी को 2 बरस कैद बामशक्कत की सजा सुनाती है। इकबाली गवाह मुलजिम बनवारी लाल को हथियार बंद डकैती में हिस्सा लेने के जुर्म में 5 बरस कैद बामशक्कत की सजा सुनाती है। मुलजिम राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लहरी और ठाकुर रोशन सिंह को सजाए मौत।
2: अभी आप आजादी के मुकदमे श्रृंखला में काकोरी कांड पर केंद्रित कार्यक्रम की 7वीं कड़ी सुन रहे थे। प्रस्तुति सुधा अनुपम। ये कार्यक्रम रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किया गया।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए आपको सुनवाते हैं सुनो कहानी में ज्वालामुखी कहानी।
2: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा, और आज हम अपने कार्यक्रम सुनो कहानी में आपको सुना रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ज्वालामुखी।

डिग्री लेने के बाद मैं नित्य लाइब्रेरी जाया करता था, पत्रों या किताबों का अवलोकन करने के लिए नहीं। किताबों को तो मैंने ना छूने की कसम खा ली थी। जिस दिन गजट में अपना नाम देखा, उसी दिन मिल और कैंट को उठाकर ताक पर रख दिया। मैं केवल अंग्रेजी पत्रों के वांटेड कॉलमों को देखा करता। जीवन यात्रा की फिक्र सवार थी। मेरे दादा या परदादा ने किसी अंग्रेज को गदर के दिन बचाया होता, अथवा किसी इलाके का जमींदार होता, तो कहीं नॉमिनेशन के लिए उद्योग करता। पर मेरे पास कोई सिफारिश न थी। शोक कुत्ते, बिल्लियों और मोटरों की मांग सबको थी, पर बीए पास का कोई पुरसा हाल न था। महीनों इसी तरह दौड़ते गुजर गए, पर अपनी रुचि के अनुसार कोई जगह नजर न आई। मुझे अक्सर अपने बीए होने पर क्रोध आता था। ड्राइवर, फायरमैन, मिस्त्री, खानसामा या बावर्ची होता तो मुझे इतने दिनों तक बेकार न बैठना पड़ता। एक दिन मैं चारपाई पर लेटा हुआ एक पत्र पढ़ रहा था कि मुझे एक मांग अपनी इच्छा के अनुसार दिखाई दी। किसी रईस को एक ऐसे प्राइवेट सेक्रेटरी की जरूरत थी जो विद्वान, रसिक, सहृदय और रूपवान हो। वेतन 1000 मासिक। मैं उछल पड़ा। कहीं मेरा भाग्य उदय हो जाता और ये पद मुझे मिल जाता तो जिंदगी चैन से कट जाती। उसी दिन मैंने अपना विनय पत्र अपने फोटो के साथ रवाना कर दिया, पर अपने आत्मीय गणों में से किसी से इसका जिक्र न किया कि कहीं लोग मेरी हंसी न उड़ाएं। मेरे लिए 30 रुपए मासिक भी बहुत थे, 1000 कौन देगा। पर दिल से यह ख्याल दूर न होता। बैठे बैठे शेख चिल्ली के मंसूबे बांधा करता, फिर होश में आकर अपने आप को समझाता कि मुझमें ऐसे ऊंचे पद के लिए कौन सी योग्यता है। मैं अभी कॉलेज से निकला हुआ पुस्तकों का पुतला हूं, दुनिया से बेखबर। इस पद के लिए एक से एक विद्वान, अनुभवी पुरुष मुंह फुलाए बैठे होंगे। मेरे लिए कोई आशा नहीं। मैं रूपवान सही, सजीला सही, मगर पदों के लिए रूपवान होना काफी नहीं होता। विज्ञापन में इसकी चर्चा करने से केवल इतना अभिप्राय होगा कि कुरूप आदमी की जरूरत नहीं, और ये उचित भी है, बल्कि बहुत सजीलापन तो ऊंचे पदों के लिए कुछ शोभा नहीं देता। मध्यम श्रेणी का तोंद, भरा हुआ शरीर, फूले हुए गाल और गौरवयुक्त वाक्य शैली, ये उच्च पदाधिकारियों के लक्षण हैं, और मुझे इनमें से एक भी मयस्सर नहीं है। इसी आशा और भय में एक सप्ताह गुजर गया और मैं निराश हो गया। मैं भी कैसा ऊंचा हूं कि एक बेसिर पैर की बात के पीछे ऐसा फूल उठा। इसी को बड़कपन कहते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, किसी दिल्लगीबाज ने आज के शिक्षित समाज की मूर्खता की परीक्षा करने के लिए ये स्वांग रचा है। मुझे इतना भी न सूझा, मगर 8वें दिन प्रातः काल तार के चपरासी ने मुझे आवाज दी। मेरे हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। लपका हुआ आया, तार खोलकर देखा, लिखा था, स्वीकार है, शीघ्र आओ ऐशगढ़। मगर यह सुख संवाद पाकर मुझे वो आनंद न हुआ जिसकी आशा थी। मैं कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा। किसी तरह विश्वास न आता था। जरूर किसी दिल लगीबाज की शरारत है, मगर कोई मुजायका नहीं। मुझे भी इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तार दे दूं कि 1 महीने की तनख्वाह भेज दो, आप ही सारी कलई खुल जाएगी। मगर फिर विचार किया, कहीं वास्तव में नसीब जागा हो तो दंडता से बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। चलो दिल लगी ही सही, जीवन में यह घटना भी स्मरणीय रहेगी। इस तिलिस्म को खोल ही डालूं। ये निश्चय करके तार द्वारा आने की सूचना दे दी और सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। पूछने पर मालूम हुआ कि वो स्थान दक्षिण की ओर है। टाइम टेबल में उसका वृत्तांत विस्तार के साथ लिखा हुआ था। स्थान अति रमणीय है, पर जलवायु स्वास्थ्यकर नहीं। हाँ, हष्ट पुष्ट नवयुवकों पर उसका असर शीघ्र नहीं होता। दृश्य बहुत मनोहर है, पर जहरीले जानवर बहुत मिलते हैं। यथा साध्य अंधेरी घाटियों में न जाना चाहिए। ये वृत्तांत पढ़कर उत्सुकता और भी बढ़ी। जहरीले जानवर हैं तो हुआ करें, कहां नहीं है। मैं अंधेरी घाटियों के पास भूलकर भी न जाऊंगा। आकर सफर का सामान ठीक किया और ईश्वर का नाम लेकर नियत समय पर स्टेशन की तरफ चला। पर अपने अलापी मित्रों से इसका कुछ जिक्र न किया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि 2-4 दिन में फिर अपना सा मुंह लेकर लौटना पड़ेगा। गाड़ी पर बैठा तो शाम हो गई थी। कुछ देर तो सिगार और पत्रों में दिल बहलाता रहा, फिर मालूम नहीं कब नींद आ गई। आंखें खुली और खिड़की से बाहर की तरफ झांका तो उषाकाल का मनोहर दृश्य दिखाई दिया। दोनों ओर हरे वृक्षों से ढकी हुई पर्वत श्रेणियां, उन पर चरती हुई उजली उजली गाय और भेड़े, सूर्य की सुनहरी किरणों में रंगी हुई बहुत सुंदर मालूम होती थी। जी चाहता था कि कहीं मेरी कुटिया भी इन्हीं सुखद पहाड़ियों में होती, जंगल के फल खाता, झरनों का ताजा पानी पीता और आनंद के गीत गाता। यकायक दृश्य बदला,
एक विस्तृत झील दिखाई दी जिसमें कमल खिले हुए थे। कहीं उजले उजले पक्षी तैरते थे और कहीं छोटी छोटी डोंगियां निर्बल आत्माओं के सदृश डगमगाती चली जाती थी। ये दृश्य भी बदला। पहाड़ियों के दामन में एक गांव नजर आया। झाड़ियों और वृक्षों से ढका हुआ, मानो शांति और संतोष ने यहां अपना निवास स्थान बनाया हो। कहीं बच्चे खेलते थे, कहीं गायों के बछड़े किलोल करते थे। फिर एक घना जंगल मिला। झुंड के झुंड हिरन दिखाई दिए जो गाड़ी की हाहाकार सुनते ही चौकड़ियां भरते दूर भाग जाते थे। ये सब दृश्य स्वप्न के चित्रों के समान आंखों के सामने आते थे और एक क्षण में गायब हो जाते थे। उनमें एक अवर्णनीय शांतिदायिनी शोभा थी जिससे दृश्य में आकांक्षाओं के आवेग उठने लगते थे। आखिर ऐशगढ़ निकट आया। मैंने बिस्तर संभाला, जरा देर में सिग्नल दिखाई दिया। मेरी छाती धड़कने लगी, गाड़ी रुकी। मैंने उतरकर इधर उधर देखा, कुलियों को पुकारने लगा। कि इतने में दो वर्दी पहने हुए आदमियों ने आकर मुझे सादर सलाम किया और पूछा, आप वहां से आ रहे हैं ना, चलिए मोटर तैयार है। मेरी बांछें खिल गईं। अब तक कभी मोटर पर बैठने का सौभाग्य ना हुआ था। शान के साथ जा बैठा। मन में बहुत लज्जित था कि ऐसे फटे हाल में क्यों आया। अगर जानता कि सचमुच सौभाग्य सूर्य चमका है तो ठाट बाट से आता। खैर, मोटर चली। दोनों तरफ मौलसरी के सघन वृक्ष थे। सड़क पर लाल बजरी बिछी हुई थी। सड़क हरे भरे मैदान में किसी सुरम्य जलधारा के सदृश बल खाती चली गई थी। 10 मिनट भी न गुजरे होंगे कि सामने एक शांतिमय सागर दिखाई दिया। सागर के उस पार पर एक विशाल भवन बना हुआ था। भवन अभिमान से सिर उठाए हुए था। सागर संतोष से नीचे लेटा हुआ, सारा दृश्य काव्य श्रृंगार और आमोद से भरा हुआ था। हम सदर दरवाजे पर पहुंचे। कई आदमियों ने दौड़कर मेरा स्वागत किया। इनमें से एक शौकीन मुंशी जी थे जो बाल संवारे आंखों में सुरमा लगाए हुए थे। मेरे लिए जो कमरा सजाया गया था उसके द्वार पर मुझे पहुंचाकर बोले, सरकार ने फरमाया है इस समय आप आराम करें, संध्या समय मुलाकात कीजिएगा। मुझे अब तक इसकी कुछ खबर न थी कि यह सरकार कौन है। न मुझे किसी से पूछने का साहस हुआ क्योंकि अपने स्वामी के नाम से अनभिज्ञ होने का परिचय नहीं देना चाहता था। मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा स्वामी बड़ा सज्जन मनुष्य था। मुझे इतने आदर सत्कार की कदापि आशा न थी। अपने सुसज्जित कमरे में जाकर जब मैं एक आराम कुर्सी पर बैठा तो हर्ष से विह्वल हो गया। पहाड़ियों की तरफ से शीतल वायु के मंद मंद झोंके आ रहे थे। सामने छज्जा था, नीचे झील थी, और मैं, जिसे भाग्य देवी ने सदैव अपना सौतेला लड़का समझा था, इस समय जीवन में पहली बार निर्विघ्न आनंद का सुख उठा रहा था। तीसरे पहर उन्हीं शौकीन मुंशी जी ने आकर इत्तला दी कि सरकार ने याद किया है। मैंने इस बीच में बाल बना लिए थे, तुरंत अपना सर्वोत्तम सूट पहना और मुंशी जी के साथ सरकार की सेवा में चला। उस समय मेरे मन में ये शंका उठ रही थी कि कहीं मेरी बातचीत से स्वामी असंतुष्ट ना हो जाए और उन्होंने मेरे विषय में जो विचार स्थिर किए हों उनमें कोई अंतर ना पड़ जाए। तथापि मैं अपनी योग्यता का परिचय देने के लिए खूब तैयार था। हम कई बरामदों से होते हुए अंत में सरकार के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। मुंशी जी ने पर्दा उठाकर मुझे इशारे से बुलाया। मैंने कांपते हुए हृदय से कमरे में कदम रखा और आश्चर्य से चकित हो गया। मेरे सामने सौंदर्य की ज्वाला दीप्तिमान थी। फूल भी सुंदर है और दीपक भी सुंदर है। फूल में ठंडक है और सुगंध है, दीपक में प्रकाश और उद्दीपन। फूल पर भ्रमर उड़ उड़कर उसका रस लेता है, दीपक पर पतंगा जलकर राख हो जाता है। मेरे सामने कारचोबी मसनत पर जो सुंदरी विराजमान थी वो सौंदर्य की प्रकाशमय ज्वाला थी। फूल की पंखुड़ियां हो सकती हैं, ज्वाला को विभक्त करना संभव है। उसके एक एक अंग की प्रशंसा करना ज्वाला को काटना है। वो नख शिख तक एक ज्वाला थी। वही दीपन, वही चमक, वही लालिमा, वही प्रभा। कोई चित्रकार प्रतिभा सौंदर्य का इससे अच्छा चित्र नहीं खींच सकता था। रमणी ने मेरी तरफ वात्सल्य दृष्टि से देखकर कहा, आपको सफर में कोई विशेष कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने संभल कर उत्तर दिया, जी नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ। ये स्थान पसंद आया? मैंने साहसपूर्ण उत्साह के साथ जवाब दिया, ऐसा सुंदर स्थान पृथ्वी पर ना होगा।
हाँ, गाइडबुक देखने से विदित हुआ कि यहाँ की जलवायु जैसी सुखद प्रतीत होती है, यथार्थ में वैसी नहीं। विषैले पशुओं की भी शिकायत थी। ये सुनते ही रमणी का मुख सूर्य कांतिहीन हो गया। मैंने तो ये चर्चा इसलिए कर दी थी कि जिससे प्रकट हो जाए कि यहां मुझे आने में कुछ त्याग करना पड़ा है, पर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि चर्चा से उसे कोई विशेष दुख हुआ। पर क्षण भर में सूर्य मेघमंडल से बाहर आया और बोली, ये स्थान अपनी रमणीयता के कारण बहुधा लोगों की आंखों में खटकता है। गुण का निरादर करने वाले सभी होते हैं, और यदि जलवायु कुछ हानिकर हो भी तो आप जैसे मनुष्य को इसकी क्या चिंता हो सकती है। रहे विषैले जीव जंतु तो वह आपके नेत्रों के सामने विचर रही हैं। अगर मोर हिरण हंस विषैले जीव हैं तो निसंदेह है यहां विषैले जीव बहुत हैं। मुझे संशय हुआ कि कहीं मेरे कथन से उसका चित्त खिन्न हो गया। गर्व से बोला, गाइड बुकों पर विश्वास करना सर्वथा भूल है। इस वाक्य से सुंदरी का हृदय खिल गया और वो बोली, आप स्पष्टवादी मालूम होते हैं और ये मनुष्य का एक उच्च गुण है। मैं आपका चित्र देखते ही समझ गई थी। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि इस पद के लिए मेरे पास 100,000 से अधिक प्रार्थना पत्र आए। कितने एमए थे और कोई डीएससी था या कोई जर्मनी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए हुए था। मानो मुझे यहाँ किसी दार्शनिक विषय की जांच करानी थी। मुझे अब की ये अनुभव हुआ कि देश में उच्च शिक्षित मनुष्यों की इतनी भरमार है। कई महाशयों ने स्वरचित ग्रंथों की नामावली लिखी थी, मानो देश में लेखकों और पंडितों की ही आवश्यकता है। काल गति का लेशमात्र भी परिचय नहीं है। प्राचीन कर्म कथाएं अब केवल अंधभक्तों के रसास्वादन के लिए ही हैं और उनसे कोई लाभ नहीं है। ये भौतिक उन्नति का समय है। आजकल लोग भौतिक सुख पर अपने प्राण अर्पण कर देते हैं। कितने ही लोगों ने अपने चित्र भी भेजे थे। कैसी कैसी विचित्र मूर्तियां थीं जिन्हें देखकर घंटों हंसिए। मैंने उन सभी को एक एल्बम में लगा दिया है और अवकाश मिलने पर जब हंसने की इच्छा होती है तो उन्हें देखा करती हूँ। मैं उस विद्या को रोग समझती हूँ जो मनुष्य को वनमानुष बना दे। आपका चित्र देखते ही आंखें मुग्ध हो गईं। तत्क्षण आपको बुलाने को तार दे दिया। मालूम नहीं क्यों अपने गुण स्वभाव की प्रशंसा की अपेक्षा हम अपने बाह्य गुणों की प्रशंसा से अधिक संतुष्ट होते हैं। और एक सुंदरी के मुखकंठ से वो चलते हुए जादू के समान है। मैं कह उठा, यथा साध्य आपको मुझसे असंतुष्ट होने का अवसर ना मिलेगा। सुंदरी ने मेरी ओर प्रशंसापूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, इसका मुझे पहले ही विश्वास है। आइए अब कुछ काम की बातें हो जाएं। इस घर को आप अपना ही समझिए और संकोच छोड़कर आनंद से रहिए। मेरे भक्तों की संख्या बहुत है। वो संसार के प्रत्येक भाग में उपस्थित हैं और बहुधा मुझसे अनेक प्रकार की जिज्ञासा किया करती हैं। उन सबको मैं आपके सुपुर्द करती हूँ। आपको उनमें भिन्न भिन्न स्वभाव के मनुष्य मिलेंगे। कोई मुझसे सहायता मांगता है, कोई मेरी निंदा करता है, कोई सराहता है, कोई गालियां देता है। इन सब प्राणियों को संतुष्ट रखना आपका काम है। देखिए, ये आज के पत्रों का ढेर है। एक महाशय कहते हैं, बहुत दिन हुए आपकी प्रेरणा से मैं अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का अधिकारी बन बैठा था। अब उनका पुत्र वयस्क प्राप्त हो चुका है और मुझसे अपने पिता की जायदाद लौटाना चाहता है। इतने दिनों तक उस संपत्ति का उपयोग करने के पश्चात अब उसका हाथ से निकलना खर रहा है। आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? इनको उत्तर दीजिए कि इस कूटनीति से काम लो। अपने भतीजे को कपट प्रेम से मिला लो और जब वो निशंक हो जाए उससे एक सादे स्टाम्प पर हस्ताक्षर करा लो। इसके पीछे पटवारी और अन्य कर्मचारियों की मदद से इसी स्टाम्प पर जायदाद का बेनामा लिखा लो। यदि 1 लगाकर 2 मिलते हों तो आगा पीछा मत करो। ये उत्तर सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। नीति ज्ञान को धक्का सा लगा। सोचने लगा, ये रमणी कौन है और क्यों ऐसे अनर्थ का परामर्श देती है? ऐसे खुल्लम खुल्ला तो कोई वकील भी किसी को राय न देगा। उसकी ओर संदेहात्मक भाव से देखकर बोला, ये तो सर्वथा न्याय विरुद्ध प्रतीत होता है। कामिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, न्याय की भली कही आपने। ये केवल धर्मांध मनुष्यों के मन का समझौता है। संसार में इसका अस्तित्व नहीं। आप ऋण लेकर मर जाएं, लड़का कौड़ी कौड़ी भरे, विद्वान लोग इसे न्याय कहते हैं, मैं घोर अत्याचार समझती हूं। इस न्याय के पर्दे में गांठ के पूरे महाजन की हेकड़ी साफ झलक रही है। एक डाकू किसी भद्र पुरुष के घर में डाका मारता है,
लोग उसे पकड़कर कैद कर देते हैं। धर्मात्मा लोग इसे भी न्याय कहते हैं, किंतु यहां भी वही धन और अधिकार की प्रचंडता है। भद्र पुरुष ने कितने ही घरों को लूटा, कितनों का गला दबाया और इस प्रकार संचय किया कि किसी को भी आंख दिखाने का साहस ना हुआ। डाकू ने जब उनका गला दबाया तो वो अपने धन और प्रभुत्व के बल से उस पर वज्र प्रहार कर बैठे। मैं इसे न्याय नहीं कहती। संसार में धन छल कपट धूर्तता का राज्य है, यही जीवन संग्राम है। यहां प्रत्येक साधन जिससे हमारा काम निकले, जिससे हम अपने शत्रुओं पर विजय पा सकें, न्याय अनुकूल और उचित है। धर्म युद्ध के दिन अब नहीं रहे। ये देखिए, ये एक दूसरे सज्जन का पत्र है। वो कहते हैं, मैंने प्रथम श्रेणी में एमए पास किया, प्रथम श्रेणी में कानून की परीक्षा पास की, पर अब कोई बात भी नहीं पूछता। अब तक ये आशा थी कि योग्यता और परिश्रम का अवश्य ही कुछ फल मिलेगा, पर 3 साल के अनुभव से ज्ञात हुआ कि ये केवल धार्मिक नियम है। 3 साल में घर की पूंजी भी खा चुका, अब विवश होकर आपकी शरण लेता हूं। मुझ हतभाग्य मनुष्य पर दया कीजिए और मेरा बेड़ा पार लगाइए। इनको उत्तर दीजिए कि जाली दस्तावेज बनवाइए और झूठे दावे चलवाकर उनकी डिग्री करा लीजिए। थोड़े ही दिनों में आपका क्लेश निवारण हो जाएगा। ये देखिए, एक और सज्जन कहते हैं, लड़की सयानी हो गई है, जहां जाता हूं लोग दहेज की गठरी मांगते हैं। यहां पेट की रोटियों का भी ठिकाना नहीं, किसी तरह भलमनसी निभा रहा हूं। चारों ओर निंदा हो रही है, जो आज्ञा हो उसका पालन करूं। इन्हें लिखिए, कन्या का विवाह किसी बुढ़े खुर्राट सेठ से कर दीजिए, वो दहेज लेने की जगह कुछ उल्टे और दे जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कैसे जिज्ञासुओं को किस ढंग से उत्तर देने की आवश्यकता है। उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत टीका टिप्पणी व्यर्थ होती है। अभी कुछ दिनों तक आपको ये काम कठिन जान पड़ेगा, पर आप चतुर मनुष्य हैं, शीघ्र ही आपको इस काम का अभ्यास हो जाएगा। तब आपको मालूम होगा कि इससे सहज और कोई काम नहीं है। आपके द्वारा सैकड़ों दारुण दुख भोगने वालों का कल्याण होगा और आजन्म वो आपका यश गाएंगे। मुझे यहां रहते 1 महीने से अधिक हो गया, पर अब तक मुझ पर यह रहस्य न खुला कि यह सुंदरी कौन है, मैं किसका सेवक हूं। इसके पास इतना अतुल धन, ऐसी ऐसी विलास की सामग्रियां कहां से आती हैं। जिधर देखता था ऐश्वर्य का ही आडंबर दिखाई देता था। मेरे आश्चर्य की सीमा न थी, मानो किसी तिलिस्म में आ फंसा हूं। इन जिज्ञासुओं का इस रमणी से क्या संबंध है, ये भेद भी न खुलता था। मुझे नित्य उससे साक्षात होता था, उसके सम्मुख जाते ही मैं चेत सा हो जाता था। उसके चितवनों में एक प्रबल आकर्षण था जो मेरे प्राणों को खींच लिया करता था। मैं वाक्य शून्य हो जाता, केवल छुपी हुई आंखों से उसे देखा करता था, पर मुझे उसकी मृदुल मुस्कान और रसमयी आलोचनाओं तथा मधुर काव्यमय भावों में प्रेमानंद की जगह एक प्रबल मानसिक शांति का अनुभव होता था। उसकी चितवने केवल हृदय को वाणी के समान छेदती थी, उसके कटाक्ष चित्त को व्यस्त रखते थे। शिकारी अपने शिकार को खिलाने में जो आनंद पाता है, वही उस परम सुंदरी को मेरी प्रेमातुरता में प्राप्त होता था। वो एक सौंदर्य ज्वाला जलाने के सिवाय और क्या कर सकता है। तिस पर भी मैं पतंग की भांति उस ज्वाला पर अपने को समर्पण करना चाहता था। यही आकांक्षा होती थी कि उन पद कमलों पर सिर रखकर प्राण दे दूं। ये केवल एक उपासक की भक्ति थी, काम और वासना से शून्य। कभी कभी जब वो संध्या समय अपनी मोटर बोट पर बैठकर सागर की सैर करती, तो ऐसा जान पड़ता था मानो चंद्रमा आकाश में तैर रहा है। मुझे इस दृश्य में अनुपम सुख प्राप्त होता था। मुझे अब अपने नियत कार्यों का खूब अभ्यास हो गया था। मेरे पास प्रतिदिन पत्रों का एक पोथा पहुंच जाता था, मालूम नहीं कि डाक से आता था। लिफाफों पर कोई मोहर न होती थी। मुझे इन जिज्ञासुओं में बहुधा वो लोग मिलते थे जिनका मेरी दृष्टि में बड़ा आदर था। कितने ही ऐसे महात्मा थे जिनमें मुझे श्रद्धा थी। बड़े बड़े विद्वान, लेखक और अध्यापक, बड़े बड़े ऐश्वर्यवान रईस, यहां तक कि कितने ही धर्म के आचार्य नित्य अपनी राम कहानी सुनाते थे। उनकी दशा अत्यंत करुणाजनक थी। वो सब मुझे रंगे हुए सियार दिखाई देते थे। जिन लेखकों को अपनी भाषा का स्तंभ समझता था, उनसे घृणा होने लगी। वो केवल उचक्के थे जिनकी सारी कीर्ति चोरी, अनुवाद और कतर ब्योत पर निर्भर थी। जिन धर्मों के आचार्यों को मैं पूजता था, वो स्वार्थ तृष्णा और घोर नीचता के दलदल में फंसे हुए दिखाई देते थे।
मुझे धीरे धीरे ये अनुभव हो रहा था कि संसार की उत्पत्ति से अब तक लाखों शताब्दियां बीत जाने पर भी मनुष्य वैसा ही क्रूर, वैसा ही वासनाओं का गुलाम बना हुआ है। बल्कि उस समय के लोग सरल प्रकृति के कारण इतने कुटिल, दुराग्रहों में इतने चालाक न होते थे। एक दिन संध्या समय उस रमणी ने मुझे बुलाया। मैं अपने घमंड में समझता था कि मेरे बांकेपन का कुछ न कुछ असर उस पर भी होता है। अपना सर्वोत्तम सूट पहना, बाल संवारे और विरक्त भाव से जाकर बैठ गया। यदि वो मुझे अपना शिकार बनाकर खेलती थी तो मैं भी शिकार बनकर उसे खिलाना चाहता था। जो ही मैं पहुंचा, उस लावण्यमय ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, पर मुखचंद्र कुछ मलिन था। मैंने अधीर होकर पूछा, सरकार का जी तो अच्छा है? उसने निराश भाव से उत्तर दिया, जी हां, एक कठिन रोग में फंस गई हूं। अब तक किसी भांति अपने को संभाल सकी हूं, पर अब रोग असाध्य होता जाता है। उसकी औषधि एक निर्दयी मनुष्य के पास है। वो मुझे प्रतिदिन तड़पते देखता है, पर उसका पाषाण हृदय जरा भी नहीं पसीजता। मैं इशारा समझ गया। सारे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई, सांस बड़े वेग से चलने लगी। मैं एक उन्मत्तता का अनुभव करने लगा। निर्भय होकर बोला, संभव है जिसे आपने निर्दय समझ रखा हो वो भी आपको ऐसा समझता हो और भय से मुख खोलने का साहस न कर सकता हो। सुंदरी ने कहा, तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे दोनों ओर की आग बुझे। प्रियतम, अब मैं अपनी हृदय की दहकती हुई विरह अग्नि को नहीं छिपा सकती। मेरा सर्वस्व आपकी भेंट है। मेरे पास वो खजाने हैं जो कभी खाली ना होंगे। मेरे पास वो साधन है जो आपकी कीर्ति को शिखर पर पहुंचा देंगे। समस्त संसार को आपके पैरों पर झुका सकती हूं। बड़े बड़े सम्राट भी मेरी आज्ञा को नहीं टाल सकते। मेरे पास वो मंत्र है जिससे मैं मनुष्य के मनोवेगों को क्षण मात्र में पलट सकती हूं। आइए मेरे हृदय से लिपटकर इस दाह क्रांति को शांत कीजिए। रमणी के चेहरे पर जलती हुई आग की सी कांति थी। वो दोनों हाथ फैलाए कामोन्मत्त होकर मेरी ओर बढ़ी। उसकी आंखों से आग की चिंगारियां निकल रही थी। परंतु जिस प्रकार अग्नि से पारा दूर भागता है, उसी प्रकार मैं भी उसके सामने से एक कदम पीछे हट गया। उसकी इस प्रेमातुरता से मैं भयभीत हो गया, जैसे कोई निर्धन मनुष्य किसी के हाथों से सोने की ईंट लेते समय भयभीत हो जाए। मेरा चित्त एक अज्ञात शंका से कांप उठा। रमणी ने मेरी ओर अग्निमय नेत्रों से देखा, मानो किसी सिंहनी के मुंह से उसका आहार छिन जाए, और सरोष होकर बोली, ये भीरुता क्यों? मैं आपका एक तुच्छ सेवक हूं, इस महान आदर का पात्र नहीं। रमणी बोली, आप मुझसे घृणा करते हैं? ये आपका मेरे साथ अन्याय है। मैं इस योग्य भी तो नहीं कि आपके तलुओं को आंखों से लगाऊं। आप दीपक हैं, मैं पतंग हूं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। रमणी नैराश्यपूर्ण क्रोध के साथ बैठ गई और बोली, वास्तव में आप बहुत निर्दयी हैं। मैं ऐसा ना समझती थी। आप में अभी तक अपनी शिक्षा के कुसंस्कार लिपटे हुए हैं। पुस्तकों और सदाचार की बीड़ी आपके पैरों से नहीं निकली। मैं शीघ्र ही अपने कमरे में चला आया, और चित्त के स्थिर होने पर जब मैं इस घटना पर विचार करने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि मैं अग्निकुंड में गिरते गिरते बचा। कोई गुप्त शक्ति मेरी सहायक हो गई। ये गुप्त शक्ति क्या थी? मैं जिस कमरे में ठहरा हुआ था उसके सामने झील के दूसरी तरफ एक छोटा सा झोपड़ा था। उसमें एक वृद्ध पुरुष रहा करते थे। उनकी कमर तो झुक गई थी, पर चेहरा तेजमय था। वो कभी कभी महल में आया करते थे। रमणी न जाने क्यों उनसे घृणा करती थी, मन में उनसे कुछ डरती थी, उन्हें देखते ही घबरा जाती, मानो किसी असमंजस में पड़ी हुई है। उसका मुख फीका पड़ जाता, जाकर अपना मुख छुपा लेती। मुझे उसकी ये दशा देखकर कौतूहल होता था। कई बार उसने मुझसे उनकी चर्चा की थी, परंतु अत्यंत अपमान के भाव से। वो मुझे उनसे दूर दूर रहने का उपदेश दिया करती, और यदि कभी उनसे बातें करते देख लेती तो उसके माथे पर बल पड़ जाते थे। कई कई दिनों तक मुझसे खुलकर न बोलती थी। उस रात को मुझे देर तक नींद नहीं आई थी। उधेड़ बुन में पड़ा हुआ था। कभी जी चाहता, आओ
आंख बंद करके प्रेम रसपान करें, संसार के पदार्थों का सुख भोगें, जो कुछ होगा देखा जाएगा, जीवन में ऐसे दिव्य अवसर कहां मिलते हैं। फिर आप ही आप मन कुछ खींच जाता, घृणा उत्पन्न हो जाती थी। रात के 10 बजे होंगे कि हठात मेरे कमरे का द्वार आप ही खुल गया और वही तेजस्वी पुरुष अंदर आए। यद्यपि मैं अपनी स्वामिनी के भय से उनसे बहुत कम मिलता था, परंतु उनके मुख पर ऐसी शांति थी और उनके भाव ऐसे पवित्र तथा कोमल थे कि हृदय में उनके सत्संग की उत्कंठा होती थी। मैंने उनका स्वागत किया और लाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया। उन्होंने मेरी ओर दयापूर्ण भाव से देखकर कहा, मेरे आने से तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आप जैसे महात्माओं का दर्शन मेरे लिए सौभाग्य की बात है। महात्मा जी निश्चिंत तो होकर बोले, अच्छा तो सुनो और सचेत हो जाओ। मैं तुम्हें यही चेतावनी देने के लिए आया हूं, तुम्हारे ऊपर एक घोर विपत्ति आने वाली है। तुम्हारे लिए इस समय इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं कि यहां से चले जाओ। मेरी बात न मानोगे तो जीवन पर्यंत कष्ट झेलोगे और इस माया जाल से कभी मुक्त ना हो सकोगे। मेरा झोंपड़ा तुम्हारे सामने था, मैं भी कभी कभी यहां आया करता था, परंतु तुमने मुझसे मिलने की आवश्यकता न समझी। यदि पहले ही दिन तुम मुझसे मिलते तो सहस्त्रों मनुष्यों का सर्वनाश करने के अपराध से बच जाते। निसंदेह यह तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल था जिसने आज तुम्हारी रक्षा की। अगर ये पिशाचिनी एक बार तुमसे प्रेमालिंगन कर लेती तो फिर तुम उसी दम उसके अजायब खाने में भेज दिए जाते। वो जिस पर रीझती है उसकी वही गत बनाती है, यही इसका प्रेम है। चलो जरा इस अजायब खाने की सैर करो, तब तुम समझोगे कि आज तुम किस आफत से बचे। ये कहकर महात्मा जी ने दीवार में एक बटन दबाया, तुरंत एक दरवाजा निकल आया। ये नीचे उतरने की सीढ़ी थी, महात्मा उसमें घुसे और मुझे भी बुलाया। घोर अंधकार में कई कदम उतरने के बाद एक बड़ा कमरा नजर आया, उसमें एक दीपक टिमटिमा रहा था। वहां मैंने जो घोर विभत्स और हृदय विदारक दृश्य देखे, उनका स्मरण करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इटली के अमरकवि डेंटी ने नर्क का जो दृश्य दिखाया है उससे कहीं भयावह रोमांचकारी और नारकीय दृश्य मेरी आंखों के सामने उपस्थित था। सैकड़ों विचित्र देहधारी नाना प्रकार की अशुद्धताओं में लिपटे हुए भूमि पर पड़े कराह रहे थे। उनके शरीर मनुष्य कैसे थे, लेकिन चेहरों का रूपांतर हो गया था। कोई कुत्ते से मिलता था, कोई गीदड़ से, कोई बन बिलाव से, कोई सांप से। एक स्थान पर मोटा स्थूल मनुष्य एक दुर्बल शक्तिहीन मनुष्य के गले में मुख लगाए उसका रक्त चूस रहा था। एक और दो गिद्ध की सूरत वाले मनुष्य एक सड़ी हुई लाश पर बैठ उसका मांस नोच रहे थे। एक जगह एक अजगर की सूरत का मनुष्य एक बालक को निगलना चाहता था, पर बालक उसके गले में अटका हुआ था। दोनों ही जमीन पर पड़े छटपटा रहे थे। एक जगह मैंने एक अत्यंत पैशाचिक घटना देखी। दो नागिन की सूरत वाली स्त्रियां एक भेड़िए की सूरत वाले मनुष्य के गले में लिपटी हुई उसे काट रही थी। वो मनुष्य घोर वेदना से चिल्ला रहा था। मुझसे अब और न देखा गया, तुरंत वहां से भागा और गिरता पड़ता अपने कमरे में आकर दम लिया। महात्मा जी मेरे साथ चले आए। जब मेरा चित्त शांत हुआ तो उन्होंने कहा, इतनी जल्दी घबरा गए, अभी तो इस रहस्य का एक भाग भी नहीं देखा। ये तुम्हारी स्वामिनी के विहार का स्थान है और यही उनके पालतू जीव हैं। इन जीवों के पिशाचाभिनय देखने में उनका विशेष मनोरंजन होता है। ये सभी मनुष्य किसी समय तुम्हारे ही समान प्रेम और प्रमोद के पात्र थे, पर उनकी ये दुर्गति हो रही है। अब तुम्हें यही सलाह देता हूं कि दम यहां से भागो, नहीं तो रमणी के दूसरे वार से कदापि न बचोगे। ये कहकर वो महात्मा अदृश्य हो गए। मैंने भी अपनी गठरी बांधी और अर्धरात्रि के सन्नाटे में चोरों की भांति कमरे से बाहर निकला। शीतल आनंदमय समीर चल रही थी। सामने के सागर में तारे छिटक रहे थे, मेहंदी की सुगंधी उड़ रही थी। मैं चलने को चला, पर संसार सुख भोग का ऐसा सुअवसर छोड़ते हुए दुख होता था। इतना देखने और महात्मा के उपदेश सुनने पर भी चित्त उस रमणी की ओर खींचता था। मैं कई बार चला, कई बार लौटा, पर अंत में आत्मा ने इंद्रियों पर विजय पाई। मैंने सीधा मार्ग छोड़ दिया और झील के किनारे किनारे गिरता पड़ता, कीचड़ में फंसता सड़क तक आ पहुंचा। यहां आकर मुझे एक विचित्र उल्लास हुआ, मानो कोई चिड़िया बाज के पंजों से छूट आई हो।

यद्यपि मैं एक मास के बाद लौटा था, पर अब जो देखा तो अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ था। कमरे में जरा भी गर्द या धूल न थी। मैंने लोगों से इस घटना की चर्चा की तो लोग खूब हंसे और मित्रगण तो मुझे अभी तक मुझे प्राइवेट सेक्रेटरी कहकर बुलाया करते हैं। सभी कहते हैं कि मैं एक मिनट के लिए भी कमरे से बाहर नहीं निकला। महीना भर गायब रहने की तो बात ही क्या। इसलिए मुझे भी विवश होकर यही कहना पड़ता है कि शायद मैंने कोई स्वप्न देखा हो। कुछ भी हो, परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि मैं उस पाप कुंड से बचकर निकल आया। चाहे स्वप्न ही हो, पर मैं उसे अपने जीवन का एक वास्तविक अनुभव समझता हूं, क्योंकि उसने सदैव के लिए मेरी आंखें खोल दी।

0: तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी, जिसमें आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ज्वालामुखी। फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हमारे देश में संगीत की एक समृद्ध परंपरा रही है और संगीत दायरों को नहीं मानता। इतना बड़ा हमारा देश, अलग अलग बोली भाषा के लोग, अलग जाति धर्म के लोग, अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग, अलग जाति धर्म, अलग बोली भाषा और अलग रीति रिवाजों से उत्पन्न कितनी ही स्वर लहरियां संगीत की अलग अलग शैलियों के रूप में आज विख्यात हैं। ऐसी ही एक संगीत शैली है अभंग। आज भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की इसी संगीत परंपरा की वानगी। और विशेष बात ये कि इसे प्रस्तुत करने वाली दो कलाकार चेन्नई से संबद्ध हैं। जी हाँ, कर्नाटक शैली में पारंगत रंजनी और गायत्री। इनके युगल स्वरों में आइए सुनते हैं अभंग गायन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रंजनी और गायत्री का अभंग गायन। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत जल्द भारत भारती के एक और अंक के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिएगा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए आप सुनते हैं तराने आजादी।
2: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 143वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं अग्नि, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
3: प्रतव्यसीम नव्यसीम धीतिमग्नये वाचो मतिम सहसह सूनवे भरे अपाम न पाद्यो वसुभिः सह प्रियो होता पृथिव्याम न्यसीदत् द्वित्वियः। शक्ति के पुत्र, जलों के संरक्षक अग्निदेव, सबके प्रिय तथा ऋतुओं को दृष्टिगत रखकर यज्ञीय कर्मों के संपादक हैं। वे ऐश्वर्यों सहित पृथ्वी के ऊपर यज्ञ वेदी में प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसे अग्निदेव के निमित्त हम नवीनतम श्रेष्ठ प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। स जायमानः परमे व्योमन्या विरग्नि रभवन मातरिश्वने अस्य कृत्वा समिधानस्य मज्मना प्रद्यावा शोचिहि पृथिवी अरोचयत्। वे तेजस्विता संपन्न अग्निदेव मातरिश्वा वायु के लिए उच्च अंतरिक्ष में सबसे पहले प्रादुर्भूत हुए। श्रेष्ठ विधि से प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव की शक्ति सामर्थ्य से दिव्य लोक और भूलोक भी प्रकाशमान हुए। अस्य त्वेषा अजरा अस्य भानवः सुसंदृशः सुप्रतीकस्य सुद्युतः भात वचक्षसो अन्त्यरक्तुर्न सिंधवोग्ने रेजन्ते अससंतो अजराः। इन अग्निदेव की प्रचंड तेजस्विता जीर्णता से रहित है। सुंदर मुख वाली इनकी तेजस्वी किरणें सभी ओर संव्याप्त होकर प्रकाशित हैं। दीप्तिमान, शक्ति संपन्न तथा रात्रि के अंधकार को पार करते हुए इन अग्निदेव की ज्वाला रूपी किरणें सदा जागृत और क्षय रहित होकर कभी भयभीत नहीं होती। यमे रिरे भृगवो विश्ववेदसम नाभा पृथिव्या भुवनस्य मज्मना अग्निम तम गीर्भिर् हिनुहि स्व आदमे य एको वस्वो वरुणो न राजति। जो अग्निदेव वरुण देव के समान ही ऐश्वर्यों के एकमात्र अधिपति हैं, उन्हें भृगुवंशी ऋषियों ने अपनी सामर्थ्य से संपूर्ण विश्व के प्राणियों तथा पृथ्वी पर समस्त ऐश्वर्यों के लिए प्रतिष्ठित किया। ऐसे अग्निदेव को आप भी अपने गृह में ले जाकर श्रेष्ठ प्रार्थनाओं से प्रज्वलित करें। न यो वराय मरुतामिव स्वनः सेनेव सृष्टा दिव्या यथा शनिः अग्निर् जम्भैस्ति गितैरत्ति भर्वति योधो न शत्रुंस्त वना न्यरिंग्यते। जो अग्निदेव मरुद गणों की भीषण गर्जना की भांति आक्रमण को प्रेरित पराक्रमी सेना की भांति तथा आकाश के वज्रास्त्र के समान ही अवरोध रहित हैं। वे अग्निदेव योद्धाओं के समान ही अपनी तीव्र ज्वालाओं रूपी तीखे दांतों से शत्रुओं को विनष्ट करते हैं तथा वनों को भी उसी प्रकार भस्मीभूत कर देते हैं। कुविन्नो अग्नि रुचथस्य वीरसद वसु शुष्कु विद्विसुभिः काम मावरत चौदह कुवित्तु तुज्यात् सातये धियः शुचि प्रतीकम् तमया धिया गृणे। अग्निदेव हमारे स्तोत्र के प्रति विशेष कामना से प्रेरित होकर सबके आश्रयभूत धन द्वारा हमारी अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करें। वे हमारे कल्याणार्थ श्रेष्ठ कर्मों की प्रेरणा बार बार प्रदान करें। हम अपनी निर्मल भावनाओं से उत्तम ज्योति स्वरूप अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं। घृत प्रतीकम व ऋतस्य धूर्षदमग्निम मित्रम न समिधान रिंजते इंधानो अक्रो विदथेषु दीद्यच्छुक्र वर्णामुदु नो यंसते धियम। हम आपके लिए यज्ञ संपादक और घृत द्वारा प्रज्वलित अग्निदेव को मित्र के समान प्रदीप्त करके सुशोभित करते हैं। वे अग्निदेव श्रेष्ठ प्रकाश युक्त दीप्तियों से संपन्न यज्ञों में प्रज्वलित किए जाने पर मनुष्यों की श्रेष्ठ भावनाओं में प्रखरता लाते हैं। अप्रयुच्छन्न प्रयुच्छद्भिरग्ने शिवेभिर्नः पायुभिः पाहि शग्मैः अदब्धेभिर द्रिपितेभिरिष्टे निमिषद्भिः परिपाहि नो जाह। हे अग्निदेव, आप निरंतर आलस्य रहित व्यवधान रहित हितकारक तथा सुखदायी साधनों से हमें संरक्षण प्रदान करें। हे पूजनीय अग्निदेव, आप अनिष्ट रहित होकर बिना किसी पीड़ा और आलस्य के हमारी संतानों को भी भली प्रकार सुरक्षा प्रदान करें।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 143वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग न करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं, उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं। भज

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम सांदगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं जैन धर्म के श्वेतांबर तेरा पंथ के 10वें संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

भारत विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और दर्शन का एक महकता हुआ गुलशन है। इसकी विभिन्नता में समाई हुई एकता इसकी विशेषता है। यही कारण है कि विश्व मानचित्र पर भारतवर्ष एक अटल नक्षत्र की तरह चमकता रहा है। अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय और भाषा की अंतर्निहित धाराओं को साथ लिए भारतीय संस्कृति की अविरल धारा प्रवाहित है। इन्हीं धाराओं में से एक है जैन धर्म। जीवन में राग द्वेष को जो जीत ले उसे जिन कहा गया और इनके द्वारा प्ररूपित धर्म जैन धर्म कहलाया। कालांतर में इसकी दो शाखाएं हुईं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर की एक प्रशाखा है तेरा पंथ, जो एक आचार, एक विचार और एक आचार्य की संयमित विचारधारा के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखती है। तेरा पंथ की स्थापना आचार्य भिक्षु के द्वारा की गई और तब से लेकर अब तक कुल 11 आचार्य हुए हैं। तेरा पंथ के महासूर्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तेरा पंथ के 10वें अधिशास्ता हुए। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित तेरा पंथ के 10वाधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी न केवल तेरा पंथ धर्म संघ के बल्कि संपूर्ण मानव समाज के पुरोधा थे। वे एक संत, योगी, आध्यात्मिक दार्शनिक, अधिनायक, लेखक, वक्ता और कवि थे। उनकी अनेक पुस्तकें और लेख भी प्रकाशित हुए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ का जन्म 14 जून सन 1920 को राजस्थान के टमकोर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम तोलाराम और माता का नाम बालू था। आचार्य जी का बचपन का नाम इंद्रचंद्र रखा गया, जो व्यवहार में नहीं आ सका। वो नथमल के नाम से ही पुकारे गए। दरअसल बहुत कम आयु में ही उनके दो भाइयों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए परिवार और गांव के लोगों ने एक टोटके के तहत उन्हें एक नथ पहना दी। इस तरह उनका नाम नथमल पड़ गया। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। माँ बालू ने उनका पालन पोषण किया। उनकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं, इस कारण उन्हें बचपन से ही धार्मिक संस्कार मिले थे। बचपन में बालक नथमल घंटों आकाश को देखते हुए लीन हो जाया करते थे। कहा जाता है कि बचपन में उनके घर पर एक ज्ञानी भिक्षु आया और उसने बालक नथमल के विषय में भविष्यवाणी की। उस ज्ञानी भिक्षु ने उनकी माँ से कहा, माँ, तू बड़ी भागवान है। बाहर जो तेरा बच्चा खेल रहा है वो एक दिन राजा बनेगा। उसकी कीर्ति दुनिया भर में फैलेगी। और वो भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। नथमल आगे चलकर आचार्य श्री महाप्रज्ञ के नाम से विख्यात हुए और उनके विचार और दर्शन ने अनगिनत लोगों को राह दिखाई।

जब बालक नथमल लगभग 10 वर्ष के थे, उस समय मुनि श्री छबील मल जी का चतुर्मास टमकोर में था। मुनि श्री छबील जी और उनके साथ आए साधुओं के सानिध्य ने बालक नथमल के मन में वैराग्य के अंकुर प्रस्फुटित कर दिए। तब बालक नथमल ने अपनी माँ के समक्ष अपनी भावना प्रकट की। इस पर उनकी माँ ने कहा, मैं भी साध्वी बनना चाहती थी, किंतु तुम छोटे थे इसलिए मैंने दीक्षा नहीं ली। उनके वैराग्य के भाव की परीक्षा के बाद आचार्य कालूगणी जी ने माता और पुत्र दोनों को दीक्षा की स्वीकृति प्रदान कर दी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुनि तुलसी के द्वारा हुई और माघ शुक्ल दशमी की पावन वेला में श्री भैरुदास जी भंसाली के बाग में पूर्ण परिषद के बीच जो 9 दीक्षाएं हुई, उनमें बालक नथमल और उनकी माता बालू जी की दीक्षा भी संपन्न हुई। इस तरह 29 जनवरी सन 1931 को बालक नथमल ने अपनी माता के साथ 13 पंथ के आचार्य कालूगणी जी से दीक्षा ग्रहण की। मात्र 10 वर्ष की आयु में बालक नथमल का जीवन एक जैन सन्यासी के रूप में आरंभ हुआ। शुरुआत में वो एक साधारण संत थे, किंतु समय के साथ उनकी प्रज्ञा इस तरह विकसित हुई कि वो मुनि नथमल से आचार्य श्री महाप्रज्ञ बन गए। उन्होंने मात्र 36 दिनों में पूरा उत्तराध्ययन सीख लिया। उन्होंने अणुव्रत आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई, जो गुरु आचार्य तुलसी ने सन 1949 में आरंभ किया था। अणुव्रत का अर्थ है लघुव्रत। जैन धर्म के अनुसार सामान्य गृहस्थ अणुव्रतों का पालन करते हैं और महाव्रत साधुओं के लिए होते हैं। ये व्रत अणुव्रत इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि साधुओं के महाव्रतों की अपेक्षा ये लघु होते हैं। महाव्रतों में सर्व त्याग की अपेक्षा रखते हुए सूक्ष्मता के साथ व्रतों का पालन किया जाता है, जबकि अणुव्रतों का पालन स्थूलता से किया जाता है। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 अणुव्रत बताए जिनका पालन प्रत्येक आमजन को करना चाहिए। और इसी हेतु गुरु आचार्य तुलसी ने आंदोलन चलाया जिसमें आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने 13 पंथ के 9वें आचार्य मुनि तुलसी के मार्गदर्शन में दर्शन, न्याय, व्याकरण, मनोविज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद, जैन आगम, बौद्ध ग्रंथों, वैदिक ग्रंथों तथा प्राचीन शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। वो संस्कृत भाषा के आशुकवि थे। आचार्य श्री तुलसी संत परंपरा को आत्मसात कर आगे बढ़ते मुनि नथमल से बहुत प्रभावित थे। यही कारण है कि उन्होंने मुनि नथमल को पहले अग्रगण्य और फिर आगे चलकर सन 1965 में हिसार में निकाय सचिव नियुक्त किया। कुछ समय बाद उनकी प्रज्ञा से प्रभावित होकर आचार्य तुलसी ने उन्हें महाप्रज्ञ की उपाधि से अलंकृत किया। तभी से वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ के नाम से विख्यात हुए।

आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने सन 1970 के दशक में अच्छी तरह से नियमबद्ध प्रेक्षा ध्यान भी तैयार किया और शिक्षा प्रणाली में जीवन विज्ञान का विकास किया ताकि छात्रों का समग्र संतुलित विकास और उनका उच्च चरित्र निर्माण हो सके। जैन संप्रदाय के धर्मग्रंथ आगम के संपादन के कार्य में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें कई आगम कंठस्थ थे। उनका संस्कृत और प्राकृत भाषा का ज्ञान अद्भुत था। वो घंटों इन भाषाओं में प्रवचन कर सकते थे। उनके भाषा ज्ञान और शब्द संपदा को देखते हुए उन्हें चलता फिरता शब्दकोश कहा जाता था। सन 1978 में आचार्य श्री तुलसी ने राजस्थान के राज लदेसर में मर्यादा महोत्सव के अवसर पर उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और महाप्रज्ञ युवाचार्य महाप्रज्ञ हो गए। सन 1993 में राजस्थान के सुजानगढ़ में आचार्य तुलसी ने अपने आचार्य पद का विसर्जन कर दिया और युवाचार्य महाप्रज्ञ को आचार्य नियुक्त किया और वे तेरा पंथ के 10वें आचार्य बने। आचार्य श्री महाप्रज्ञ का

वर्णन मिलता है। लेशिया कर्म का एक सिद्धांत है। लेशिया अर्थात जो लिंपन करती है, यानी जो कर्मों को आत्मा से लिप्त करती है, जिसके द्वारा आत्मा पुण्य पाप से अपने को लिप्त करती है, वो लेशिया है। जैसे मिट्टी गेरू आदि के द्वारा दीवार रंगी जाती है, उसी प्रकार शुभ अशुभ भाव रूप लेप के द्वारा आत्मा का परिणाम लिप्त किया जाता है। संक्षेप में कहें तो मनुष्य के अच्छे बुरे भावों को लेशिया कहा जाता है। अपनी पुस्तक प्रेक्षा ध्यान लेशिया ध्यान में आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने कहा कि व्यक्ति में अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों का कारण उसकी लेशियाएं होती हैं। बुरी आदतों को उत्पन्न करने वाली तीन लेशियाएं होती हैं, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापूत लेशिया। इन तीन लेशियाओं से क्रूरता, हत्या, कपट, असत्य, प्रवंचन, धोखाधड़ी, विषय लोलुपता, प्रमाद, आलस्य आदि बुराइयां पैदा होती हैं। इसके अलावा पीत, पद्म और शुक्ल, ये तीन लेशियाएं अच्छी आदतें उत्पन्न करती हैं। जब हम तीन लेशियाओं के स्पंदन जगाते हैं, तब हमारे भाव निर्मल हो जाते हैं। अभय, मैत्री, शांति, क्षमा आदि पवित्र भावों का निर्माण होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने सदा अहिंसा पर बल दिया। उनका मानना था कि हिंसा करके आप कभी जीत नहीं सकते, अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। 9 मई सन 2010 को सरदार शहर राजस्थान में उन्होंने महानिर्वाण प्राप्त किया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के विचार युगों युगों तक संपूर्ण विश्व को आलोकित करते रहेंगे। ऐसे युग प्रवर्तक और महान दार्शनिक, 13 पंथ के महासूर्य, महातेजस्वी, महामनस्वी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हमारा शत शत

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बाल सभा।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है खेलना क्यों जरूरी है।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी। और फिर बाल सभा लेकर आपको तो पता ही है, मैं हर सप्ताह आपसे मिलती हूँ। बच्चों की बातें, बच्चों की दुनिया, उनके मन से जुड़े हुए विषय, और एक बार फिर से उन सब विषयों पर बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों, आप जानते हैं आज का विषय क्या है? आज का विषय है खेलना क्यों जरूरी है। बच्चों, खेल बचपन की ना सबसे सुंदर पहचान होते हैं, क्योंकि खेल केवल समय बिताने के माध्यम नहीं है, बल्कि ये खेल बच्चों को स्वस्थ, आत्मविश्वासी और मिलनसार बनाते हैं। खेल में एक बात और होती है बच्चों, वो होती है जीवन की छोटी छोटी लेकिन बहुत बड़ी बड़ी सीखें। अब आप सोचोगे कि खेल से कैसे सीख मिलती है, तो ये तो बच्चों आपको पता ही है कि मैं आपसे कोई भी बात, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, वही बात करती हूँ जिसमें कोई ना कोई सीख छुपी होती है। क्योंकि बच्चों, हमेशा हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो मीनिंगफुल हो, थॉटफुल हो, जो हम देख रहे हैं उसका कोई अर्थ निकले। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, है ना। अगर हम सिर्फ ऐवें ही कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो बच्चों वो समय का दुरुपयोग है। और इस विषय पर हमने पिछली बाल सभा में बात की थी। आज जो बच्चा मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में आने वाला था, उसका मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन आया, बोला दीदी मैंने ना आज ही सुबह बहुत ज़रूरी काम से जाना है। मैंने कहा किस काम से जाना है? तो उसने बताया कि एक कॉलोनी में उनकी खेल प्रतियोगिता है, उसमें जाना है। तो बोला दीदी सॉरी, मैं आज स्टूडियो ना आऊँ, आज मैं अपनी खेल प्रतियोगिता में चला जाऊँ। बस वहीं से मुझे ये विषय मिल गया। मैंने कहा ठीक है, तुम जाओ प्रतियोगिता में, न सिर्फ खेल के आओ बल्कि जीत के आओ। और आज मैं अपने सभी श्रोताओं से, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने श्रोताओं से बात करूंगी कि खेलना क्यों ज़रूरी है, और क्यों मैंने उस बच्चे से कहा कि हाँ यहाँ बच्चों से बात करना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि जो प्रतियोगिता में तुम नाम लिखवा चुके हो, पहले जाकर उसमें खेलो, और ना सिर्फ खेलो बल्कि जीतने का प्रयास भी करो। क्योंकि बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि आज के समय में जब बच्चों का अधिक समय स्क्रीन पे जा रहा है, और ये बात बिल्कुल सच भी है, छोटे छोटे बच्चों को मैं कितने, इतने छोटे बच्चों को देखती हूँ, 4 साल के, 5 साल के, जो खाना खाते वक्त अपनी मम्मा से ये बात ज़रूर कहते हैं कि थोड़ी सी देर के लिए फ़ोन दे दीजिए। मतलब भाषा में तोतलापन है, मतलब आप सोचिए मम्मा पानी पीना है लेकिन स्क्रीन देखते हुए पीना है। कितने बच्चे छोटे छोटे वजहों से स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल ऑनलाइन स्टडी भी है, उसका एक रीज़न है। लेकिन बच्चों, जितना ज़रूरी है उसके अलावा हमें स्क्रीन पर समय नहीं बिताना है, बल्कि हमें खेलने जाना है। अब मैं पूछूं आप लोगों को कौन कौन से खेल पसंद हैं, तो वहाँ से आवाज़ आएगी कि मुझे कबड्डी पसंद है, क्रिकेट पसंद है, रस्सी कूद पसंद है, है ना, जो मैं अपने दोस्तों के साथ रोज़ खेलता हूँ या खेलती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को खेल खुश भी रखते हैं, पता है आपको। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे वाले समय में ले जाऊँ, जब हम लोग खेलते थे, ये सारे खेल तो खेलते ही थे, इसके साथ साथ कुछ और भी खेलते थे बच्चों। क्या होता था कि मम्मियाँ ना दोपहर में काम करके थक जाती थीं। अब जब थक गई तो उन्हें एक चीज़ ये भी है कि दोपहर में धूप बहुत है, तो धूप में एकदम बाहर तो खेलने आपको नहीं जाना है, लेकिन जब तक मम्मी सो रही हैं, जब तक माँ और घर में दादी नानी ये लोग सो रही हैं, तब तक बच्चों का हल्ला करना, शोर करना बिल्कुल मना था। और हम लोग अपनी पेरेंट्स की ना बात बहुत मानते थे। तो अब ऐसे में क्या खेल खेलें कि आवाज़ भी ना आए, तो छोटे छोटे से खेल बना लेते थे हम लोग। जैसे आंगन में गए और अष्टाचंगा खेलने लगे। अब आप सोचो अष्टाचंगा क्या होता है। इमली बहुत खाते थे बच्चे गर्मियों में ना, इमली खा रहे हैं तोड़ तोड़ के पेड़ों से, उसके जो बीज निकल रहे उससे हम लोग खेलते थे। आप लोग जैसे पासा और ये सब खेलते हो, लूडो खेलते हो आप लोग, उसी तरीके से हम लोग पत्थर पे किसी चीज़ से, चौक से या और पेंसिल किसी ऐसी चीज़ से जिससे वहाँ पर निशान बन जाए, एक चौकोर खाना बना लेते थे और उसमें अष्टाचंगा खेलते थे। सारे दोस्तों को बहुत मज़ा आता था। और फिर जैसे ही सब लोग जग जाते थे और हमें परमिशन मिल जाती थी थोड़ा शोर मचाने की, थोड़ा ऊधम करने की, तो हम लोग पिट्ठू खेलते थे, कंचे बहुत खेलते थे बच्चे। उससे एक चीज़ होती थी बच्चों, जो कंचे कई जगह उसे अंटा भी बोलते थे, उससे ना निशाना बहुत अच्छा साध पाते थे। तीरंदाजी बच्चे छोटी छोटी जगहों पे बहुत करते थे, गुलेल खेलते थे आप सोचो, और तो और पिट्ठू के अलावा खो खो खेलते थे। खो खो तो अभी भी अब बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। एक खेल हुआ करता था गिल्ली डंडा, उसमें छोटी सी लकड़ी से बच्चे अपने लिए वो बना लेते थे। और तो और जो साइकिल के पुराने टायर होते थे ना बच्चों, उसको भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे छोटी सी लकड़ी से बहुत दूर दूर तक दौड़ा कर ले जाते थे। अब आप सोचिए कि इस खेल में क्या है। इस खेल में जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि बहुत सारा खर्चा नहीं है, है ना। ठीक है, हमको हर चीज के लिए बाजार का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है। हम अपने खेल न सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि उनको बना भी खुद रहे। अब आप सोचिए कि जो बच्चा साइकिल के पुराने टायर को एक लकड़ी से दूर तक दौड़ाता हुआ ले जा रहा है, उसका फोकस कितना अच्छा हो जाता होगा। सोचिए सोचिए, क्योंकि ये सोचना जरूरी है बच्चों। अगर वो बच्चा अपनी मम्मा से रोज कहे कि आज मुझे ये खेल खेलना है, कल मुझे वो खेल खेलना है, आज ये बाजार से ले आइए, आज वो बाजार से, तो पता चलता है कि गर्मियों की छुट्टियों में मम्मी पापा का बजट बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है। तो हमको ये नहीं करना है। हमको ऐसे खेल खेलने की कोशिश करनी है जिसको हम थोड़े थोड़े खुद भी बना सकें। और सच बताऊं बच्चों, इसमें मजा भी बहुत आता है। एक और खेल हम लोग खेलते थे, वो पता है क्या था। उस खेल का नाम था किल किल कांटे। अजीबो गरीब सा नाम है ना, पर मुझे आज था कि मैं स्टूडियो में जब आप लोग के साथ खेलों की बात करूंगी तो वो सारे खेल आपको बताऊंगी जो हम लोग खेला करते थे, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन तब बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होते थे बच्चों, है ना, कि छोटी छोटी सी चीज़ के लिए हम लोग बाजार भाग जाएं, नहीं होता था। इनफैक्ट बाजार में भी इतने खेल नहीं थे जैसे आजकल मैं देखती हूँ, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों काम करें उसके लिए नए नए गेम्स आ रहे हैं, नई नई बुकलेट्स आ रही हैं। ठीक है, बाजार में नई चीज़ों का इन्वेंशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि आप जब खुद कोई खेल बनाते हैं उसमें जो मजा आता है, उसमें जो आपका ब्रेन यूज होता है ना, वो कहीं नहीं होता और कभी नहीं होता, सच मानिए। जैसे वो किल किल कांटे में हम लोग क्या करते थे कि आपको खूब सारी लाइनें खींचनी है लेकिन ऐसी जगह जो दूसरे को पता ना चले, वो फिर आपकी लाइनें ढूंढता था कि आपने कहां बनाई है और उसको काटता था। तो जो आपने लाइन बनाई है उसने अगर सारी काट दी तो वो जीत गया, और नहीं तो बाकी बच्चे ना एक कपड़ा लेते थे और उसकी पीठ पर कपड़े से मारते थे, तो चोट भी नहीं लगती थी, मजा भी आता था और खूब दौड़ा भागी होती थी, खूब दौड़ा भागी होती थी। ऐसे ही खो खो खेलते वक्त हम लोग बोलते थे कि घोड़ा जमाल खाए पीछे देखा मार खाए, तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा हमारी भाषा को भी समृद्ध करती थी। इसलिए मैं आज आपसे खेलना क्यों ज़रूरी है इस विषय पर बातचीत करना चाह रही थी। एक बात और थी कि मेरी कुछ दोस्तों को ना गुड़िया के कपड़े बनाना बहुत पसंद था। अब वो अपनी मम्मी से पुराने कपड़े लेती थी, उसमें फिर सुई धागा लेती थी और हाथों से छोटे छोटे से कपड़े बनाती थी कैंची से काट काट के, मुझे बहुत अच्छे से याद है। इनफैक्ट उनमें से एक दोस्त थी जिसको लगता था कि गुड़ियों को थोड़े से वेस्टर्न कपड़े पहनाने चाहिए, तो वो पता है किससे कपड़े बनाती थी, आश्चर्य करोगे, वो बैलून से कपड़े बनाती थी। वो गुब्बारे को पहनाकर गुड़िया को सजाती थी, और मैं आज आपको बताते हुए बहुत गर्व भी हो रहा है कि मेरी वो दोस्त इंडियन फैशन इंस्टीट्यूट में है। तो आपके बचपन के खेल की यात्रा कहाँ तक जाएगी बच्चों, ये किसी को नहीं पता, है ना। और आपको पता है आजकल आप देखते होंगे कि बच्चे चूंकि स्क्रीन टाइम बहुत है और चूंकि आंखों की बहुत एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, पहले हरियाली देखना, घूमना, टहलना, दूर दूर निशाना साधना, तो आपने देखा होगा कई बच्चों को आजकल बहुत कम उम्र में चश्मे लग जाते हैं। पहले हमारे यहाँ सुई धागा रेस भी होती थी, सुई में धागा डालो। अब सोचो आप सुई में धागा डालना, अब अगर आप आज कोशिश करना कि अपनी मम्मी पापा को बोलो कि एक सुई और धागे की आपसे रेस करवाएं, कितने लोग सुई में धागा डाल पाएंगे ये आप मुझे अगली बाल सभा में जरूर बताना, ठीक है? या तो आप मुझे जो बच्चे यहाँ स्टूडियो में आएंगे वो बताएंगे, या तो मैं कैसे ना कैसे अपने बच्चों से पूछ ही लूंगी। आज पार्क जाऊंगी शाम को तब भी पूछूंगी और ये बोलूंगी कि घर पे जाके एक्सरसाइज करो। अब आप देखिए कि सुई में धागा डालना कहने को बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन उसमें भी बच्चों आपका फोकस काम आता है ना। आप कितने ध्यान से सुई में जो छोटा सा बहुत बारीक सा छेद है उसको देख पा रहे हो और उसमें धागा पिरो पा रहे हो, है ना। ये छोटी छोटी सी चीज़ है, जैसे बैलेंसिंग के लिए एक बहुत अच्छी होती थी, चम्मच में नींबू को रख कर और फिर रेस करवाते थे। तो ये मैंने अभी भी बहुत देखी है, अभी भी बच्चे बहुत खेलते हैं। तो इससे क्या होता था, इससे बैलेंसिंग आती थी। अब ये संतुलन, ये फोकस, ये हर चीज़ क्या आपकी जिंदगी में काम नहीं आती बच्चों? आती है ना। बिल्कुल ऐसे ही हमें ये समझना होगा कि खेलों से दरअसल हमारी जिंदगी में क्या असर पड़ रहा है, क्या खास बात हम सीख पा रहे हैं, है ना। क्योंकि बैलेंस तो वैसे भी बहुत जरूरी है लाइफ में। अब जैसे एक छोटी सी बात बताऊं आपको, एक बच्ची है, वो जहाँ मैं रहती हूँ उसके पास में ही रहती है। अब उस बच्ची में मैं हमेशा देखती हूँ कि थोड़ा व्यवहार में संतुलन कहीं ना कहीं कम हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जैसे उसे बाहर खेलना पसंद है तो वो पूरे समय बाहर खेलना चाहती है, ठीक। अब उसका देखिए बैलेंस्ड बिहेवियर कैसे डगमगा रहा है कि मैंने देखा कि कल वो बहुत धूप में भी ना सबके घर जाकर बच्चों को बुला रही थी, बाहर आओगे खेलने आओगे। अब क्या हुआ कि एक दो घरों में गई वो, मैं वापस लौट रही थी कहीं से कुछ सामान लेकर, तो मैं चुपचाप खड़े होकर उसकी गतिविधियां देख रही थी। तो उसने किसी एक का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी मम्मी ने बोला नहीं बेटा अभी हम नहीं भेजेंगे क्योंकि धूप बहुत है। फिर उसने क्या किया, बगल वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया, आंटी उसको भेज दीजिए ना, मुझे उसके साथ खेलना है। तो उसकी मम्मी ने भी मना कर दिया कि नहीं बेटा धूप बहुत है अभी नहीं भेजेंगे, शाम को आना। अब जब दो तीन घरों में उसे मना किया गया तो चूंकि मैं सिर्फ उसी को देख रही थी, वो बच्ची थोड़ी देर बाद ना रुआंसी हो गई। तो मैं उसके पास गई क्योंकि मैं जानती हूँ और मैं, आप लोगों को तो पता ही है मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, कोई बच्चा दुखी हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उसके पास गई, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा बेटा क्या हो गया, जबकि मैं देख सब रही थी समझ सब रही थी कि यहाँ चल क्या रहा है। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, उसने मतलब ऐसा लगा जैसे वो रोने के लिए तैयार बैठी थी, वो रो पड़ी एकदम से, आंटी मेरे साथ कोई खेलने नहीं आता। मैंने कहा सब तो आते हैं, कहाँ आया आंटी, मैं पिछले कितनी देर से सबके घर पे जाके बैल बजा रही हूँ कोई नहीं आया। मैंने कहा बेटा टाइम देखो कितना बज रहा है, तो उसने टाइम देखा, उसने बताया कि 3 बज रहा है। फिर मैंने कहा कि इस वक्त धूप देखो, तो ऊपर देखा उसने, मैंने कहा ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है सच में, मतलब ऐसा लगता है थोड़ी देर अगर खड़े हो जाओ बाहर तो जैसे जल रहे हैं। मैंने कहा इतनी धूप में आप कहाँ खेलोगे? बोले वो आंटी पेड़ के नीचे खेलूंगी। मैं कहा ये जो इतना धूप से एक्सपोजर होगा आपका उसका क्या, और कई बार लू जैसी भी स्थिति हो जाती है, गर्म हवा भी चलती है धूप में। तो वो रोने लगी, बस उसको एक ही जिद थी कि नहीं मुझे अगर मैं बुलाऊं तो तुरंत दोस्त आ जाने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो वो अच्छे दोस्त नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा बहुत बैलेंस्ड बिहेवियर रखना ही पड़ेगा, आपको टाइम देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि अगर किसी ने आपसे मना किया है तो क्यों मना किया है। कई बार बच्चों हम सोचते हैं ना कि हमारे किसी दोस्त ने या दोस्त की मम्मी ने या उसकी बड़ी दीदी ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया तो मैं देखती हूँ बच्चे तुरंत बोलते वो अच्छी नहीं है, उसकी दीदी अच्छी नहीं है, उसकी मम्मी मेरी बात नहीं मानती है। आजकल मैं ये वाले चर्चाएं बहुत सुन रही हूँ बच्चों से, तब मुझे लगता था कि मैं बाल सभा में बैठूंगी तो आपसे ज़रूर बैलेंस्ड बिहेवियर की बात करूंगी बच्चों, है ना। पता है इसके लिए आप लोग छोटी छोटी प्रैक्टिस करिए। मैं जो बाद में आपसे संकल्प के वक्त करवाती हूँ ना कि हम एक धीमा संगीत सुनेंगे, शांति से बैठेंगे, संकल्प लेंगे कि हम कुछ अच्छी चीज़ें करें, हम क्या करें और क्या ना करें, तो बच्चों सबसे पहले आप अपने अंदर धैर्य लाइए, सबसे पहले अधीर होना बंद कीजिए, है ना। थोड़ा शांति से 2 मिनट सोचना शुरू कीजिए। जो आपका कंसंट्रेशन टाइम है ना बच्चों वो बहुत कम होता जा रहा है। मैं देखती हूँ एक बच्चा एकदम बैठता है, फिर दूसरे काम में लग जाता है, दूसरे काम से तीसरे काम में लग जाता है, और जब तक उसको उसके मन की चीज़ ना दे दी जाए वो तब तक शोर करता है। ऐसे कितने बच्चों की कहानियाँ है मेरे पास बच्चों, पर मुझे पता है जो बच्चे मेरी बाल सभा सुनते हैं, जो मेरे साथ स्टूडियो में आते हैं और जो हर बार मुझे बहाने बहाने से कहीं कभी स्कूल जाती हूँ मैं तब बच्चे बताते हैं कि बाल सभा सुनकर दीदी हमने ये सीखा। तो बच्चों जो भी मुझे सुन रहा है ना, एक चीज़ ज़रूर सीख लेना, अधीर होना नहीं अच्छी बात नहीं है। हाँ, आपको किसी ने कुछ चीज़ के लिए मना किया है तो आप खुद भी आत्म मूल्यांकन कीजिए। बच्चों रुकिए, ठहरिए, सोचिए कि आपको इस काम के लिए मना क्यों किया गया। कोई ना कोई कारण जरूर होगा। वापस अपने विषय पर आ जाएं कि खेलना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज बहुत से बच्चे आपने देखा ही है कि किस तरीके से अभी जो बातें मैं बता रही हूँ, एक दूसरे से गुस्सा हो जाना, एक बहुत खास बात है, खेल भावना की विकास होता है खेल खेलने से। इसमें जो सबसे बड़ी सीख है ना, जब बच्चे टीम में खेलते हैं तो वो एक दूसरे के साथ सपोर्ट सिस्टम सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा बास्केटबॉल हो, या आपने देखा होगा कि फुटबॉल हो, या इवन वॉलीबॉल हो, ये जो आउटडोर गेम है और जो टीम गेम है, आपने देखा होगा कि सिर्फ जो गोल करता है या जो बॉल को बास्केट में डालता है वही इम्पॉर्टेंट नहीं है, वही चैंपियन नहीं है। जो बॉल को पीछे से लेते चला रहा है, लाता चला रहा है, नेट के पास तक जो बॉल को लाया है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है ना। तो कई बार हमें ये होता है ना, अरे ये काम मेरे कारण हुआ। कई बच्चे आपने देखा होगा जब बहुत अच्छे आप जाते होगे, खेलते होगे पार्क में, कहीं टीम में, स्कूल टीम की तरफ से आप खेल रहे होगे, या आपने देखा होगा स्कूल में भी कई बच्चों को ना हल्का सा, बहुत छोटा सा ही सही, पर अहंकार जैसा आ जाता है। अरे उस मैच में तो मैंने गोल मारा था, अरे उस वाले गेम में तो मैंने सिक्स मारा था। नहीं, पूरी टीम का सपोर्ट था आपके उस सिक्स के पीछे। पूरी टीम चाहती थी कि आप जब नेट तक बॉल पहुंच जाए तो आप उसको बास्केट में डाल दें, सब चाहते थे। समझ रहे हैं आप? तो बच्चों कभी भी ये मत सोचिएगा कि खेल सिर्फ खेल है। खेल में बहुत छोटी छोटी छोटी छोटी सी इतनी इतनी माइक्रो सीख छुपी हुई है कि आपको ना अपने दिमाग का लेंस लगाना पड़ेगा कि अरे इसमें तो ये भी छुपा था। जैसे अभी मैंने बताया ना कि टीम में जब आप रहते हो तब आप सपोर्ट सिस्टम सीखते हो। दूसरा, जिन बच्चों को लगता है कि हार गए तो झगड़ लिए, आपने कई जगह देखा होगा कि कई बच्चे एकदम से खेलते खेलते अगर हार रहे तो बैट पटक देते हैं या झल्ला जाते हैं या उनका टोन ऑफ वॉइस थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता फिर। तो बच्चों हमें वो चीज़ें भी सीखनी है और हमें वो चीज़ें भी सोचनी है। अब अगर हम बात करें कि जैसे अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही मुझे एक बच्चे के पापा बता रहे थे कि वो बहुत मोबाइल पे खेलता है, मतलब हर खेल मोबाइल पे खेल लेता है, और बच्चा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। अब कौन कौन से गेम खेलता है, तो आजकल तो क्रिकेट भी आप मोबाइल पे खेल सकते हो, आजकल तो आप फुटबॉल भी मोबाइल पे खेल सकते हो, आप गाड़ी की रेस मोबाइल पे लगाते रहते हो। लेकिन आप बच्चों बस मुझे ये बताओ कि हाथ में स्क्रॉल करते करते आप कितना भी खेल लेना, उससे क्या होगा? उससे आप बैठे बैठे अनफिट होते जाओगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपकी फूड क्रेविंग बढ़ती है ना। फिर आप सोचोगे कुछ पैकेट में आपको खाने को मिल जाए, फिर आप क्या करोगे, फिर आप कुछ खा लोगे, फिर आप टॉफी चॉकलेट मुंह में डाल लोगे, और फिर थोड़ी देर बाद आप थक जाओगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं खेल रहे हैं, खेल कोई और ही रहा है जो वो खेल बना रहा है मोबाइल के लिए, है ना, और आप उसमें बंधते जा रहे हो, ठीक है। और बच्चों फिर आप क्या करते हो, धीरे धीरे आप रियलाइज करना आप अकेले होते जाते हो, क्योंकि आप बाहर नहीं जा रहे, मोबाइल बात तो कर नहीं सकता आपसे, है ना। बस वो आपके लिए खूब सारी गाड़ियां दौड़ाता जा रहा है, आप स्क्रॉल करते जा रहे हो और आपको लग रहा है आप खेल रहे हो। और ये बात मैं कर रही हूँ अपने छोटे छोटे बच्चों की, 7 साल के 8 साल के 9 साल के ऐसे बच्चों की। तो बच्चों ये बात आपको बहुत समझना जरूरी है कि जब आप बहुत समय मोबाइल पर गेम खेलते हुए बिताओगे, आपका दोस्त कौन बचेगा? सोचो आप किसके कंधे पर हाथ रखोगे। अगर आप स्कूल जाते वक्त आपके दोस्तों से बात नहीं करोगे तो आप बात करने का तरीका ही भूल जाओगे। सच्ची मानिए, मैंने बहुत बच्चों में ये चीज देख रही हूँ कि वो समझ ही नहीं पाते कि क्या बात करें। हेलो, बस चुपचाप बैठ गए, ये नहीं पूछते आज तुमने क्या पढ़ा, कहानी पढ़ी क्या कोई, और आज तुम खेलने गए थे कौन सा खेल खेल रहे हो, तो क्या बताओगे आप? मैं मोबाइल पर गाड़ियों की रेस लगा रहा हूँ? क्या बताओगे आप? मैं मोबाइल पे वो खेल रहा हूँ, क्रिकेट? मैं मोबाइल पे ही बास्केटबॉल खेल रहा हूँ? तो ठीक है, आपके टीम प्लेयर्स कौन है? वो नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप अकेले रहते हो। जब आप स्क्रीन पे खेलते हो तब आप अकेले होते हो, और जब आप बाहर खेलते हो तो आपके साथ पूरी टीम होती है जो आपको एक संवेदनशील नागरिक बनाने में बहुत सपोर्ट करती है। क्योंकि जब कोई गिर जाता है तो आप उसका हाथ पकड़ के उठाते हो, जब किसी के चोट लग जाती है तो आप उसको पानी से साफ करते हो, उसके घर तक उसको लेके जाते हो। तो इससे आपको बिहेवियर में बहुत चेंजेस आने लगते हैं। आप अचानक से हेल्पिंग होने लगते हो, आप अचानक से बहुत मीठा बोलने लगते हो, आप अचानक से फ्रेंडली हो जाते हो, है ना? लेकिन ये सब कब आता है? जब आप घर के दरवाजे खोलते हो, अपने अकेलेपन से बाहर निकलते हो, जब आप लोगों के बीच उठते बैठते हो। नहीं तो क्या होता है? नहीं तो एक कमरा, आपकी स्क्रीन, आपका हाथ, और उससे आपका सारा खेल, खेलते जा रहे हो। तो बच्चों, मैं नहीं सुनूं अब कि कोई भी बच्चा स्क्रीन टाइम ज़्यादा ले रहा है। मैंने आज खेल क्यों ज़रूरी है इस विषय पे बात ही इसलिए रखी थी कि ये जो छुट्टियां चल रही हैं इसमें आप कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलोगे, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, जूडो हो, कराटे हो, कुछ भी हो, सेल्फ डिफेंस से लेकर गेम जो भी जुड़े हुए हैं वो आपको ज़रूर सीखने चाहिए, वो भी आपको काम आते हैं, है ना? वो खेल ज़रूर खेलिए, क्योंकि यही खेल बच्चों आपको न सिर्फ फिट करेंगे बल्कि आपको, मैं बार बार बोलती हूँ कि खेल से खेल भावना का विकास होता है, और खेल भावना से आप एक बहुत अच्छे बच्चों में बढ़ते जाते हो, तब्दील होते जाते हो। आपकी अचानक से सारी कमजोरियाँ आपको बाय बाय कहने लगती हैं, है ना? और अब ऐसी ही एक, आपको तो पता ही है एवरेस्ट की बातें हम लोग कर रहे हैं आजकल, तो अब हम फिर से आपको सुनाते हैं बचेंद्री पाल जी का आगे का हिस्सा कि उनका जो प्रथम अभियान था एवरेस्ट का वो कैसा रहा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिसमें वो हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। काठमांडू में कुछ दिन बिताने के पश्चात हम जीरी चले गए, जो वहां से 4-5 घंटे की यात्रा पर था। जब हमने नामचे बाजार तक की 8 दिन की यात्रा आराम से की, पर्वतों के स्वभाव के विपरीत हम रोज लगभग 1000 मीटर ऊपर नीचे चढ़ते उतरते, जिससे हम में मजबूती आई और ऊंचाइयों के वातावरण और जलवायु के अनुकूल स्वयं को ढालने में हमें मदद मिली। रास्ते में हमें हसमुख और मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ उस क्षेत्र के व्यक्ति विशेष शेरपा मिले। नामचे बाजार शेरपा लैंड की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरी क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को यहीं से निहारा था, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है, और मुझे ये नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का एक बड़ा फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज जैसा लग रहा था। मुझे बताया गया कि ये दृश्य शिखर की ऊपरी सतह से लगभग 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ का पत्थर उड़ता रहता था। बर्फ का ये ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। हम पर्वतीय लोग सदा से पर्वतों की पूजा करते आए हैं, अतः इस भय मिश्रित प्रेरणा स्प्रद दृश्य के प्रति मेरे ऊपर हावी भावना एक प्रकार से श्रद्धा भाव की थी। मैंने अपने हाथ जोड़े और सागर माथा की तरफ श्रद्धा से सिर झुकाया। एक दिन के बाद हम प्रसिद्ध थ्यांग बोके मठ तक पहुंचे, जहां मूर्तिमान थामा ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी सफलता तथा सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की। थ्यांग बोके न केवल सुंदर था बल्कि उसकी 4000 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई हमारी जलवायु अनुकूलता प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त थी। तो बच्चों, ये पर्वत पर जाने की, आप जो हिमालय तक पहुंचने की यात्रा सुन रहे हैं बचेंद्री पाल जी की, वो भी हमें हर पल यही संदेश देती है कि हमें जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, थोड़ी हिम्मत करना ज़रूरी है। तो बस एक बार जो आप सोच लें उसे पूरा करके दिखा दीजिए। और यहाँ जो बच्चे अभी, हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट टीम में हो, किसी स्टेट टीम में हो, या फिर हमारे यहाँ के कुछ बच्चे नेशनल भी खेल रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि जूनियर, सब जूनियर, ऐसे बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। और एक बार आप स्कूल का जो खेल विभाग है बच्चों, उसमें ज़रूर जाना। और जो आपके कोच, जो आपके स्पोर्ट्स टीचर, जो भी होंगे, उनसे मिलकर कहना कि आपको कोई ना कोई खेल ज्वाइन करना है। और जब आप कोई खेल खेलने लगोगे तो सच बोल रही हूँ, आपकी मनीषा दी को बहुत अच्छा लगेगा। और यही बाल सभा में मेरी आपसे बातें करने का जो पूरा पूरा मंतव्य है, वो यही है कि हम यहाँ जो बोलते हैं ना बच्चों स्टूडियो में बैठ के, बस उसका असर बच्चों पे पड़े, है ना। तो अगर आप में से दो बच्चों ने भी अपना स्क्रीन टाइम कम कर दिया, दो चार बच्चे अगर किसी खेल टीम में चले गए, तो सच मानिए मेरा तो पर्पस पूरा हो गया। और रेडियो आज़ाद हिंद भी यही चाहता है कि जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमको सुनते हैं ना, बस वो धीरे धीरे अच्छे मार्ग पर चलें, है ना। एक बात चलते चलते और बताऊंगी कि जो पारंपरिक खेल थे ना, जिनके बारे में आज मैंने चर्चा की थी आपसे, उसके बारे में अपनी मम्मी से, अपने पापा से पूछना कि आप लोग कौन से खेल खेलते थे जब छोटे थे, वो ज़रूर कुछ ना कुछ मज़ेदार कहानी किससे बताएंगे। और तो और एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ना, धीरे से अपनी दादी, दादा, नाना, नानी से भी पूछ लेना, दादू आप छोटे थे तो कौन सा खेल खेलते थे, देखना कितनी मज़ेदार कहानियाँ निकल के आएंगी और देखना कितने अच्छे अच्छे खेल आपको पता चलेंगे। और फिर आप उन पारंपरिक खेलों को खेलने की कोशिश करना, उससे क्या होगा, अच्छी चीज़ें अगली पीढ़ी तक ऐसे ही पहुँचेंगी। तो बच्चों चलने का वक्त आ गया है, आपको पता ही है हमारा आपसे जो अंतिम संवाद होता है वो होता है संकल्पों का। तो वो संवाद शुरू करते हैं एक धीमा संगीत और उसके बाद अपनी बातें। शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अब आज खुद से ये प्रॉमिस कीजिए कि आप कोई ना कोई खेल जरूर खेलेंगे। जो भी बच्चे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, वो अगर वीडियो गेम या स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, उसे कम करने का प्रयास जरूर करेंगे। एक इंडोर गेम, साथ ही साथ एक आउटडोर गेम में महारत हासिल करने का प्रयास करेंगे। अपनी कॉलोनी, अपने मोहल्ले में या जहां भी आप रहते हैं, आसपास बच्चों की एक टीम बनाएंगे और सप्ताह में कम से कम 3 दिन कोई ना कोई टीम गेम खेलेंगे, ताकि आप में खेल भावना का विकास हो। अब आंखें आप खोल सकते हैं और अब मुझे बाय बाय भी कह सकते हैं, क्योंकि बाल सभा का समय पूरा हो चुका है। बच्चों चलती हूँ, अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए और ये प्रॉमिस कीजिए, भले ही चाहें तो रेडियो के पास आ जाइए। अगर आप मुझे कार में सुन रहे हैं, मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो अपने मन ही मन खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने मम्मी पापा की बात मानेंगे और कोई ना कोई खेल में हिस्सा ज़रूर लेंगे। तो चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए, गर्मी से खुद को बचा कर रखिए, थोड़ा सा धूप में कम निकलिए, जैसे मैंने उस बच्चे की कहानी सुनाई थी, और शाम को खूब जम कर खेलिए। बाय बाय, और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।
3: बाल सभा।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय था खेलना क्यों ज़रूरी है। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और आपके साथ थी मैं आपकी दोस्त मनीषा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें, गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें, तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मैं हूँ शिवानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। हमारे टेक गुरु प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये प्रोग्राम विशेष रूप से उन सभी तकनीकी प्रेमियों के लिए तैयार किया गया है जो तकनीक की दुनिया में यानी टेक्नोलॉजी में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और तकनीक की दुनिया में एक सच्चे गुरु बनने की कोशिश करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स और फास्टिंग, यानी मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग कम करना, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एकता सरीन जी, जो कि एक प्रैक्टिसिंग काउंसलर हैं, जो बिहेवियर काउंसलिंग और स्पेशली टीनेज काउंसलिंग में सर्टिफाइड करियर काउंसलर है, प्रैक्टिसिंग विद NCERT। आपका बहुत बहुत स्वागत है एकता सरीन जी।
2: नमस्कार शिवानी जी।
1: जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आखिरकार ये जो डिजिटल डिटॉक्स है या मोबाइल फास्टिंग कह लीजिए, डिजिटल डिवाइसेस से फास्टिंग है, डिटॉक्स है, ये क्या है और इसके लाभ क्या है?
2: चलिए इसको एक बहुत साधारण लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं
1: जी।
2: सपोज शिवानी जी, आपको कल एक पार्टी में बुलाया गया था, आप एक पार्टी से होके आए और क्योंकि पार्टी में बहुत लावश फूड था और आपको लगा कि आपने ओवर ईटिंग कर लिया है। सो नेक्स्ट डे आप जो रेगुलर मॉर्निंग में आप उठते हो, एक अच्छा फील करते हो, आपको लगा बहुत आप हैवी फील कर रहे हो, तो आपने जो प्लान किया था कि आज शायद आप राजमा चावल खाने वाले हैं, तो आपने कहा कि आज मैं राजमा चावल ना खा के क्यों ना खिचड़ी खाऊं या थोड़ा सा सूप ले लूं, तो मेरे को लाइट फील करूंगी,
1: लाइट फील होगा। हाँ।
2: और मैं वैसा करती हूँ, राइट। सिमिलरली हम बोलते हैं कि जिसको डायबिटीज हो जाता है उसको एक्सेस शुगर के कारण बोला जाता है कि आपको डायबिटीज हो गया, तो शुगर कंट्रोल करने की जरूरत है आपको। सिमिलरली इज डिजिटल डिटॉक्स या मोबाइल फास्टिंग, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं। जैसे आप, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ चुका है हर एक का, अभी आप बच्चों को देखिए, बुजुर्गों को देखिए, एज अ प्रोफेशनल हम सभी, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ चुका है कि हम हर मिनट में देखते हैं कि हमारा क्या नोटिफिकेशन आया, हम अपना सोशल नेटवर्क जो हमारा अभी तक था वो हमारा कम हो गया है, हमारी सामाजिक गतिविधियां जिसमें हम अक्सर भाग लेते थे वो कम हो गई हैं। तो इट इज समथिंग लाइक अपने उस स्क्रीन टाइम को कम करना, कम हम अलग अलग वेज में कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज डिजिटल डिटॉक्स।
1: वैसे डिजिटल डिटॉक्स करने के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य उससे सुधर सकता है, तो क्या ये सच्ची बात है कि उससे हमारे स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है?
2: बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल शत प्रतिशत ये बात बोल सकती हूँ। सपोज कीजिए आप दिन में 6 घंटे 7 घंटे स्क्रीन टाइम आपका रहता है और आप उसको कोशिश कीजिए कि, मैं एकदम नहीं बोलूंगी आप 4 घंटे के लिए कम कर लीजिए, 1 घंटे से आप शुरू कीजिए, आप 1 घंटा उसे कम करने की कोशिश करते हैं, तो आप डेफिनेटली आप देखेंगे आपका नींद, जो आपका स्लीप पैटर्न है उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आता है। एक बार हमारा स्लीप पैटर्न इम्प्रूव होता है, जो आजकल बहुत सारे लोग इंसोम्निया के शिकार हैं, उससे आपका डेफिनेटली, अगर आपका स्क्रीन टाइम कम होगा, आप उसको क्रिएटिव वे में यूज करोगे या सिंपली रिलैक्स करोगे, उससे आप बहुत हद तक आपका जो मानसिक तनाव है, जो आपका मेंटल इलनेस है, वो डेफिनेटली कम होगी।
1: यानी कि बहुत हद तक जो मानसिक तनाव हमें हो रहा होता है वो बहुत कुछ डिवाइसेस की, इंटरनेट, मोबाइल्स एंड फोन्स की वजह से होता है। मतलब हम उत्सुक हो जाते हैं अपने नोटिफिकेशंस के लिए क्या आ रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत मानसिक तनाव भी हो सकता है, सोशल प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है। वैसे क्या मोबाइल फास्टिंग की अगर बात करें तो उसके दौरान कौन कौन सी गतिविधियां की जा सकती है जब हम मोबाइल फास्टिंग कर रहे हैं?
2: ये अभी मैंने अपने एक कुछ स्टूडेंट्स के साथ में इस प्लान को, इस पर्टिकुलर मोबाइल फास्टिंग को स्टार्ट किया है। उसमें मैंने उनको ये बिल्कुल नहीं बोला कि आप दिन भर के लिए मोबाइल मत यूज कीजिए। ये छुट्टियों से हमने अभी बहुत रिसेंटली ये स्टार्ट किया, दिस वॉज ऑन 1st of May वी स्टार्टेड, और ऑलरेडी हम इसको 20 डेज तक कम्प्लीट कर चुके हैं उनके साथ में। जब ये लोग मेरे चैम्बर में होते हैं, हम लोग उस पर वर्क करते हैं, जैसे वो मेरे चैम्बर में आते हैं वो मेरे पास 2 घंटे के लिए होते हैं, तो उस 2 घंटे में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम होता है ना, मैं ना वो मेरे बच्चे उन मोबाइल को टच करते हैं। 2 आज तक हमारा मोबाइल बिल्कुल उस बॉक्स में रहता है, कितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं हम उसको नहीं देखते, और ये हर रोज का पैटर्न हो चुका है। और मैं माई सेल्फ आई डू इट विद माई फैमिली, मेरा एक सैटरडे का दिन होता है जिस दिन मोबाइल को हम लोग टच नहीं करते हैं, दैट इज दैट डे हम प्लान करते हैं कि मोबाइल को टच नहीं करना। तो उस दिन हम क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं ऐसी जगह पर चले जाएं जहां नेटवर्क भी नहीं मिलता हमको, बट ऑब्वियस आपके पास चॉइस ही नहीं होती कुछ
1: चॉइस नहीं
2: तो इनिशियली हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। मैं एक दिन बिल्कुल किसी को नहीं बोलूंगी जो शुरुआत में कर रहा है, आप कोशिश कीजिए कि आप एक घंटा दो घंटा तीन घंटे से शुरुआत करेंगे जहां आपको लगता है कि अभी कैन बी अ फैमिली टाइम। सपोज हम एक फैमिली में बैठे हुए हैं शिवानी, तो हम भी ऐसा बात कर सकते हैं क्योंकि आज डिनर टाइम है, हम लोग इस टाइम पे मोबाइल लेके नहीं बैठेंगे। एक मोबाइल बॉक्स रख दिया, उसमें मोबाइल को रख दिया गया और हम उस टाइम पे नॉर्मल रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज डिस्कस कर सकते हैं कि आज मम्मा आपने क्या किया, मम्मा आपका दिन कैसा निकला, डैडी आपके ऑफिस में क्या क्या हुआ, बच्चे अपना क्योंकि वेकेशन चल रही है, बच्चे घर में हैं, उनके साथ कैरम हो सकता है, उनके साथ कुछ बुक रीडिंग एक्टिविटी हो सकती है, कुछ स्टोरी टेलिंग, अगर मेरे दादा दादी हैं तो हम कुछ स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं क्योंकि आजकल मैंने देखा इवन बुजुर्ग भी हर टाइम मोबाइल को लेके बैठे होते हैं, तो उनके साथ भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उनसे हम कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ ऐसे गेम्स, कुछ ऐसे खेल जो उनके जमाने में होते थे हम वो चीज भी उनसे सीख सकते हैं, तो एज अ फैमिली वो खेला जा सकता है।
1: आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि स्पेशली डिनर के टाइम पे, ब्रेकफास्ट या जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, तब अगर हम डिजिटल डिटॉक्स पूरी तरीके से करें, ना कि सिर्फ हम मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल ना करें बल्कि टेलीविजन का भी इस्तेमाल ना करें, एक दूसरे से बातें करें, दिनचर्या के बारे में पूछे, तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे डिजिटल डिटॉक्स हो जाएगा और एक दूसरे के बारे में जो जानकारी हमें नहीं पता है वो मिल जाएगी हम लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है। एकता सरीन जी, अब मुझे आप ये बताइए कि क्या चुनौतियां हो सकती है डिजिटल डिटॉक्स, अगर हम लैपटॉप्स यूज नहीं कर रहे, मोबाइल फोन्स यूज नहीं कर रहे, तो उसकी कोई चुनौतियां तो होंगी।
2: डेफिनेटली चैलेंजेस हर चीज में आते हैं, फॉर श्योर आते हैं। इनिशियली बहुत ज्यादा आपको डिप्रेशन जैसी चीजों की, आप अपने यूज टू उस चीज को देखने के लिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम हमारा इतना बड़ा हुआ है। आप देखोगे किसी भी रेस्टोरेंट में आप बैठते हो या किसी भी पार्टी में आप जाते हो, हर कोई अपने मोबाइल के साथ बैठा होता है। आप कोई रेल यात्रा कर रहे हो, आपको पुराना टाइम याद होगा कि आपस में पैसेंजर्स डिस्कस करते थे, आजकल हर कोई अपने मोबाइल के साथ में होता है। आप वो साइड सीन जो साइड में दिख रहे होते थे वो आप मिस कर जाते हो कि आसपास में क्या हो रहा है, कौन सा सीन था, कोई वाटरफॉल्स आए, कोई फील्ड्स आए। बच्चों को पता नहीं होता कि आजकल आपका ट्रैक्टर्स का यूज कैसे हो रहा होता है फील्ड्स में, उनको स्पेशली लेके जाना पड़ता है गांव में दिखाने के लिए, या पॉटर्स व्हील किस तरह से यूज होते हैं। तो ये सब चीजें बच्चे आराम से देख सकते हैं ड्यूरिंग रोड जर्नीज, ट्रेन जर्नीज। इवन मैं बोलूंगी जब हम रोड जर्नी पे भी साथ साथ हैं, उस टाइम पे भी हम पर्टिकुलरली डिजिटल डिटॉक्स रख सकते हैं कि उस टाइम पे हम यूज ना करें और शेयर करते हुए जाएं स्टोरीज, क्या हमारे आसपास में हो रहा है, क्या हम आपस में शेयर कर सकते हैं, क्या हम आसपास के लोगों को देख रहे हैं, लेट्स डिस्क्राइब थिंग्स अराउंड। कुछ पेड़ों के बारे में बच्चों को नहीं पता होता, उसके बारे में उनको बताया जा सकता है, किस तरह की चीजें, किस तरह से आपका वाटर फ्लो है आसपास के जगहों पे, क्या आपका वाटर इनटेक चल रहा है उस एरिया में, हम हर चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो जीके भी बच्चे का बढ़ता है और हम मोबाइल से भी अपने आप को दूर करते हैं। और जहां तक चैलेंजेस की बात होती है, अगर हम उस चीज में अपने आप को कंटिन्यू रखेंगे उस डिस्कशन में, तो बच्चे का ध्यान मोबाइल से दूर हटेगा, ग्रेजुअली हम भी एज अ एडल्ट उससे दूर हो पाएंगे।
1: जैसे एडल्ट्स की आपने बात की है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी जिन्होंने ये कहा था कि हम भी डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, और स्पेशली जब हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं या इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं, तब हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास मोबाइल फोन ना हो, क्योंकि कुछ लोगों की आदत ऐसी हो जाती है कि वो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं, तो वो वॉक भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, साथ साथ में ये चीजें भी हो रही है, डिवाइस उनके साथ है, तो डिजिटल डिटॉक्स तो हो नहीं रहा है। ऐसे आपने बताया कि सीनरी हम मिस कर रहे होते हैं जब हम ट्रेन में जा रहे हैं, आपस में बातचीत नहीं हो रही, सब लोग अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, तो ये जो डिजिटल डिटॉक्स अगर ये हम करें सही मायने में, तो क्या उससे नींद में भी सुधार आ सकता है?
2: बिल्कुल, इंसोम्निया एक बहुत, एज ए काउंसलर मैं रेगुलरली ये केसेस देख रही हूँ। बच्चे जो देखिए, आप सोचिए 3-3 बजे तक बच्चा अगर जगा हुआ है, और सुबह तो उसका स्कूल टाइम 7 o'clock, बस का रिपोर्टिंग टाइम होता है, या इवन स्कूल पहुंचने का भी 7:30 बच्चों को पहुंचना होता है, इवन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को भी 8-7 के आसपास में उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर बच्चा देर रात तक सोता है और मोबाइल के पास में रहता है, तो डेफिनेटली उसकी नींद पर फर्क पड़ता है। और आपने देखा होगा जो ब्लू लाइट मोबाइल से आपको मिलती है, बी द स्क्रीन टाइम, तो वो डेफिनेटली, चाहे वो टेलीविजन है और बच्चा अंधेरे में स्पेशली जब उसका यूज करता है, फॉर श्योर उसकी आई साइट पे भी फर्क पड़ता है। ना केवल ये, आपने देखा होगा कि मेरे पास तो इस तरह के केसेस बहुत सारे आए हुए हैं, हार्ट डिजीजेस, शुगर, डायबिटीज, इसके कारण बहुत बढ़िया बच्चे, बिकॉज आपकी फिजिकल एक्टिविटीज पे फर्क पड़ा है। आप वॉक करने नहीं जा रहे हो, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज पहले होती थी वो आप नहीं कर रहे हो, आप मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे बैठे हुए हो, कभी आप छोटे स्क्रीन पे हो, बी एट ए मोबाइल स्क्रीन, और कभी आप टेलीविजन पे हो, या इवन अपनी रील्स बना रहे हो, उसमें भी आप स्क्रीन पे ही बैठे हुए हो। उसके कारण कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, नॉट जस्ट कि आपको नींद में प्रॉब्लम आती है, बट इवन आपको अदर डिजीज, आप छोटे छोटे बच्चों को आजकल डायबिटीज की शिकायतें आ रही हैं, हृदय रोग उनके बढ़ते जा रहे हैं, रीजन यही है कि उनका सिटिंग टाइम, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनकी सामाजिक गतिविधियां नियरली लीस्ट पे आ गई हैं। तो अगर हम ये बेस्ट टाइम है, वेकेशन एक बेस्ट टाइम है, मैं पेरेंट्स को भी, एजुकेटर्स को भी, मेंटोर्स को भी, सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कनेक्ट कीजिए अपने आप को। जो भी कॉलोनीज हैं, पार्क्स हैं, वहाँ पर बच्चे इकट्ठा हो, उनसे कुछ भी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं विच कैन बी अ लेसन फॉर एवरी फैमिली मेंबर, नॉट जस्ट द चिल्ड्रन। पेरेंट्स अपने आप में रोल मॉडल होते हैं बच्चे के लिए, तो अगर पेरेंट्स करेंगे उनको देख के, बच्चा ऑटोमेटिकली वो पिकअप करता है।
1: एकता जी, तो फिर ये सवाल उठता है कि मना कैसे करें हम बच्चों को, कि क्या हम एकदम से उनको डांट दें कि नहीं आप डिजिटल डिवाइसेस को नहीं छुएंगे, या थोड़ा सा अंतराल, थोड़ा टाइम लगेगा जहाँ पे वो समझ सकेंगे धीरे धीरे, और क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है? मतलब अगर हमने अभी मना किया बच्चे को कि नहीं आप मोबाइल फोन नहीं छुएंगे, आप ये प्रोग्राम टीवी पे नहीं देखेंगे, तो रिप्लेसमेंट्स क्या हो सकती हैं? क्या वो एज ग्रुप के हिसाब से है या रिप्लेसमेंट्स आसान है बच्चों के लिए?
2: आई थिंक बहुत सारी रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। आप वो समय याद कीजिए जब मोबाइल नहीं थे, जब हम लोग ग्रो कर रहे थे, आप याद कीजिए कि उस समय पे मोबाइल नहीं थे, तो ये तो था नहीं कि उस टाइम पे आपकी ग्रोइंग अप में कुछ फर्क आया था, क्योंकि ये बच्चा मिलेनियल बच्चा है, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। जब वो बच्चा बॉर्न होता है उसको आसपास स्क्रीन्स ही दिखाई दिए हैं, दे आर अ डिजिटल चाइल्ड, लेकिन उनको हमें उसे समझाना है, उस लेवल पे पहुंचना है। कभी कभी हमें प्यार से बताना होता है, कभी कभी स्ट्रिक्ट होना होता है, और कभी कभी प्लेवे मेथड यूज करना होता है, लेकिन यू शुड नॉट बी रूड विद देम, ट्राई टू बी लिटिल सॉफ्ट, और करके दीजिए। जब आप खुद करोगे बट ऑब्वियसली बच्चा करेगा। मुझे याद आता है एक जर्नी, जब मैं दिल्ली से भोपाल ट्रेवल कर रही थी, उससे मेरा बेटा वॉज नियरली 6-7 ईयर्स का रहा होगा, तो मुझे बुक का बहुत शौक है, मैं रीडिंग बहुत करती हूँ, तो मेरे पास, मैं अपना एक नॉर्मल रीडिंग कर रही थी उस टाइम, और बेटे को क्योंकि कॉमिक्स का बहुत शौक था, उसने कॉमिक हाथ में लिया हुआ था, आसपास के बच्चे मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे, तो मुझे किसी ने पूछा कि मैम ये बेटा बहुत देर से बैठा हुआ है, उसे पढ़ ही रहा है वो, तो मैंने बोला वो पढ़ भी रहा है और साथ में उसकी मस्ती भी चल रही है। वो आपने देखा होगा उसने उसी कॉमिक बुक में कुछ कुछ गेम्स भी होते हैं, जहाँ पे आपको गेम्स साथ साथ में आप कर रहे होते हो, तो वो भी आप एक्टिविटीज भी आप साथ में कर रहे हो, उसके हाथ में पेंसिल बराबर चल रही थी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं, बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं जो हम खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड जिसमें हर फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हो सकता है, लूडो है, इवन आजकल चेस हम खेल सकते हैं, इवन क्रिकेट एज अ फैमिली गेम किया जा सकता है, जहाँ पे बच्चे को बोला जाए क्योंकि आप कमेंट्री करो आज, तो आप उसको बड़ा मजा आएगा, उसको एंजॉय करेगा वो चीज, जिसमें भी बच्चे को इंटरेस्ट है वो चीज हम करवा सकते हैं। बच्चे के साथ आप साइकिलिंग ट्रिप पे जा सकते हो, लेट्स गो साइकिलिंग टुगेदर, तो आज फैमिली साइकिलिंग डे है, या कुछ कॉम्पिटिशन हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ओके आज फैमिली टाइम है, तो कॉलोनी के 5-6 फैमिली से मिलकर एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया, आज हम स्विमिंग पूल में साथ में जा रहे हैं, एंड वी हैव अ लिटिल लिटिल फन टाइम, आज स्विमिंग होगा एंड वी हैव अ लिटिल फन टाइम। Hide and seek can be a great game. धूप ज्यादा है, गर्मी है, हम अंदर डार्क रूम खेल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो की जा सकती हैं और उनके लेवल पे जाके की जा सकती हैं। कुछ हम जोक्स का राउंड, जैसे हम जोक्स, कुछ अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर कीजिए उनके साथ में, तो बहुत सारी चीजें हैं। एक मैं बच्चों के साथ स्पिना यान करती हूँ, स्पिना यान इज लाइक आई स्टार्ट अ स्टोरी एंड दे हैव टू कंटिन्यू इट। सो शिवानी, आज टुडे वाज अ वेरी ग्रेट डे, यू नो व्हाट हैपेंड, आई मेट अ फिल्म स्टार, you know, so what happened after that, Shivani will ask me that,
1: okay.
2: And then we just continue with the storyline in our own manner. Similarly, I'll ask you, Shivani, so aaj morning mein aapke sath kya kya hua, Shivani? So just tell me something about yourself. So it's a spina yarn where we give a opening line and they continue with their own yarns, and uski koi right or wrong nahi hota, aur bachche ko we can give chocolates and anything, any prizes, small prizes can be given to them.
1: ओके ये शायद वही गेम है जिसमें हम कुछ नेगेटिव नहीं कहते, ना नहीं कहते, हम कंटिन्यू कर रहे होते स्टोरी को,
2: हम स्टोरी को कंटिन्यू करते जाते हैं, व्हाट एवर कम्स टू योर माइंड। अगर 10 मेंबर्स हैं तो एवरीबॉडी कैन गिव अ टर्न, हम एक दूसरे को टर्न्स दे सकते हैं, वी कैन इवन हैव फायरलेस कुकिंग टुगेदर, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर कुछ बनाते हैं, तो क्या बनाएंगे आज, तो लेट अ चाइल्ड मेक अ लेमनेड समथिंग, सैंडविचेस कैन बी मेड, भेल पूरी कैन बी अ ग्रेट आइडिया। मतलब उस दिन बच्चा किचन में और आप उसको बिल्कुल कुछ ना नहीं बोलने वाले, वो कितना भी मेसी हो जाए, प्लेटफॉर्म को कितना भी गंदा कर दे, बट यू जस्ट एंजॉय कि बच्चा कुछ कर रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड चिल्ड्रन एंजॉय दैट वेरी मच।
1: आपने एकता जी बहुत सारी रिप्लेसमेंट्स बताए जिसका ध्यान हम रखेंगे और की जा सकती है सारी रिप्लेसमेंट्स, कुकिंग है, साइकिलिंग है, गेम्स है, बोर्ड गेम्स है, बहुत कुछ किया जा सकता है बच्चों के साथ। हम जब बच्चों को मना करते हैं कि नहीं आप जो है अभी डिजिटल डिटॉक्स में हैं, आप मोबाइल नहीं इस्तेमाल करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, लैपटॉप नहीं यूज करेंगे, कहेंगे आप किताब पढ़िए, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है किताब की ओर, क्योंकि हमारा भी समय ऐसा ही रहा है जहाँ पे हम किताबों के बारे में किताबों को ज्यादा पढ़ा करते थे और किताबों से वाबस्ता होते थे ज्यादातर। तो जब हम बच्चों को बोलते किताब पढ़ने के लिए, ये कितनी सही बात है, कितना मतलब किताब इतनी जरूरी क्यों है?
2: देखिए, किताबों से कनेक्ट करना, मुझे लगता है हर घर का एक अनसेट रूल होना बहुत जरूरी है। हम हर जगह रूल्स लिखना जरूरी नहीं होता, अनसेट रूल हो जाना चाहिए एक जगह पे कि ओके आज एक स्टोरी बुक, मैं तो बोलूंगी स्टोरी बुक भी क्यों, स्टोरी से शुरुआत करते हैं, छोटी छोटी कहानियां कि ओके आज आपने क्या पढ़ा। तो हमारे ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं जिससे हम बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं, और आज के टाइम में अपने ग्रंथों से बच्चों को जोड़ना बहुत जरूरी है
1: जी,
2: अपने कल्चर से कनेक्ट करना, क्योंकि आज तो बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज भी बात करते हैं भगवद गीता
1: के
2: तो बच्चों को कैसे कनेक्ट करें। एंड आई थिंक भगवदगीता अपने आप में एक मैनुअल है, इट्स नोन एज अ लाइफ मैनुअल इन एवरीवन्स लाइफ, रामायण इज अ मैनुअल। सो अगर हम बच्चों को कनेक्ट करते हैं और उनकी स्टोरीज उनको कनेक्ट करते हैं, स्टोरी से कनेक्ट करते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम लेके आते हैं, एंड एट अ टाइम हम उनको बोलते हैं आज अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप ऐसा होते तो आप क्या करते, तो बच्चे आजकल के बच्चे क्वेश्चनिंग वाले होते हैं, दे विल आस्क यू रीजन। तो आपके पास रीजन पहले होना बहुत जरूरी है अगर आप बच्चे को किसी भी किताब से जोड़ रहे हो। ओके, रस्किन बॉन्ड, सो क्यों रस्किन बॉन्ड, ठीक है, रबिन्द्रनाथ टैगोर, तो क्यों रबिन्द्रनाथ टैगोर, रामायण, तो क्यों रामायण। तो बच्चे को जब हम रीजन देते हैं, ये बच्चा जो प्रेजेंट जनरेशन है वो रीजन मानती है, तो अगर आप रीजन देके चलोगे और सॉफ्टली उसको एक्सप्लेन करोगे तो बच्चा बहुत इजीली कनेक्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, वापस आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। आप खुद मोबाइल लेके बैठे हो और बच्चों को बोला कि बेटा तू पढ़ाई कर ले,
1: तू नहीं हो पाएगा,
2: तू रीडिंग कर ले, तू कॉमिक पढ़ ले, बच्चा नहीं पढ़ेगा। आप बी अ रोल मॉडल, बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट, ओके उस समय पापा घर पे आए, 6 बजे का टाइम है, चाय सर्व हो रही है, बच्चे के लिए आपने दूध सर्व किया है, लेट्स हैव अ रीडिंग टाइम, इट्स अ कार्पेट रीडिंग। आप टेबल पे भी मत बच्चे को बैठिए, कार्पेट पर बिठा दीजिए, लेट अ चाइल्ड स्लेप डाउन, रिलैक्स होके कंफर्टेबल चेयर पे हो जाओ, बच्चा रीड करे जो बुक उसको चाहिए वो बुक पढ़े, उसको एक चॉइसेस दे दीजिए। आजकल तो इवन आपकी कार्पेट बुक्स अवेलेबल है, बच्चे को रख लीजिए बुक्स, इवन आजकल वॉल्यूम बुक्स अवेलेबल है, द वॉइस राइट प्रोनाउंसिएशन भी बच्चे को समझ में आएगा। और उस टाइम पे बच्चे को टोकिए मत, अगर बच्चा कुछ गलत भी रीड कर रहा है, डोंट से योर रीडिंग रॉन्ग, दिस इज रीडिंग फॉर प्लेजर, बच्चा उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने वाला, लेट द चाइल्ड एंजॉय रीडिंग। अगर बच्चा एंजॉय करना शुरू करेगा तो उसको हर तरह की रीडिंग में मजा आएगा,
1: और यही बात एडल्ट्स के लिए भी लागू है एकदम।
2: बिल्कुल
1: जी हाँ। जहाँ तक हम इस फास्टिंग की बात करते हैं, मोबाइल फास्टिंग, डिजिटल डिटॉक्स, ये कितनी अवधि के लिए होना चाहिए, मतलब एक दिन, एक सप्ताह, उसके बाद क्या, मतलब कब तक हम उनको बोले, या कि दिन में हम बांध ले कि नहीं इतना समय आप किताबें पढ़ेंगे या आप इंटरनेट पे रहेंगे, मतलब हमारा किस तरीके से हम एक टाइम टेबल सेट करें जिसके जरिए हम बच्चों को बता पाए कि उनके लिए क्या सही है, कैसे डिजिटल डिटॉक्स करना है, ताकि वो लोग भी इस चीज़ से ऊबे नहीं, बोर नहीं हो।
2: यहाँ मैं बोलूंगी कि हम उनका टाइम टेबल ना बनाएं, उनसे उनका टाइम टेबल बनवाएं।
1: ओके
2: हम उनको डिक्टेट करने वाले स्टेज में बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वो लोग काफी लॉन्ग ड्यूरेशन, मैं बोलूंगी कोविड टाइम से उसको यूज कर रहे हैं, सो अब हम उस कंडीशन से बाहर आ चुके हैं कि हम उनको डिक्टेट करें अब वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, है ना। हम उनको इन ऑपोजिट वे हम बात कर सकते हैं कि ओके मैं अपने लिए ऐसा टाइम टेबल बना रही हूँ बेटा, आपको अपने लिए ऐसा टाइम टेबल बनाना है। आई एम प्लानिंग कि मैं 6 से 7 शाम को मोबाइल नहीं देखूंगी, आपके हिसाब से कौन सा टाइम आपके लिए ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 आवर, 1 घंटा हम मोबाइल नहीं देखेंगे या 1 घंटा हम डिजिटल डिटॉक्स करेंगे। इट्स कैन स्टार्ट विद 1 आवर और ग्रेजुअली हम उसको लंबा टाइम लेके जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं उस 1 घंटे में क्या कर सकता हूँ, फिर मम्मा वो पूछेगा आपसे, सो आप वहां पे चॉइसेस दे सकते हो, उससे बुलवाइए। उस टाइम पे आप फुटबॉल खेलना पसंद करोगे क्या, या उस टाइम क्या हम फैमिली डिस्कशन करें क्या, या उस टाइम आप स्विमिंग पूल जाओगे क्या बेटा, और अगर बच्चे का इंटरेस्ट डांसिंग में तो व्हाई नॉट आप डांसिंग भी जा सकते हो। सो लेट द चाइल्ड डिसाइड नाउ, जब हम बच्चे को मौका देते हैं तो वो आपकी बात सुनता है
1: जी।
2: अगर आप उसको डिक्टेट करते हो तो बच्चे को लगता है कि वो थोड़े समय के लिए है और वो उसको भूल जाएगा। द आइडिया इज लेट द चाइल्ड डिसाइड, तो आप उसको बोल सकते हो कि ओके जो आपने प्लान किया था वो वर्क कर रहा है क्या। 1 हफ्ते बाद हम एक क्वेरी कर सकते हैं, बेटा आप मुझे चेक करना मेरा, अगर मैं 6 से 7 मैं कुछ और मोबाइल लेके बैठ रही हूँ तो प्लीज मुझे बताना कि मैंने मोबाइल उठाया था उस टाइम पे। सो जस्ट चेक, यू विल टेल मी एंड आई विल टेल यू, लेट्स मॉनिटर ईच अदर।
1: ओके ओके, ये बहुत ही अच्छा प्लान है जहाँ पे हम बच्चों से खुद पूछ सकते हैं कि बताइए आपका प्लान क्या है, उसी मुताबिक हम भी आपसे बात करेंगे। और देखा गया है कि आजकल जैसे सामाजिक संबंध है, सोशलाइजिंग की अगर बात करें, तो लोगों को लगता है बच्चों को स्पेशली कि हम तो सबसे मिल रहे हैं, ये मेरा फेसबुक फ्रेंड है, ये मेरा इंस्टाग्राम फ्रेंड है, और हम इसे फॉलो कर रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, तो उनको लगता है यही सामाजिक संबंध है। तो अगर हम डिजिटल डिटॉक्स भी करते तो उससे हमारे सामाजिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, किस तरीके से ठीक हो सकते हैं?
2: इसको भी हम इस तरह से ले सकते हैं, अगर हम फैमिली गैदरिंग्स में होते हैं तो बच्चे, क्योंकि बच्चों को प्रायोरिटी अभी क्या लगता है कि उनको मोबाइल देखना, उनका स्क्रीन टाइम इतना बड़ा हुआ है, सो लेट्स मेक इट एज अ फैमिली डिसीजन कि इस टाइम पे हम चार फैमिलीज आपस में मिल रहे हैं तो उस समय पे हम लोग मोबाइल कैरी नहीं करेंगे।
1: okay.
2: उस टाइम पे हम कुछ फैमिली गेम्स खेल सकते हैं, उस टाइम पे हम इंटरेक्शन कर सकते हैं एक दूसरे से। अगर हम इंटरेक्शन करेंगे, और पॉइंट आउट मत कीजिए बच्चा क्यों घबराता है सामाजिक गतिविधि से, कि उसको लगता है उससे पूछा जाएगा
1: अच्छा,
2: कि आपके मार्क्स कैसे आए बेटा,
1: right.
2: इस तरह की चीजें भी हम प्लान कर सकते हैं कि अच्छा आपकी तो हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ी है, तो बच्चा नेगेटिव चीजों से भागना है, उसको क्यों अच्छा लगता है फेसबुक फ्रेंड्स, क्यों अच्छे लगते हैं डिजिटल फ्रेंड्स, कि वहां पे उससे क्वेश्चनिंग नहीं होती,
1: होती है।
2: वो जो कर रहा होता है उसको लाइक्स मिलते हैं, तो बेसिकली वो लाइक्स का भूखा है, उसको लाइक्स दीजिए, आज यू लुकिंग वेरी हैंडसम, हाउ ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग, लाइक योर ड्रेस इज एक्सट्रीमली वंडरफुल, सो उसको आप अगर लाइक्स देते रहोगे, लाइव लाइक्स मिलेंगे, तो वो क्यों डिजिटल की तरफ जाएगा?
1: सही बात।
2: सो लेट्स मेक इट अ पॉइंट कि फैमिली में तारीफ कीजिए, किसी और का इंतजार मत कीजिए कोई आपकी तारीफ कर रहा है, आप एक दूसरे की तारीफ कीजिए, और बच्चा वो सीखेगा घर में ही सीखेगा कि हमको एक दूसरे की तारीफ करना इम्पोर्टेंट है, दैट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। हम क्यों देखते हैं हमको कितने लाइक्स मिले, क्योंकि हमें घर में तारीफ नहीं मिल रही।
1: सही बात।
2: ये मैं अडल्ट से भी बात करती हूँ, हस्बैंड वाइफ जब मेरे पास एज अ मैरिटल काउंसलिंग आते हैं तो मैं बोलती हूँ एक दूसरे की तारीफ, आपने एक दूसरे को आई लव यू कब बोला था लास्ट? हैव यू गिवन ईच अदर अ हग आफ्टर लॉन्ग टाइम?

0: पे या किताबें डाउनलोड करके पढ़ें, तो ये ठीक है कि उससे भी कुछ असर पड़ता है आंखों पे अगर मोबाइल पे ही किताबें पढ़ते रहें बच्चे?
1: देखिए, मोबाइल पे किताबें पढ़ने से बेटर है पीडीएफ वाला ऑप्शन, है ना, क्योंकि मोबाइल पे अभी किंडल पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। इवन मैं आपसे शेयर कर लूंगी कुछ कुछ इस तरह के साइट्स भी, जो हम आराम से बच्चा इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो अवेलेबल हैं, कुछ लाइब्रेरीज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। देखिए, मैं फिर भी चाहूंगी कि फिजिकल बुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कनेक्टेड रहते हो किसी फिजिकल बुक से, अगर आप खुद पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली, और हम बिल्कुल बच्चों को बांधे नहीं कि बच्चा यही पढ़ना है। अगर बच्चे को स्पोर्ट्स पे इंटरेस्ट है, बहुत सारी स्पोर्ट्स पे बुक्स है। अगर आपका बच्चे का इंटरेस्ट इंसाइक्लोपीडियाज पे है, बच्चा उसको कनेक्ट करे अपने आप को। अगर उसको साइंस पे इंटरेस्ट है, बच्चा साइंस रिलेटेड बुक्स पढ़ सकता है। अगर फिक्शन में इंटरेस्ट है, तो बच्चा फिक्शन रिलेटेड बुक्स पढ़ सकता है। तो उसकी बेसिकली स्किल्स को हमें बढ़ाना है कि वो स्किल्स पे अपने आप को फोकस करे, कि हो सकता है उसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाए पढ़ने के बाद, उसकी विकैबुलरी बहुत एनरिच हो जाए। तो अगर वो बढ़ती है, आप उसको ये भी साथ में बोलिए कि ओके, आपने अगर ये एक पर्टिकुलर स्टोरी पढ़ी है, आपने ये तीन वर्ड्स उसमें से देखे हैं, तो हम उसको कैसे और अपनी उस विकैबुलरी को आप कैसे यूज कर सकते हो अपने डे टू डे लैंग्वेज में, इवन दैट विल हेल्प यू आउट एनरिच योर विकैबुलरी। तो तारीफ कीजिए, ओके, आज आपने इस वर्ड का यूज किया, दैट्स वेरी नाइस, ये वर्ड आपने कौन सी बुक में पढ़ा था, तो बच्चा आपको बताएगा। इवन आप भी कुछ नया वर्ड यूज कर सकते हो और आपको भी अंदाजा रहेगा।
0: ये बहुत अच्छी बात कही आपने, इससे एक खेल जैसा माहौल भी शुरू हो जाता है, जहाँ पे हम बच्चों को उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं, जो नए वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में पूछते हैं, हमारा भी ज्ञान बढ़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों का ही ज्ञान बढ़ता है। अच्छा, क्या बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है जब वो लोग डिजिटल डिटॉक्स करते हैं? क्या उनके ध्यान केंद्रित करने में भी सुधार होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि अगर बच्चा कॉन्स्टेंटली स्क्रीन टाइम देख रहा है, तो उसका नोटिफिकेशंस थ्रू आउट वो देखता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली उसका बढ़ेगा, क्योंकि वो उस चीज से हटके वो कुछ और नया कर रहा है, और उसका बराबर ध्यान से स्क्रीन में नहीं है, वो रीडिंग कर रहा है, वो फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा है, वो सोशल इंटरेक्शंस कर रहा है, उससे डेफिनेटली उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता ही बढ़ता है। सो बच्चे को अगर हम उस एक घंटे के लिए सिंपली मेडिटेशन के लिए भी बोलते हैं, या ठीक है आप बेटा आंखें बंद करके एक जगह पे बैठ जाओ, या आप सिर्फ एक जगह पे सिर्फ सिटिंग दे दो, क्योंकि बच्चों को आजकल एक जगह पे बैठना भी अपने आप में टास्क होता है। तो ठीक है, आज हम एक जगह पे बैठते हैं, नॉट मूव फ्रॉम देयर, सो लेट्स सिट। यहाँ हम उनको फोकस करते हैं कि कौन आंखें पहले ब्लिंक नहीं करेगा, उससे भी वो गेम का गेम हो जाता है कि ठीक है हम लोग आपस में गेम खेलते हैं जिसमें आंखें कौन पहले ब्लिंक नहीं करेगा, दैट इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज फॉर कॉन्सेंट्रेशन। सो उसमें भी हम, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते आ रहे हैं लेकिन हम भूलते जा रहे हैं उन चीजों को। तो डे बाय डे अगर हम बच्चे के साथ बैठेंगे और वो सब करेंगे, या एक पॉइंट लगा लीजिए आप वॉल पे और बच्चा उसको देखेगा, तो कैसे हम देख सकते हैं, तो वन बाय वन आप ट्राई कर सकते हो। पेंसिल एक सामने रखिए और पेंसिल को बच्चा मूव करे टूवर्ड्स राइट एंड टूवर्ड्स लेफ्ट, उसका आई मूवमेंट बढ़ेगा, उसमें उसका आई से कॉन्सेंट्रेशन, उसका मेंटल लेवल, पीस, दोनों में फर्क आएगा।
0: ओके, पीस की जहाँ आपने बात की वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखा गया है कि बच्चों में ज्यादा तनाव आ जाता है इस वजह से कि ज्यादा चीजें यूट्यूब पे देख रहे हैं, या बहुत ज्यादा कंटेंट बढ़ गया है, ओवरफ्लो ऑफ कंटेंट हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस कंटेंट को हम कैसे समाए, क्या करें इस कंटेंट का। तो जब हम डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं, क्या इसमें टेलीविजन भी आता है? कि वैसे तो आजकल बच्चे टेलीविजन पे रेगुलर प्रोग्राम्स नहीं देखते, यूट्यूब पे ही जो उनका कंटेंट होता है वही देखते हैं, एड्स को स्किप करके करते रहते हैं, प्रोग्राम्स देखते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हमें टेलीविजन का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कार्टून नेटवर्क्स देखना या ये चीज़ों पे भी हमें थोड़ा बहुत जो है लगाम लगानी पड़ेगी?
1: बिल्कुल, देखिए डिजिटल डिटॉक्स में जब बात आती है तो बिग स्क्रीन स्मॉल स्क्रीन दोनों वर्क करते हैं, लेकिन बिग स्क्रीन, जैसे कि आपने खुद बताया कि बिग स्क्रीन बच्चे को लिमिटेड टाइम के लिए ही चांस मिलता है, मोबाइल छोटा स्क्रीन उसके पास हमेशा ही रहता है, लेकिन डेफिनेटली स्क्रीन तो स्क्रीन ही है। अगर आप लाइट ऑफ करके बराबर टीवी भी देख रहे हो, आजकल तो बच्चे इवन कनेक्ट भी कर लेते हैं, कनेक्ट करके यूट्यूब भी आप टेलीविजन पे देख लेते हो, तो इवन ऑल दोस थिंग्स मैटर, स्क्रीन तो स्क्रीन ही है ना मैम, तो डेफिनेटली उसका मेंटल पीस, उसका मेंटल इलनेस, उसका कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली लैक करता है वहां पर। तो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ डिजिटल डिटॉक्स। अगर हमने प्लान किया है तो उस समय पे हम टेलीविजन भी नहीं देखेंगे।
0: ओके ओके, तो आज हमने बातें की इस बारे में एकता सरीन जी से, डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है, कैसे हम कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी आज हमें हासिल हुई और कितना जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी और जो डिजिटल मीडिया है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी से और बच्चों का और मन लगा रहेगा इन कामों में, फिजिकल एक्टिविटीज में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप रेडियो आजाद हिंद पर आई। तो ये है देश का चैनल देश के लिए, टेक गुरु प्रोग्राम हम आपके लिए लेते आएंगे जिसमें हम आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद एकता सरीन जी।
1: थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस स्पीकिंग टू यू शिवानी जी।
0: थैंक यू सो मच, नमस्कार।
1: नमस्कार।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। तुलकर्ष

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम इन दिनों इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के इतिहास को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसी प्रयास में चलते चलते हम उस मोड़ पर अब आ पहुंचे हैं जहां हम अपनी सेना के तीनों अंगों को एक परिपक्व, अनुभवी और आधुनिक उपकरणों से लैस, आत्मविश्वास से भरी हुई सेना के रूप में पाते हैं, उसे नए कलेवर में पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध जीत के बाद के वर्षों में भारतीय सेना की स्थिति की। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी देश की सेना का रोल केवल दुश्मन से युद्ध करने का ही नहीं होता, बल्कि देश की सेना हर दिन हर वक्त देश की शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भूमिका अदा करती रहती है और देश की सीमाओं पर 24 घंटे चाक चौबंद रहती है। श्रोताओं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, समय कोई भी हो, मौसम के तेवर कैसे भी हों, भारतीय सेना देश के हित को सर्वोपरि रखकर अपने कर्तव्यों में निरत रहती है। श्रोताओं, आज के इस कड़ी में हम देश की सीमाओं की सुरक्षा की ऐसी ही मिसाल पेश करने वाली एक शौर्य गाथा आपके लिए लेकर आए हैं। ये गाथा लिखी गई समुद्र से लगभग 20,000 फीट ऊंचे यानी दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन में। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए जानते हैं कि क्या है वो गौरव गाथा हमारे विषय विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से, जिन्होंने लगभग 20 सालों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और स्वयं सियाचिन का अनुभव भी रखते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर।
3: थैंक यू पूर्वा जी, एंजॉय श्रोताओं, आपने बहुत अच्छा समराइज किया
2: जी।
3: जो आर्म फोर्सेस होती हैं वो सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में नहीं कार्य करती हैं, बल्कि उसके अलावा भी जो है 24/7 365 डेज अ ईयर दे आर एक्टिव ऑन द बॉर्डर। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर एन नंबर ऑफ अदर ड्यूटीज आल्सो व्हिच दे परफॉर्म, लाइक असिस्टिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अदर एस्पेक्ट्स। एनीवे, आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने बताया सियाचिन ग्लेशियर, इंडीड इट इज द

0: वर्ड जो है मल्टी लैंग्वेज में मतलब फ्लावर्स के लिए यूज होता है, और चेन का मतलब होता है कि जो चीज बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, अबंडेंस में होती है
1: जी।
0: तो सियाचिन रेफर्स टू अ लैंड फुल ऑफ रोजेस।
1: क्या बात है, वहां पर तो एक भी नहीं होता होगा सर मेरे ख्याल से।
0: नहीं, समर्स में जब है काफी जगह है वहाँ पे जहाँ बहुत अच्छे फूल उगते हैं।
1: अच्छा, जी जी, घाटियों में
0: वहाँ पे है काफी जगह है जहाँ समर्स में ये फूल होते हैं, एक्चुअली होते हैं। ये जो जगह है सियाचिन जो है, इट इज लोकेटेड नदर मोस्ट एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, एंड काराकोरम रेंजेस जो है उसमें है। मैं उसको रेफरेंस के तौर पे बताऊं को, जैसे अगर हम लेह है लद्दाख में, तो लेह से अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं खारदुंगला पास से, उसको क्रॉस करने के बाद हम नुब्रा वैली जाते हैं, और उसके नॉर्थ में जो है जहाँ से नुब्रा रिवर शुरू होती है, दैट इज द प्लेस जहाँ ग्लेशियर जो है खत्म होता है, एंड वहां से आगे 76 किलोमीटर तक जो है ऊपर जाता है। एंड ये जो जगह है मतलब इट इज अ वेरी रगेड स्नो कवर्ड टेरेन, मतलब बहुत ज्यादा बर्फीला इलाका है जिसमें कि टेम्परेचर -50 तक जाता है, एंड माउंटेन हाइट्स उसमें जो है 20,000 से ऊपर है। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके वेस्ट में जो है एक रिच लाइन है जिसको सोल्टोरो रिच बोलते हैं। एक तरह से जो हमारी डिप्लॉयमेंट है जो है वो सोल्टोरो रिच के ऊपर है। और यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे अभी मैंने बोला कि बहुत ही मतलब ज्यादा सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन होती है तो फ्रीक्वेंटली वहाँ ब्लिजर्ड्स आते हैं, एवलांचेस रहते हैं, क्रेवासेस का खतरा रहता है, और इससे जो है मतलब ये टेम्परेचर जो है कंडीशंस और हाइट के कारण जो है एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो की एफिशिएंसी पे बहुत अफेक्ट करता है, और जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग होती है नॉर्मल जिसको हम समझते हैं एपेटाइट, सोना टाइम से, इवन मेंटल हेल्थ, इन सब के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो वर्किंग परफॉर्मिंग ड्यूटीज इन सच एनवायरनमेंट, इट्स अ ग्रेट ग्रेट चैलेंज, इट्स अ बिग चैलेंज। ये एक तरह से मतलब वो ऐसा इलाका है जहाँ पे कि पहुँच के हमने जो है अपनी पोस्ट बनाना और उसको गार्ड करना 24/7, इट्स अ मेजर चैलेंज, एंड विच हैज बीन प्रूव्ड बाय द आर्म फोर्सेस कि वी कैन एक्चुअली डू इट। अगर आप वहाँ कभी हेलीकॉप्टर्स को उड़ते हुए देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इस हाइट के ऊपर जो अपनी वो लिमिट है, उनकी जो लिमिट है उससे भी बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं
1: जी
0: है, क्योंकि वो हमारी लाइफ लाइन है, उनके सपोर्ट के बगैर हम मतलब वहाँ नहीं रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारी मतलब वहाँ पे बातें होती हैं। तो बिफोर वी प्रोसीड अहेड, लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ इट।
1: जी बिल्कुल सर, मेरा प्रश्न यही था कि आखिर इस युद्ध का क्या इतिहास है, ये क्यों हुआ, क्या कारण है?
0: ये जो डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर को लेके, ये शुरू हुआ था जो एंड पॉइंट है हमारा इसका LOC का
1: जी,
0: उसके इंटरप्रिटेशन को लेके।
1: अच्छा,
0: देखिए जो 47 जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था
1: जी,
0: उसके बाद अगर आपको याद हो हमने जिक्र किया था कि सीज फायर हुआ था, तो जो सीज फायर लाइन थी
1: जी,
0: वो शुरू हुई थी जम्मू के ऊपर से, एंड वहां से होते हुए पूरा एक पॉइंट पे जो कि काराकोरम रेंजेस में है
1: जी,
0: इसको हम मैप पे NJ 9842 बोलते हैं
1: जी,
0: बड़ा लोकप्रिय नाम है मतलब, तो वहां तक इसकी मार्किंग हुई थी। अब उस समय भी जो है इसके ऊपर का जो इलाका था और है आज भी, मतलब इट वाज अ वेरी रिमोट एरिया, रगेड, जैसे अभी हमने जिक्र किया उसके बारे में,
1: बिल्कुल निर्जन है।
0: हाँ, वहाँ पे ना कोई रहता था, ना अप्रोचेबल था, स्नो बाउंडेड था, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन थी। तो वहां तक मार्क करके इट वाज सेट की एंड देंस नॉर्थ टुवर्ड्स द ग्लेशियर, मतलब उसके आगे नॉर्थ की तरफ ग्लेशियर की तरफ ये लाइन जाएगी।
1: अच्छा,
0: ऐसा ये हुआ। अब 71 का जो वॉर हुआ उसमें क्या हुआ कि ये CFL जो है इसको लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट कर दिया गया था क्योंकि उसमें काफी चेंजेस हुए थे वॉर के दौरान जो है, लेकिन इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम रहे,
1: वही रहा
0: NJ 9842 था,
1: यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ,
0: उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ उस पॉइंट पे। एंड अगेन इट वाज सेम कि इट वाज म्यूचुअली एग्रीड कि भाई जो NJ 9842 है उसके आगे जो हमारे बीच में जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है वो देन नॉर्थ टू ग्लेशियर, मतलब
1: अच्छा
0: नॉर्थ की तरफ ग्लेशियर की तरफ जो है जाएगी।
1: स्पष्ट नहीं था यानी सर उसके आगे?
0: देखिए ये स्पष्ट तो बिल्कुल था
1: जी,
0: ऐसा है कि उस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो सोल्टोरो रिज है
1: जी,
0: बहुत ऊंची है, बहुत ऊंचे 20-22,000 फीट के ऊंचे पहाड़ है, ठीक है। एंड जो भी कभी बाउंड्री मार्क होती है तो हमेशा ये हाइट्स के ऊपर होती है।
1: अच्छा, पर्वतों की ऊंचाई पर।
0: जी, जैसे हम अपने खेत की मेड़ भी बनाते हैं तो आप देखेंगे एक ऊंचा बना हुआ होता है जिससे हमें बिल्कुल क्लियर कट होता है। अगर हम देखें उस समय जिन्होंने भी मार्किंग करी थी शायद उनके भी मतलब जो है दिमाग में कोई किसी तरह का डाउट नहीं था इसको लेके, तो लॉजिक एम्प्लाइज की मतलब वो जो है नॉर्थवर्ड्स होना चाहिए एंड हाईएस्ट जो वाटरशेड है जैसे मैंने अभी बताया सोल्टोरो रिज लाइन है उसके साथ होना चाहिए। 63 में
1: जी,
0: अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, पाकिस्तान ने उसके साथ में जो एरिया है शाक्सकाम वैली,
1: अच्छा,
0: उसको चाइना को हैंड ओवर कर दिया था जो है। और उससे क्या हुआ कि अब जब वो चाइना को हैंड ओवर हो गया तो जो चाइना की सीमा है वो और करीब आ गई,
1: भारत के करीब,
0: भारत के करीब आ गई। अब ये जो शाक्सकाम वैली है उसके बाद जो अगर आपको याद होगा चाइना ने जो है काराकोरम हाईवे बनाना शुरू किया जो कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में
1: हमने जिक्र भी किया था, जिक्र भी किया था
0: है ना, तो जो है उन्होंने शुरू किया एंड 78 में खत्म करा था
1: जी।
0: अब ये जो है अगर आप देखेंगे तो शाक्सकाम वैली हैंड ओवर करने के बाद एक तरह से नॉर्थ से उनकी सीमा हमारी तरफ आई, ठीक है, ईस्ट में ऑलरेडी चाइना था, अब वेस्ट में जो पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं था कि जो सियाचिन वाला एरिया है वो हमारा है, इंडिया का है, है ना। और ये जो शाक्सकाम वैली को जो दिया है वो तो इंडिया रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है, तो इंडिया के साथ है हमारा कि ये जो है J&K का हिस्सा है, तो पाकिस्तान को तो पहले कोई हक ही नहीं था कि वो देने का जो है। एनीवे तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर का एरिया जो उसके ठीक नीचे आता था, मतलब इट वाज अ रिमोट एरिया जैसे हमने अभी जिक्र किया है, अनविजिटेड, अनइम्पोर्टेंट, तो काफी टाइम तक तो मतलब डोरमेंट रहा
1: जी।
0: इसमें मतलब जो है कोई ज्यादा हलचल नहीं थी, कुछ नहीं था,
1: किसी भी देश की कोई हलचल नहीं थी, ना भारत ना पाकिस्तान।
0: या अब क्या हुआ कि उसके बाद में धीरे धीरे सेंटर स्टेज में आना शुरू हुआ जब इंडिया चाइना पाकिस्तान तीनों ने इसके ऊपर जो है अपना हक जमाना शुरू किया। इंडिया का तो हक है ही, पाकिस्तान और चाइना ने भी थी उस पे, इवन सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान की तरफ से जो हुआ। पाकिस्तान ने क्या किया, एक तो उन्होंने ना एक नया अलाइनमेंट दिखाना शुरू किया अपने मैप्स के ऊपर,
1: अच्छा,
0: जिसमें कि जो NJ-9842 है उससे उन्होंने एक सीधी लकीर ईस्ट की तरफ खींची जिसमें कि NJ-9842 को उन्होंने काराकोरम पास से जोड़ दिया। अकबर ये अब सीधी लकीर खींचते हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पूरा सियाचिन ग्लेशियर जो है वो पाकिस्तान के मैप में दिखने लग गया।
1: अच्छा, पाकिस्तान के नक्शे में पूरा सियाचिन चला गया।
0: हाँ, सियाचिन जो है वो उन्होंने दिखाना शुरू करा, जबकि उसका अलाइनमेंट जो हमने देखा जिक्र किया कि नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो नया अलाइनमेंट आया इसको उन्होंने अपने मैप्स में दिखाना शुरू किया और उन्होंने एक और काम करना शुरू किया कि जो माउंटेनियर होते हैं
1: पर्वतारोही,
0: हाँ
1: जी,
0: उनको उन्होंने वहाँ पे माउंटेनियरिंग के लिए इनवाइट करना शुरू किया, उनको परमिशन देनी शुरू कर दी।
1: अच्छा, पाकिस्तान सरकार ने,
0: पाकिस्तान सरकार ने अपनी तरफ से जो है, तो मतलब ये एक तरह से सोची समझी
1: साजिश है
0: कि भाई
1: अपने नक्शे में
0: हम उसको धीरे से नक्शे में दिखाया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। इवन जब उन्होंने परमिशन देनी शुरू करी तो काफी सारी वेस्टर्न कंट्रीज और बाकी देश भी उनको भी ऐसा लगने लगा कि ये जो है पाकिस्तान का है, वो भी अपने मैप पे उसको वैसे ही दर्शाने लगे। तो जब ये बात सामने आई तो इंडियन गवर्नमेंट ऑब्जेक्टेड टू इट, इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप हमारे इलाके में कैसे आ रहे हैं, ठीक है। सोल्टोरो रिज जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, ठीक है, ये मैंने जैसे बोला था सियाचिन ग्लेशियर के वेस्ट में पड़ती है एंड दिस इज द हाईएस्ट वाटरशेड, मतलब कि जो हाईएस्ट हाइट है उस एरिया में जिसको कि मतलब मोर देन 20,000 जिसकी हाइट्स हैं, मतलब पीक्स हैं, इसको जो है चार जगह से मतलब क्रॉस करा जा सकता है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि पहाड़ी काफी दुर्गम इलाका है, तो अगर हम नॉर्थ से देखें तो सबसे पहले सियाला आता है, फिर बिलाफोंडला आता है, फिर ग्योंगला आता है, फिर चालोंगला आता है, ऐसे मतलब जो है चार प्रोमिनेंट पासेस हैं जहां से कि इसको क्रॉस किया जा सकता है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा था कि जो बिलाफोंडला है इसका यूटिलाइज कर रहा था फॉर प्रमोटिंग फॉरेन माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन द रीजन।
1: अच्छा अच्छा जी,
0: अब पाकिस्तान का जो ये क्लेम है इसको सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर अगर करना है, बंद करना है, तो सबसे ज्यादा पर्टिनेंट ये था कि हमें ये जो पासेस हैं इसमें हमारा नियंत्रण होना चाहिए, हमारा हक होना चाहिए। पासेस के लिए फिर उसकी जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं उन पे भी नियंत्रण होना चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इस इलाके में माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज कर ली, जिसमें कि जो आर्म फोर्सेस के आर्मी के जो एक्सपर्ट माउंटेनियर्स थे, जिसमें कि सबसे फेमस जो नाम आता है कर्नल कुमार साहब का आता है, जिनको कर्नल बुल कुमार भी बोलते हैं, और जिनके नाम पे जो है एक पोस्ट भी है सियाचिन में, उन्होंने वहाँ पे जो है माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन लॉन्च किया, जिसमें कि वो इंद्रा कॉल सिया कांगरी वगैरह हाइट पे गए। और तभी उनको ये भी मालूम चला कि यहाँ पे पाकिस्तान जो एक्सपेडिशंस करवा रहे हैं, और भी मतलब ये बात सब्सटेंशिएट हुई
1: जी,
0: इसके पुख्ता
1: सबूत
0: मिले
1: जी, जी।
0: अब जब पाकिस्तान को पता चला कि इंडिया ने भी यहाँ पे एक्सपेडिशंस शुरू करे हैं, तो उनको लगा कि हमें जो है इस इलाके पे कब्जा करना चाहिए। तो दे स्टार्टेड प्लानिंग अ मिलिट्री ऑपरेशन टू कैप्चर दिस एरिया।
1: अच्छा, अभी तक तो सर नक्शे की लड़ाई थी,
0: अभी नक्शे की लड़ाई थी,
1: अब जमीनी लड़ाई,
0: अब जमीनी लड़ाई जो है जिसपे के आर्म फोर्सेस की लड़ाई वाली बात थी। अभी इसकी इंटेलिजेंस के लिए, क्योंकि इस जगह पे इस ऊंचाई पे लड़ने के लिए आपको स्पेशल क्लोथिंग चाहिए होती है, स्पेशल जो है आपको टेंट्स वगैरह चाहिए, आर्किटेक्ट टेंट्स वगैरह चाहिए, इक्विपमेंट अलग से चाहिए। तो वो कहते हैं कि जहाँ पे मतलब जैसे ऑर्डर्स जो प्लेस करे थे पाकिस्तान ने
1: जी,
0: तो ये इंटेलिजेंस मिली, तो इंडिया गॉट अ क्लियर कट इन्फॉर्मेशन कि भाई दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू, पाकिस्तान इज गोइंग टू लॉन्च एन ऑपरेशन,
1: षड्यंत्र का पता चल गया
0: कि हाँ लॉन्च एन ऑपरेशन टू कैप्चर सियाचिन। इंडिया डिसाइडेड टू प्रीएम्प्ट, मतलब जो है इंडिया ने डिसाइड किया कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये इलाका हमारा है, इस पे हक हमारा है। तो इस एरिया पे उन्होंने पाकिस्तान के मंसूबों पे पानी फेरते हुए यहाँ पे अपने जो है फोर्सेस लॉन्च करी।
1: अच्छा,
0: तो सबसे पहले जो है ये जो पासेस थे जिसका भी मैंने जिक्र किया, मेन जो है बिलावंडला और स्याला, इसके ऊपर जो है इनिशियली हमने अपनी दो प्लटून स्ट्रेंथ भेजी थी। प्लटून मतलब आप ये देखिए करीब 35 से 40 लोग जो होते हैं। अब आप कहेंगे कि इतने कम लोग क्यों गए, एक तो अचानक उस इलाके में नहीं जा सकते हैं आप, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, आपके प्रॉपर रूट्स होने चाहिए, देन उसके बाद एक्लिमेटाइजेशन होना चाहिए, देन उसके बाद टाइम बहुत कम था
1: जी।
0: तो ये जो ट्रुप्स थे जो माउंटेनियरिंग के एक्सपर्ट थे, जो यूनिट्स वहां पे थी आसपास अल्टीट्यूड एरिया में, उनको लेके जो है
1: जी,
0: दो प्लटून जो है वहां पे गई और इनको बाय एयर इंडक्ट किया गया था। अब जैसे हमने पहले जिक्र किया जो हेलीकॉप्टर्स है, अब वहाँ पे उनकी जो एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है
1: जी, हवा पतली हो जाती है
0: जी, और लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो एक बार हेलीकॉप्टर सिर्फ दो जवानों को ले जाने की क्षमता रख रहे थे।
1: अच्छा,
0: हाल जी। तो सबसे पहले जो है 13 अप्रैल को पहली प्लटून जो है एयरलिफ्ट होके उन्हें बिलावंडला के पास ड्रॉप किया गया था, और जो दूसरी प्लटून है वो 17 अप्रैल को सियाला में उनको लैंड किया गया था। अब पाकिस्तान ऑलरेडी मतलब वो तैयारी में था इसको ऑक्यूपाई करने की
1: जी।
0: जब उन्हें इस बात की भनक लगी कि इंडियन आर्म फोर्सेस ऑलरेडी वहां पहुंच गई है
1: जी।
0: तो उन्होंने भी जो है अपना ऑपरेशन तेज किया
1: अच्छा।
0: और उन्होंने बिलावंडला पे कब्जा करने की कोशिश करी और यहां से शुरू हुई लड़ाई और जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है एट द हाईएस्ट battlefield of the world
1: जी,
0: it started from here। Initially जैसे हम देखते हैं कि strength बहुत कम थी
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये company strength से जो है, क्योंकि जब आप एक जगह पे वहाँ पहुंचे हैं तो आपको दूसरी जगह पे भी जाना है, उसकी dominating heights भी लेनी है
1: जी,
0: फिर आपको वहाँ पे guns का support भी चाहिए, आपको logistic base भी चाहिए
1: जी,
0: तो ये बढ़ते बढ़ते जो है ब्रिगेड प्लस लेवल पे स्ट्रेंथ पहुंच गई। मतलब जो एक शुरू हुई थी 70 बंदों से 100 बंदों से जो शुरू हुई थी वो 4000 4500 तक पहुंच गई जो है। अब फाइटिंग स्टार्ट हुई, अब ऑपरेशन का साइज बढ़ता चला गया
1: जी।
0: इसमें जो ये जो ऑपरेशन किया था हमने प्रीएम्प्ट करके जो ऑक्यूपाई किया
1: जी,
0: वो एक बहुत ही सोचा समझा और बहुत ही वेल प्लान्ड एंड इट वाज एन एक्सेलेंट मूव एक्चुअली। अगर हमने उस दिन यहाँ पे अपनी फोर्सेस नहीं भेजी होती, तो हो सकता है 15 दिन के अंदर जो है या सो पाकिस्तान ऑपरेशन लॉन्च करके इस पे ऑक्यूपाई कर लेता, कब्जा कर लेता और फिर उसको हम नहीं निकाल सकते थे। तो ये मतलब एक बहुत ही इट वाज अ मैटर ऑफ प्राइड,
1: पहला कदम हमने उठाकर,
0: पहला कदम उठा के हमने बहुत अच्छा
1: जंग लगभग जीत ली।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल जी। जो है तो ऑक्यूपेशन एंड डोमिनेशन ऑफ साल्टोर रिच जो है हमारे हाथ में आया। और जो ये जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है सियाचिन ग्लेशियर का और एंटायर रीजन जो है वो जो है हमारे हाथ में रहा है। तो सही, ये लड़ाई जो है काफी मुश्किल लड़ाई है, काफी ज्यादा जो है यहाँ पे हमने पहले भी बताया कि जो मौसम के कारण जो है आप सिर्फ एनिमी से नहीं लड़ते हैं,
1: मौसम से लड़ते हैं,
0: मौसम से ज्यादा लड़ते हैं। जी है, यहाँ पे कैजुअलिटी भी जब हम देखेंगे तो मौसम के कारण ज्यादा हुई है बजाय जो है गोलियों से जो है।
1: सर जैसे आप फौजियों की भाषा में एक सेंटेंस बोला जाता है कि पहाड़ों की जंग का एक उसूल होता है कि जो ऊंचाई पर बैठा है वही सिकंदर है।
0: बिल्कुल सही बोला,
1: तो यहाँ पर ये सही है।
0: बिल्कुल सही है
1: जी।
0: ये जो फाइट थी
1: जी,
0: ये भी जो है इट वाज अ कंट्रोल ऑफ साल्टोर रिच, ठीक है, जो कि 80 किलोमीटर लंबा है, तो इसको कंट्रोल करना, इसको डोमिनेट करना ही है मेन जो है। अगर आपने साल्टोर रिच लाइन कंट्रोल करी हुई है तो आपने सियाचिन ग्लेशियर कंट्रोल किया हुआ है। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, आपने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बात बोली जो है। जैसे हमने तो ये इम्पोर्टेंट पासेस थे, इनको कंट्रोल कर लिया था, डोमिनेटिक हाइट्स को कंट्रोल कर लिया था। अब पाकिस्तान भी जो है स्ट्रगल कर रहा था कि किसी तरह से साल्टोर रिच लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं वो अपना हक जमा सके जो है। तो उसका जो फोकस था कि वो किसी तरह से बिला फांडला जो पास है
1: जी,
0: उसको कब्जा कर सके या उसके आसपास जो हाइट्स है उसके ऊपर जो है अपना वर्चस्व बना सके। क्योंकि अगर आपने वहां पे कोई भी हाइट भी ले ली जिससे आप जो है बिला फांडला के या कोई सियाला के पासेस में अगर आप इंटरफेयर कर सकते हैं जो, तो भी जो है आप आधी लड़ाई जीत जाते हैं।
1: वही ऊंचाई पर बैठे रहेंगे तो आप नीचे सबको कंट्रोल कर सकते
0: हैं। एग्जैक्टली वही था। तो फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने एक लोकेशन सेलेक्ट करी एंड ये जो है काफी मतलब जो है स्टीप वर्टिकल एक हाइट थी और उसके ऊपर जो है उन्होंने वो पोस्ट एस्टैब्लिश करी, छोटी सी बहुत पोस्ट थी उसमें इवन जाने के लिए वो मतलब आप ये समझ के 90 डिग्री की चढ़ाई है, ठीक है, और उसको चढ़ने के लिए मतलब आपको रस्सी और लैडर के सहारे ही चढ़ सकते थे।
1: अच्छा,
0: तो उसको उन्होंने कैद पोस्ट का नाम दिया, कायदे आजम के नाम पे शायद उन्होंने। और ये जो क्या था, ये जो पोस्ट थी ये डोमिनेट करती थी बिला फांडला,
1: पूरे दर्रे को
0: जो बिला फांडला पे जो हमारी डिप्लॉयमेंट थी उसके ऊपर आ गई है। इस कारण से उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो प्रॉपर हो गया, तो उससे जो है आर्टिफायर जो है बिला फांडला पे जो है इंटेंस आने लगा। एंड इसके अलावा जो मूवमेंट होती थी, ट्रूप्स की मूवमेंट होती थी उसमें भी वो लोग इंटरफेयर करने लगे, ठीक है। तो ये जो है कैच पोस्ट जो है इट बिकम ए मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडियन आर्मी ड्यू टू इट्स डोमिनेंट लोकेशन एंड कॉन्स्टेंट इंटरफेरेंस। अब इसको कब्जा करना एक तरह से हमारे लिए निहायत जरूरी हो गया था,
1: चुनौती बन गया,
0: चुनौती बन गया था
1: जी।
0: अब जैसे अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि ये जो लोकेशन थी इसको, लेकिन कब्जा करना जो है इसको कैप्चर करना इट्सेल्फ वाज अ बिग चैलेंज। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल हाइट थी 21,000 फीट के ऊपर और अप्रोच नहीं थी सीधा, मतलब जो है आपको क्लाइम करना है, ठीक है। अच्छा, ऊपर से एक और है कि स्नो बाउंडेड है तो वहां पे कोई कवर अवेलेबल नहीं है। आप जब मूव करते हैं तो दूर से नजर आता है, खुले में आप दिखते हैं, जैसे आप पहुंचेंगे तो नजर आएगा। इवन फायर सपोर्ट नहीं अवेलेबल हो सकता क्योंकि वो ऐसी पोस्ट थी कि आपको आसपास के वेपन भी कवर नहीं करते थे, इवन आर्टिफायर भी कवर नहीं कर पाता था। उस पोस्ट के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। एरियल से हम जो पता कर सकते थे वो तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसका लेआउट क्या था, उसमें कितने हथियार थे, क्या उसकी मैन पावर थी, उसका साइज क्या था, मतलब ये सब जानकारियां होना बहुत जरूरी होता है जब आप कोई भी ऑपरेशन ऐसे लॉन्च करते हैं। तो ये सब जानकारी हासिल करने के लिए एक पेट्रोल हम बोलते हैं कि जो एक टुकड़ी होती है जो कि जानकारी हासिल करने के लिए जाती है।
1: अच्छा,
0: उस टुकड़ी का जनरली काम यही होता है कि वो जानकारी हासिल करे, उसको हम पेट्रोल बोलते हैं
1: जी।
0: तो उसमें एक ऑफिसर साहब, एक जेसीओ साहब और 7 अदर रैंक,
1: अच्छा,
0: छोटी सी टीम थी, बहुत ही मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड पीपल, ये 24 मई को 87 को उधर गए थे, रात के टाइम मूव किया। अब वर्टिकल क्लाइम था
1: जी।
0: अब इन्होंने अच्छा ही काम किया कि जब वर्टिकल क्लाइम कर रहे थे तो साथ साथ रोप लगाते चले गए, क्योंकि ताकि जब अटैक करने के टाइम पे इसको सहायता से ऊपर जा सकते हैं। इवन उन्होंने क्या किया, वहाँ पे लेजेस भी बनाई थी, मतलब लेजेस मतलब इन द सेंस की जगह बर्फ काट के कि ताकि वहाँ हम स्टोर रख सकते हैं। तो ये जो टीम है ये ऊपर पहुंची। ऐसा होता है ना, जैसे आप सीधे ऊपर चढ़े हैं वर्टिकल क्लाइम से और झट से आप उसके ऊपर पहुंच गए, और वहाँ पे ये क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते रहे। इन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करी। अब इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद, मतलब इन्फॉर्मेशन द सेंस की लेआउट क्या है, उनको जो अंदाजा था
1: जी।
0: बट ये जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ रहे थे, सडनली वहां से मशीन गन फायर शुरू हो गया।
1: दुश्मन ने देख लिया,
0: एंड जो ऑफिसर साहब थे साथ में, जो है इनके चार जवान थे, वो वहीं पे मतलब जो शहीद हो गए। इट वॉज इंटेंस फायर। तो जैसे वो जो रिमेनिंग सोल्जर्स थे वो किसी तरह से उन्होंने अपना को रिट्रैक्ट किया और जो है वापस अपनी पोस्ट पे पहुंचे, नीचे आए। मानने लायक वो है कि जो पेट्रोल थी ये जो वापस इन्फॉर्मेशन लेके आई, इट वॉज ऑफ वेरी इमेंस वैल्यू, जो
1: है अमूल्य थी,
0: क्योंकि इसी के बेस के ऊपर जो है अटैक प्लान किया। और ये अटैक जो प्लान किया गया, जो ये शहीद हुए हैं ऑफिसर साहब और जवान, ये उनकी जो है शहादत, उनकी जो बहादुरी का एक बहुत बड़ा मतलब उनका योगदान रहा। They did a really outstanding and commendable job in this. तो वो इस information के base पे फिर जो है attack plan किया गया
1: जी।
0: और जून के महीने में जो है attack launch हुआ। And इस attack में भी जो force गई थी वो they were all volunteers, highly motivated people
1: जी।
0: अब ये भी मालूम था सबको कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मतलब 90% तो ये है कि हो सकता है हम नहीं वापस आएंगे
1: जी।
0: उसके बावजूद भी आप में कितना हौसला, कितना जज्बा होता है, कितना देश प्रेम होता है, कितना अपनी यूनिट के लिए जो है प्राइड होता है, कि उसके बावजूद सब वॉलंटियर करके गए थे जो है,
1: सर पर कफन बांधकर,
0: कफन बांध के गए थे। बिल्कुल सही बोला आपने जो है। और वर्टिकल स्टीप क्लाइम जो था, रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच था, तो उसमें क्या है बहुत सारे लोग भी एक साथ नहीं जा सकते,
1: नहीं जा सकते थे,
0: ठीक है। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, ठीक है, रेरिफाइड ऑक्सीजन है, सांस नहीं आ रहा है
1: जी।
0: और उसके बाद जो है
1: हथियारों के साथ चढ़ना
0: और ऊपर गए जो है। पहला जो अटैक हुआ उसमें जो है मतलब काफी फायरिंग चल रही जो है, एंड उसके बाद फिर से दूसरी जगह से जो है अटैक किया, एक और पार्टी ने अटैक किया। तो वो जो एक स्मॉल टीम थी उसको नायब सुधर बाना सिंह साहब लीड कर रहे थे, जेसी साहब, उनके साथ सिक्स सोल्जर्स और थे, वो किस ऊपर पहुंचने में सफल रहे, एंड उन्होंने वहां जाके पोस्ट के ऊपर अटैक किया ग्रेनेड से और स्मॉल आर्म से। पाकिस्तानी सोल्जर जो थे वहां पे उन्होंने भी जो है डट के मुकाबला किया, जवाब दिया, लेकिन फाइनली द इंडियन सोल्जर्स ओवरकम।
1: चौकी पे भारतीयों का कब्जा
0: हो गया। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो पीछे से जो पाकिस्तान की तरफ से जो लैडर्स थी उनको काट दिया,
1: ताकि और आमद ना आ पाए,
0: ठीक है, और जो है इस पोस्ट के ऊपर कब्जा किया। तो ये जो पोस्ट है फिर इसी को हम आज बाना पोस्ट के नाम से जानते हैं, नायब सुधर बाना सिंह साहब, आफ्टर दैट ही बिकेम ऑनरी कैप्टन, ठीक है, जिन्होंने असॉल्ट लीड किया था उनके ऑनर में ये पोस्ट उनके नाम से जानी जाती है,
1: परमवीर चक्र विजेता
0: जी। ही वाज अवॉर्डेड द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र फॉर हिज आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी एंड लीडरशिप ना अंडर मोस्ट एडवर्स कंडीशंस। मेरे ख्याल से ये जो ऑपरेशन हुआ था इस कंडीशंस में, बाय द वे मैंने खुद देखी वो पोस्ट
1: जी, जी।
0: और वो रियली वर्टिकल हाइट है, उस पे चढ़ना मतलब इट्स रियली इम्पॉसिबल। जब हेलीकॉप्टर भी जाता है तो बिल्कुल जाके ऊपर जाके बैठ जाता है, ऐसा लगता है। इट वॉज अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री, आई बिलीव इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशन एवर कैरिड आउट, ठीक है, ओके। एंड वी सल्यूट दिस ब्रेव सोल्जर्स हु पार्टिसिपेटेड इन दिस एंड ब्रॉट अस प्राइड।
1: वाकई में सर, बाना सिंह सर की इस परम वीरता को नमन है, जिनके कारण हम इस महत्वपूर्ण पोस्ट को अपने कब्जे में ले पाए। श्रोताओ, सियाचिन की ये जंग सन 1984 में उसी दिन समाप्त नहीं हुई। आज भी इस वक्त जब आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारी सेना के जवान -50 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली ठंड में सीना ताने वहां खड़े हैं। दुश्मन से ज्यादा घातक वहां का बर्फीला मौसम, फ्रॉस्ट बाइट, लो ऑक्सीजन और बर्फीले तूफान में भी उनके हौसलों को डिगाया नहीं जा सकता। ये गौरव गाथा आगे भी जारी रहेगी हमारे कार्यक्रम की अगली कड़ी में। सर, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने ऑपरेशन मेघदूत के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू पूर्वा जी, एंड जय हिंद श्रोताओं।
1: तो श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश पाथम का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। अब दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: श्रोताओं, अब तक हम भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और विभिन्न सुरक्षा बलों और रक्षा संस्थानों के बारे में जान चुके हैं, लेकिन क्या केवल सैनिकों और सुरक्षा बलों के साहस से ही देश की रक्षा होती है? नहीं, उनके पीछे ऐसे अनेक वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ भी काम करते हैं जो देश की सुरक्षा को नई शक्ति देते हैं। श्रोताओं, आज हम जानेंगे ऐसे ही एक महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी हाल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रेडियो नाटक देश के संस्थान का ये सफर विज्ञान से तकनीक की ओर, इस नई श्रृंखला के साथ पोती रुचि और दादाजी के संवाद।
2: फाइटर जेट गया।
3: कहाँ? कहाँ बेटा?
2: अरे दादू, जितनी देर में आप बालकनी तक आएंगे ना, तब तक वो अपने स्टेशन पर भी पहुँच गया होगा।
3: अरे बेटा, क्या करूँ, उम्र का तकाजा है ना।
2: वो तो है।
3: बताओ
2: दादू। आपको पता है, जब भी मैं लड़ाकू विमान को आकाश में उड़ते हुए देखती हूँ तो मन गर्व से भर जाता है।
3: और सोचो बिटिया, उन विमानों में से कई हमारे अपने देश में बनाए जाते हैं।
2: सच?
3: हाँ बेटा, और उन्हें बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी हाल, या HAL।
2: दादू, ये हाल क्या है?
3: हाल भारत की प्रमुख एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। ये विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन, एवियोनिक्स और अनेक रक्षा प्रणालियों का विकास और निर्माण करती है।
2: दादू, ये हाल क्या कोई निजी कंपनी है?
3: नहीं बिटिया, हाल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, समझे? देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: दादू, आपने एयरोस्पेस कहा, इसका क्या मतलब होता है?
3: शाबाश बेटा, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। देखो बेटा, एयरोस्पेस का संबंध दो क्षेत्रों से होता है, विमानन और अंतरिक्ष विज्ञान। क्या क्या बोला मैंने?
2: विमानन और अंतरिक्ष विज्ञान।
3: हाँ, यानी वे सभी तकनीकें और प्रणालियां जो आकाश में उड़ने वाले विमानों और अंतरिक्ष में जाने वाले यानों से जुड़ी हों।
2: यानी हाल केवल हवाई जहाजों तक ही सीमित नहीं है।
3: बिल्कुल सही समझा तुमने, बिल्कुल सही बेटा।
2: अच्छा दादू, ये बताइए कि हाल की शुरुआत कब हुई थी?
3: हाल की स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी बेटा। इसे भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति बालचंद हीराचंद ने स्थापित किया था। उस समय इसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड।
2: यानी ये संस्था स्वतंत्रता से पहले मौजूद है।
3: हाँ बिटिया, बाद में सन 1964 में इसका पुनर्गठन किया गया और इसका नाम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड रखा गया।
2: और इसका मुख्यालय कहाँ पर है?
3: कर्नाटक की राजधानी बेटा, बेंगलुरु में।
2: दादू, मुख्यालय बेंगलुरु में है, तो क्या इसके सभी कारखाने भी वहीं स्थित है?
3: नहीं बिटिया, इसका मुख्यालय तो बेंगलुरु में है, लेकिन इसके कारखाने, उत्पादन इकाइयां और अनुसंधान एवं विकास केंद्र देश के कई राज्यों में स्थित हैं।
2: कहाँ कहाँ दादू?
3: बेंगलुरु के अलावा बेटा, नासिक, कानपुर, कोरापुट, उड़ीसा, हैदराबाद, लखनऊ और अन्य कई स्थानों पर हाल की इकाइयां कार्य कर रही हैं।
2: अच्छा।
3: प्रत्येक केंद्र की अपनी विशेष भूमिका होती है बेटा। कई विमानों का निर्माण होता है, कहीं इंजन बनाए जाते हैं तो कहीं अनुसंधान, परीक्षण और तकनीकी विकास का कार्य किया जाता है।
2: यानी हाल केवल एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैला हुआ एक विशाल तकनीकी नेटवर्क है।
3: बिल्कुल सही बेटा, यही कारण है कि देश के विभिन्न भागों के वैज्ञानिक, इंजीनियर और टेक्नीशियन और कुशल कर्मचारी मिलकर हाल को भारत की अग्रणी एयरोस्पेस संस्था बनाते हैं।
2: वाह दादू, यानी ये वाकई पूरे देश की सामूहिक प्रतिभा और परिश्रम का प्रतीक है।
3: बिल्कुल बिटिया, जब देश के अलग अलग हिस्सों की प्रतिभाएं एक लक्ष्य के लिए मिलकर काम करती हैं, तभी ऐसी महान संस्थाएं राष्ट्र की शक्ति बनती हैं।
2: वैसे दादू, क्या विमान बनाना आसान प्रोसेस है?
3: नहीं बिटिया, ये इतना आसान नहीं है, बल्कि किसी विमान के निर्माण से पहले सालों तक अनुसंधान, परीक्षण और डिजाइन का कार्य किया जाता है। और हाल के अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास केंद्रों में वैज्ञानिक और इंजीनियर नई तकनीकों पर लगातार काम करते रहते हैं।
2: मतलब पहले शोध, फिर डिजाइन और उसके बाद निर्माण।
3: बिल्कुल सही, शाबाश। इसी प्रक्रिया को अनुसंधान एवं विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहा जाता है बेटा।
2: वैसे दादू, आपने एवियोनिक्स शब्द का भी जिक्र किया था, ये क्या होता है?
3: देखो बेटा, विमानों में लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एवियोनिक्स कहा जाता है।
2: ये किस तरह के उपकरण होते हैं दादू?
3: ये रडार, संचार प्रणाली, नेविगेशन प्रणाली, उड़ान नियंत्रण प्रणाली और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इनके बिना आधुनिक विमान सुरक्षित रूप से उड़ान नहीं भर सकते बेटा।
2: यानी एवियोनिक्स विमान का दिमाग होता है।
3: वाह बिल्कुल सही, शाबाश बेटा।
2: दादू, तो क्या हाल केवल विमान बनाकर अपना काम पूरा कर देती है?
3: नहीं नहीं बेटा, विमानों और हेलीकॉप्टरों की देखभाल, मरम्मत और समय समय पर तकनीकी उन्नयन भी हाल की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है।
2: अच्छा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
3: इसे बेटा MRO कहा जाता है, यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। इसे हिंदी में कहेंगे रखरखाव, मरम्मत और गहन तकनीकी निरीक्षण।
2: मतलब हाल विमान के निर्माण से लेकर उसकी पूरी सेवा अवधि तक उसकी कार्यक्षमता का ध्यान रखती है।
3: बिल्कुल बेटा।
2: दादू, विमान बनाते समय सबसे ज्यादा किस बात का ध्यान रखा जाता है?
3: सुरक्षा और गुणवत्ता का बेटा। विमान का प्रत्येक पुर्जा कई बार जांचा और परखा जाता है। छोटी सी गलती भी बड़े खतरे का कारण बन सकती है।
2: वो तो है दादाजी। अच्छा ये बताइए कि यदि कोई स्टूडेंट भविष्य में हाल जैसी संस्था में काम करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए?
3: सबसे पहले तो विद्यार्थियों को अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान विज्ञान और गणित पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विमान, हेलीकॉप्टर, रॉकेट और आधुनिक तकनीकों की पूरी दुनिया विज्ञान और गणित की मजबूत नींव पर खड़ी होती है बेटा।
2: यानी गणित और विज्ञान से दोस्ती करना बहुत जरूरी है दादाजी।
3: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से हमें उड़ान के सिद्धांत समझ में आते हैं। गणित से जटिल गणनाएं की जाती हैं और कंप्यूटर विज्ञान आधुनिक प्रणालियों को संचालित करने में मदद करता है।
2: तो फिर आगे कौन कौन से विषय पढ़े जा सकते हैं दादाजी?
3: 12वीं के बाद विद्यार्थी अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कई क्षेत्रों का चयन कर सकते हैं बेटा।
2: जैसे?
3: जैसे कि एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग। इन क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करके वे हाल, DRDO, इसरो, इन जैसे कई अन्य वैज्ञानिक संस्थानों में कार्य कर सकते हैं बेटा।
2: दादू, तो क्या केवल इंजीनियर ही हाल में काम करते हैं?
3: नहीं बिटिया, हाल जैसी बड़ी संस्था में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ साथ तकनीशियन, कंप्यूटर विशेषज्ञ, डिजाइनर, गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञ, प्रोजेक्ट प्रबंधक, वित्त अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी कार्य करते हैं। इसीलिए हर प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए यहाँ अवसर मौजूद है।
2: अच्छा, यानी हर किसी के लिए कोई ना कोई भूमिका होती है।
3: बिल्कुल बेटा, लेकिन एक बात सभी के लिए समान है, अनुशासन, परिश्रम, जिज्ञासा और निरंतर सीखने की इच्छा। विज्ञान का हर क्षेत्र हर दिन आगे बढ़ता है बेटा, इसीलिए सीखना कभी नहीं रुकता।
2: दादू, क्या विद्यार्थियों को भविष्य के लिए पहले से कुछ विशेष आदतें भी विकसित करनी चाहिए?
3: बिल्कुल करनी चाहिए बेटा। उन्हें विज्ञान की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, विज्ञान प्रदर्शनियों में भाग लेना चाहिए, मॉडल बनाना चाहिए, रोबोटिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए और नई तकनीकों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। इससे उनकी वैज्ञानिक सोच विकसित होती है।
2: दादाजी, यानी आज की पढ़ाई ही कल देश सेवा का माध्यम बन सकती है?
3: बिल्कुल बन सकती है बेटा। देश की रक्षा केवल सीमा पर खड़े सैनिक ही नहीं करते, बल्कि प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केंद्रों और कारखानों में कार्य करने वाले वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीशियन भी करते हैं बेटा। जब कोई वैज्ञानिक नई तकनीक विकसित करता है, कोई इंजीनियर सुरक्षित विमान बनाता है और कोई तकनीशियन उसे पूरी निष्ठा से तैयार करता है, तब वे भी राष्ट्र सेवा ही कर रहे होते हैं बेटा।
2: मतलब देशभक्ति केवल हथियार उठाने में नहीं है दादाजी, बल्कि ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त बनाने में भी है।
3: बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। यदि आज का विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करे, विज्ञान को समझे और बड़े सपने देखने का साहस करे, तो कल वही भारत की नई उड़ान का निर्माता बन सकता है।
2: वाह दादू, अब तो मुझे भी समझ में आ गया है कि हाल जैसे संस्थान केवल विमान ही नहीं बनाते, बल्कि देश के युवाओं को भी बड़े सपने देखने की प्रेरणा देते हैं।
3: हाँ बेटा, और यही प्रेरणा भारत को आत्मनिर्भर, वैज्ञानिक और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ाती है। साथ साथ नई पीढ़ी के नई सोच के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सेना तैयार करती है।
2: ये तो वाकई सुपर मेकर है दादू।
3: बिल्कुल सुपर मेकर है बेटा। तुम जानती हो बेटा, हाल द्वारा विमानों और हेलीकॉप्टरों की देखभाल, मरम्मत, उन्हें समय समय पर नई तकनीकों के अनुरूप उन्नत बनाने की प्रक्रिया का काम कभी नहीं रुकता। हाल के वैज्ञानिक कर्मचारी दिन रात इसे बेहतर बनाने की दिशा में लगे रहते हैं बेटा।
2: मतलब एक विमान के निर्माण से लेकर उसकी पूरी सेवा अवधि तक।
3: बिल्कुल बिटिया, तभी तो हाल भारत की वायु शक्ति को मजबूत बनाने वाले प्रमुख संस्थानों में गिना जाता है।
2: दादू, ये तो बिल्कुल ऐसा है मानो एक पौधा लगाकर उसे पेड़ बनाने तक की जिम्मेदारी ले ली जाए।
3: ऐसा ही समझो बेटा।
2: मतलब आज की मेहनत ही भविष्य की उड़ान बन सकती है।
3: सही कहा बेटा। जब वैज्ञानिकों का ज्ञान, इंजीनियरों की मेहनत और राष्ट्र के प्रति समर्पण एक साथ आते हैं, तब आकाश में नई उड़ानें जन्म लेती हैं।
2: और शायद इसी कारण हाल को आकाश की शक्ति के निर्माण करने वाले संस्थान के रूप में जाना जाता है।
3: बिल्कुल बेटा।
2: दादू,
3: हाँ,
2: हाल भविष्य की किन परियोजनाओं पर काम कर रहा है?
3: फिलहाल बेटा, हाल की कई अहम परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान, नई पीढ़ी के हेलीकॉप्टर, आधुनिक ड्रोन प्रणालियां और भविष्य के लड़ाकू विमान शामिल हैं।
2: यानी आने वाले सालों में भारत सुपर पावर और आत्मनिर्भर बनने वाला है दादाजी।
3: बिल्कुल बेटा, आत्मनिर्भर भारत का मतलब बस अपने उत्पाद बनाना नहीं होता, बल्कि अपनी तकनीक, अपने वैज्ञानिक ज्ञान और अपनी निर्माण क्षमता विकसित करना भी होता है।
2: इसका मतलब हाल इसी दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
3: हाँ बेटा, हाल ने केवल विमान नहीं बनाए, बल्कि भारत को वैश्विक एयरोस्पेस क्षेत्र में सम्मानजनक पहचान दिलाने में भी योगदान दिया है।
2: दादू, आज मुझे समझ में आया कि किसी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सेना में नहीं, बल्कि उसके वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अनुसंधान संस्थानों में भी होती है।
3: बिल्कुल सही कहा बेटा। विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार ही भविष्य के भारत की असली शक्ति है।
2: दादू, आपने हाल के विमानों और हेलीकॉप्टरों के बारे में तो बताया, लेकिन अब और क्या नया बताएंगे मुझे?
3: देखो बेटा, अब हम हाल के एक ऐसे पक्ष को जानेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
2: वो क्या?
3: हाल केवल विमान और हेलीकॉप्टर ही नहीं बनाता, बल्कि विमान इंजनों, अंतरिक्ष कार्यक्रमों और भविष्य की रक्षा तकनीकों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।
2: सही दादू?
3: हाँ बेटा।
2: मुझे तो लगता था कि हाल का काम केवल विमान बनाना ही है।
3: यही तो खास बात है। किसी भी विमान को उड़ाने के लिए केवल उसका ढांचा पर्याप्त नहीं होता, उसे शक्ति देने के लिए एक अत्याधुनिक इंजन की जरूरत होती है बेटा। जिस तरह मानव शरीर में हृदय रक्त का संचार करता है, उसी प्रकार इंजन विमान को गति और शक्ति प्रदान करता है।
2: यानी इंजन विमान का दिल होता है दादाजी?
3: बिल्कुल बेटा, यदि विमान का ढांचा उसका शरीर है तो इंजन उसका दिल है। बिना इंजन के विमान उड़ ही नहीं सकता।
2: लेकिन दादू, विमान का इंजन बनाना तो बहुत कठिन काम होगा।
3: हाँ बेटा, ये दुनिया की सबसे जटिल तकनीकों में से एक मानी जाती है। विमान के इंजन को अत्यधिक तापमान, तीव्र गति और भारी दबाव में भी सुरक्षित रूप से कार्य करना पड़ता है। इसलिए इसके निर्माण में अत्यंत उन्नत धातुओं, खास मिश्र धातुओं और सटीक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है।
2: तो क्या हाल अपने इंजन स्वयं बनाता है दादाजी?
3: हाल ने सालों से कई तरह के जेट और हेलीकॉप्टर इंजनों के निर्माण, असेंबली, परीक्षण और रखरखाव में खास भूमिका निभाई है बेटा। इसके अलावा हाल स्वदेशी इंजन तकनीक के विकास के लिए भी लगातार प्रयास कर रहा है।
2: दादू, स्वदेशी इंजन तकनीक का क्या महत्व है?
3: इसका मतलब है कि हम महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों के लिए दूसरे देशों पर कम निर्भर रहें। अगर इंजन जैसी महत्वपूर्ण तकनीक देश में ही विकसित हो जाए तो हमारी आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों मजबूत होती है बेटा।
2: क्या इस दिशा में कोई विशेष संस्थान भी काम कर रहा है?
3: हाँ बेटा, बेंगलुरु स्थित एयरो इंजन अनुसंधान एवं विकास केंद्र यानी एयरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। यहाँ वैज्ञानिक और इंजीनियर भविष्य की इंजन तकनीकों पर लगातार अनुसंधान करते रहते हैं।
2: दादू, क्या इंजन बनने के बाद उसे सीधे विमान में लगा दिया जाता है?
3: नहीं बिटिया, उससे पहले इंजन का कई चरणों में कठोर जांच और परीक्षण किया जाता है। इंजन को अलग अलग तापमान, ऊंचाई और परिस्थितियों में परखा जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो हर स्थिति में सुरक्षित और विश्वसनीय रहेगा।
2: यानी एक इंजन के पीछे भी वर्षों की मेहनत छुपी होती है दादाजी।
3: बिल्कुल बेटा, हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों के अथक परिश्रम के बाद ही कोई इंजन उड़ान भरने योग्य बन पाता है बेटा।
2: दादू, अब समझ में आया कि विमान को उड़ाना जितना कठिन है उससे कहीं अधिक कठिन उसे बनाने वाली तकनीक विकसित करना है।
3: सही कह रहे हो बेटा, और यही कारण है विमान इंजन तकनीक किसी भी राष्ट्र की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का महत्वपूर्ण मापदंड मानी जाती है।
2: वाह, अब तो मुझे हाल के काम का दायरा पहले से भी अधिक बड़ा दिखाई देने लगा है दादाजी।
3: और अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है बिटिया। अगली बैठक में हम जानेंगे कि हाल भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में किस प्रकार योगदान देता है और कैसे वो भविष्य के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
2: सचमुच दादू?
3: हाँ बेटा, लेकिन एक शर्त है।
2: वो भला क्या?
3: तुम मुझे बढ़िया सी चाय बना के पिलाओ पहले।
2: बस
3: हाँ,
2: इतनी सी बात?
3: हाँ बेटा,
2: अभी बना के लाती हूँ दादू।
3: थैंक यू प्यारी बिटिया।
2: जय हिंद दादाजी।
3: जय हिंद बच्चे, जय हिंद।
1: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का। आपके साथ हम थे आपके रेडियो सेट पर, मैं भगवती सक्सेना
3: और मैं दीपक नेमा।
1: लेखन किया स्वाति गिरी ने। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम आजाद हिंद में। आजाद हिंद में अभी तक हमने आपको सुनाए क्रांति कथाएं, शौर्य गाथाएं, महापुरुषों की जीवनियां, उनसे जुड़े प्रेरक प्रसंग, आजादी के मुकदमे, संस्मरण और देशभक्ति से ओतप्रोत गीत। आइए इसी तारतम्य में आज बात करते हैं उर्दू साहित्य के कोहिनूर कहे जाने वाले मिर्जा गालिब जी की।
1: श्रोताओं, उर्दू साहित्य के एक पारखी ने एक जगह लिखा है कि मुगल साम्राज्य ने हमें तीन चीजें दी हैं, ताजमहल, उर्दू और गालिब। मिर्जा गालिब उर्दू के बहुत ही विख्यात कवि हुए हैं, केवल उर्दू के ही नहीं फारसी के भी। उनका पूरा नाम मिर्जा असदुल्ला बेखां गालिब था। उनके दादा कौकान बेखां शाह आलम के जमाने में समरकंद से हिंदुस्तान आए थे। आगरा में 1797 में मिर्जा गालिब का जन्म हुआ।
0: गालिब अभी छोटे ही थे कि उनके पिता मिर्जा अब्दुल्ला बेखां का देहांत हो गया। उनके चाचा मिर्जा नसरुल्ला बेखां ने उनका पालन पोषण किया। मिर्जा गालिब केवल 8 ही बरस के थे जब उनके चाचा का भी देहांत हो गया। लोहारू के नवाब अहमद बख्श खां ने लॉर्ड लेक से सिफारिश की और वहां से पेंशन का इंतजाम किया। वो पेंशन मिर्जा नसरुल्ला बेग खां के संबंधियों के लिए थी। 5,000 रुपए वार्षिक पेंशन में से मिर्जा गालिब का केवल 750 रुपए सालाना था। वैसे उस जमाने के हिसाब से ये अच्छी खासी रकम थी।
1: गालिब ने आगरा के मौलवी मोहम्मद मुअज्जम और एक ईरानी मुल्ला अब्दुल रस्मत से फारसी पढ़ी, परंतु उन उस्तादों से ज्यादा जिस चीज ने गालिब पर असर किया वो था उनका वातावरण। इनका बचपन आगरा के जिस मोहल्ले में गुजरा वो गुलाब खाना कहलाता था। उस जमाने में वो गोया फारसी जबान का केंद्र था और यहीं से मिर्जा असदुल्ला बेग खां गालिब एक शायर बनने की तरफ बढ़ चले।

लगजिश ना खाऊं जिस्म पे आफत हजार हो, खिदमत में कौम की मेरा ये सर निसार हो, ये सर निसार हो।

इज्जत की ख्वाहिश दिल में ना जिनहार हो मुझे, चढ़ जाऊं वतन के लिए गरदार हो मुझे, गरदार हो मुझे।

हाकिम की क्या लिखने से जब कलम बंद हो, इजहार हो मेरा यही आजाद हिंद हो, आजाद हिंद हो।

0: 13 बरस की उम्र में गालिब की शादी नवाब अहमद बख्श खां के छोटे भाई इलाही बख्श खां मारूफ की 11 साल की सुपुत्री उमराव बेगम से हो गई। उन दिनों शादियां छोटी उम्र में ही हो जाया करती थी। गालिब जब तक आगरा में रहे उन्हें खर्च की कोई तंगी नहीं हुई, बल्कि सच तो ये है कि रुपए पैसे की बहुतायत ही थी। दिल्ली में जब वो आए तो वो 750 रुपए की पेंशन उनकी जान का रोग बन गई। कभी बंद हो गई और कभी मिलने लगी। उस पेंशन से गालिब का गुजारा भी मुश्किल से ही होता था। गालिब ये भी समझते थे कि पेंशन नियत करने के बारे में उनके साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय हासिल करने के लिए वे कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता पहुंचकर उन्हें पेंशन के मामले में सफलता तो मिली नहीं, लेकिन वहां के साहित्यिक लोगों से झगड़े जरूर मोल ले लिए। उनमें से मिर्जा कतील और उनके शिष्यों से उनके झगड़े बहुत मशहूर हैं।
1: गालिब की पेंशन का मुकदमा करीब 16 साल तक चलता रहा। इस पर उनका हजारों रुपया उठ गया, जिसका बड़ा हिस्सा उन्होंने महाजनों से ब्याज पर कर्ज लिया था। बदकिस्मती से मुकदमे का फैसला उनके खिलाफ हो गया और उनकी बाकी उम्र इस कर्ज को चुकाने में कट गई। गालिब बड़े स्वाभिमानी थे। केवल एक उदाहरण से इस बात का पता चल जाएगा। एक बार मिर्जा गालिब को दिल्ली कॉलेज में फारसी के मुख्य अध्यापक का पद पेश किया गया, परंतु उन्होंने अपने स्वाभिमान के कारण उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर टॉमसन कॉलेज को देखने आए तो उन्होंने मिर्जा गालिब को बुलवा भेजा। अगले दिन वो पालकी पर सवार होकर बंगले पहुंचे और दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करने लगे कि अभी कोई स्वागत करने को आएगा। जब किसी ने आकर उनसे कहा कि हजरत तशरीफ लाइए, तो गालिब ने कहा, साहब कोई लेने आए तो उतरूं?
0: ये सुनकर मिस्टर टॉमसन स्वयं बाहर निकल आए और कहने लगे, चूंकि आप रस्मी मुलाकात के लिए नहीं बल्कि नौकरी के लिए आए हैं, इसलिए कोई पेशवाई को कैसे हाजिर होता? मिर्जा बोले, नौकरी इसलिए करना चाहता हूँ कि इससे मेरा सम्मान बढ़े, न कि जो पहले से है उसमें भी कमी आ जाए। इतना कहकर मिर्जा ने पालकी के कहारों को हुक्म दिया कि वापस चलो।
1: मिर्जा गालिब 4 जुलाई 1850 को बादशाह जफर के दरबार में पेश हुए। बादशाह ने नज़्मुद्दौला दरीबु मुल्क निजाम जंग कहकर खिताब दिया। 50 रुपए माहवार वेतन मुकर्रर हुआ। गालिब की जरूरतों के सामने इन 50 रुपयों की हस्ती ही क्या थी, और इस पर वे भी मिले 6-6 महीनों में।

0: सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद किले की ये मुलाजमत भी जाती रही। रामपुर के नवाब यूसुफ अली खां मिर्जा गालिब के प्रसिद्ध शिष्यों में से थे। उन्होंने 1859 में मिर्जा की 100 रुपए महीना तनख्वाह नियत कर दी थी। इस पर भी उनकी आर्थिक परेशानियां खत्म नहीं हुई।
1: मिर्जा खुद एक रईस खानदान के थे, रईसों से रिश्तेदारी और याराना था, बादशाहों और नवाबों के उस्ताद थे, इसलिए रख रखाव की आदत इनका स्वभाव बन गई थी। वो घर पर दिल्ली के बड़े लोगों की तरह पजामा और खुली अस्तीन का कुर्ता या अंगरखा पहनते थे। सिर पर आम तौर पर मलमल की खुली हल्की टोपी होती, जिस पर कामदानी या कसीदे का काम होता। जाड़ों में सर्दियों से बचने के लिए किसी गर्म कपड़े का कलीदार पजामा और मिर्जई पहनते। बाहर निकलते तो तंग मोरी का आड़ा पजामा, कुर्ता और उस पर सदरी, ऊपर किसी भारी और कीमती कपड़े का चोगा और उस पर एक जामा, पांव में घेतली जूती और हाथ में मूठदार लंबी लकड़ी, जिस पर उनका नाम असदुल्ला अल गालिब खुदा हुआ था।
0: मिर्जा गालिब ने अपने दोस्तों, शागिर्दों और संबंधियों को जो अमूल्य पत्र गद्य में लिखे हैं, उनके संग्रह उर्दू ए मुअल्ला, उदे हिंदी और मकातीबे गालिब के नाम से छप चुके हैं। उनकी उर्दू कविताओं का संग्रह दीवान ए गालिब के नाम से सर्वविख्यात है। हास्य रस उनकी घुट्टी में पड़ा था। उनकी कोई बात लतीफे और चुटकुले से खाली नहीं होती थी। गालिब की कविता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने पुरानी डगर को छोड़कर नए रास्ते को ग्रहण किया। उनकी गजलें अब भी लोगों को जुबानी याद हैं। उनमें मनोविज्ञान, आदमी की मानसिक वृत्तियों का उतार चढ़ाव, ईश्वर और प्रेमिका से छेड़छाड़ और हास्य रस के अमूल्य उदाहरण मिलते हैं।
1: उर्दू के गद्य और पद्य को पुरानी परंपरा की जंजीरों से आजाद करके एक नए रंग की बुनियाद मिर्जा गालिब ने डाली। उनका अनुकरण तो बहुतों ने किया, मगर सफलता किसी को नसीब नहीं हुई। 15 फरवरी 1869 को मिर्जा गालिब की मृत्यु हो गई, जिसने एक तरफ इस देश में फारसी के साहित्य को ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया। वो महान शायर चुपचाप, खामोश, मौत के आगोश में चला गया। मिर्जा गालिब तो चले गए, लेकिन उनके कहे हुए शेर और गजलें आज भी जिंदगी के फलसफे को बयां करती हैं, और उन्हीं के कारण मिर्जा गालिब हमेशा लोगों के दिल में जिंदा रहेंगे। हमारा उनको सादर नमन।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र

0: जिसमें कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी।
1: अब समय है अगली मनमोहक प्रस्तुति का, जो है नटेश गौतम, जो भगवान नटराज को समर्पित एक ऊर्जावान और भक्तिमय रचना है। यह प्रस्तुति शिव के दिव्य पांडव और उनकी महिमा का सुंदर वर्णन करती है। यह एक तेज गति वाला टुकड़ा है जिसमें नटेश की सुंदर मुद्राएं हैं, जिसमें सभी ऋषि और असुर पूजते हैं और जो एक हाथ में डमरू के साथ नृत्य करते हैं। नटेश कौतवम राग हंस ध्वनि और काल चतुष्य एकम में रचा है, जो तंजावर क्वार्टेट की रचना है।

0: और आइए अब रेडियो रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं और कालांजलि कला उत्सव से आपके लिए चलते हैं। स्मरण हबीब 22वें रंग आलाप नाट्य महोत्सव में, जिसका समापन हुआ 12 जून को, इस मौके पर नाटक चरणदास चोर का मंचन किया गया।
1: पैसा मांगा था जी
2: पैसा
1: हाँ।
2: मैं झूठ नहीं बोला गुरुदेव।
1: अरे अभी परण कर यार, झूठ

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए ऐसा काव्य विन्यास लेकर आए हैं जहां पंखुड़ियां रण की चमक से नहीं तप की शांति से दमकती हैं। यहीं से श्रोताओं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग की ये अंतर्मुख और गहन यात्रा आरंभ होती है।
0: श्रोताओं, प्रथम सर्ग में हमने उस क्षण को जिया जहां पराक्रम ने जन्म से प्रश्न किया और प्रतिभा ने पहचान से टकराकर अपना स्वर रचा। वहां कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह मनुष्य था जो सम्मान अपमान मित्रता और विवेक के बीच खड़ा होकर अपने भाग्य की दिशा तय कर रहा था। दिनकर जी ने हमें दिखाया कि तेज केवल बाहुबल में नहीं चयन की अग्नि में तपकर प्रकट होता है, और अब जब वह अग्नि भीतर जल चुकी है तब हम द्वितीय सर्ग की उस यात्रा की ओर बढ़ते हैं जहां शोर थम जाता है, प्रश्न गहरे होते हैं और आत्मा अपने ही प्रतिबिंब से संवाद करने लगती है।
1: यहां रणभूमि का कोलाहल नहीं, तपोवन की निस्तब्धता है। दिनकर जी हमें उस स्थान पर खड़ा करते हैं जहां शांति कोई पलायन नहीं बल्कि शक्ति का संचय है। ये वो भूमि है जहां अस्त्र विश्राम करते हैं और आत्मा सजग रहती है। आइए सुनते हैं रश्मि रथी के दूसरे सर्ग के प्रथम भाग का पाठ। शीतल विरल एक कानन शोभित अदित के ऊपर कहीं उच्च प्रस्त्र वर्ण चमकते झरते कहीं शुभ निर्झर, जहां भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं, कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीन भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है, धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हूं शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं, सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर, अजिन दर्भ पलाश कमंडलू एक ओर तप के साधन, एक ओर टंगे धनुष तूणीर तीर बरझे भीषण, चमक रहा त्रिणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली।
0: दिनकर जी यहाँ ऐसे आश्रम का चित्र रचते हैं जहाँ प्रकृति स्वयं तपस्विनी बन गई है। यह स्थान शांति पवित्रता और संतुलन का प्रतीक है, एक ऐसा परिवेश जहां आत्मा सहज ही स्थिर हो जाती है। यह केवल दृश्य नहीं साधना की भूमि है।
1: ये कानन केवल प्रकृति का सौंदर्य नहीं रचता, ये जीवन का संतुलन सिखाता है। यहां हवन की अग्नि बुझ चुकी है पर उसका संस्कार वायु में शेष है, पशु पक्षी निर्भय है क्योंकि यहां शक्ति हिंसा में नहीं संयम में निहित है। दिनकर जी संकेत देते हैं कि जो समाज को दिशा देता है वो पहले स्वयं को तपाकर उज्जवल बनता है।
0: वन की निस्तब्धता में मानो प्रकृति स्वयं कर्ण से संवाद कर रही हो और दिनकर जी की वाणी उसमें सांस ले रही हो। हरियाली कहती है, हे सूर्य पुत्र, यह शांति पलायन नहीं साधना है। झरनों की अविरल धारा समझाती है कि जैसे संघर्ष थमता नहीं वैसे ही पुरुषार्थ भी रुकता नहीं। दिनकर जी इस कानन को केवल वन नहीं चेतना की पाठशाला बना देते हैं जहां कर्ण रण के शोर से पहले आत्मा की नीरवता सीखता है। यहाँ प्रकृति सिखाती है कि जो अपने भीतर के द्वंद्व को समझ लेता है, वही आगे चलकर धर्म और युद्ध के बीच सही मार्ग चुन पाता है। आइए सुनते हैं दूसरे सर्ग का दूसरा भाग, जहाँ कर्ण इस दिव्य आश्रम को अपने जीवन की रणभूमि और अपने अंतर मन में कहीं आत्मसात कर रहा है। श्रद्धा बढ़ती अजन दर्भ परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है, हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह सुबा उसी की कैसे हो सकती है तलवार, आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या सन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को, मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है, परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीव ना तो तप ही करता है ना तो उठा सकता तलवार, तप से मनुष्य दिव्य बनता है षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है,
1: किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला, कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी तप में महासूर्य जैसा, मुख में वेद पीठ पर तरकस कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल, ये कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का, हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर, पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है।
0: श्रोताओं, ये केवल एक आश्रम का दृश्य नहीं है, यह इतिहास की वह नीरव घड़ी है जहां नियति सांस रोके खड़ी है। एक ओर तप की शांति है, दूसरी ओर शस्त्रों की चेतावनी। जिस भूमि पर अभी धूप चुपचाप उतर रही है, वहीं से कल महायुद्ध की ज्वाला उठेगी। यहाँ गुरु विश्राम में है और शिष्य सेवा में, पर इसी विश्वास की छाया में छिपा है वह क्षण जो कर्ण के जीवन की दिशा बदल देने वाला है। अब कथा उस बिंदु की ओर बढ़ती है जहां तप की परीक्षा होने वाली है।
1: कर्ण अचल बैठा है, उसकी जांघ पर परशुराम का मस्तक टिका है, गुरु निद्रा में है, शिष्य सजग है, न सांस डगमगाती है न मांसपेशी कांपती है, पर उसी अडिग स्थिरता में इतिहास की धड़कन तेज हो उठी है। ये केवल विश्राम का क्षण नहीं, ये विश्वास और वीरत्व की कठोर परीक्षा है। एक पल का हिलना तप को भंग कर सकता है, एक क्षण की दुर्बलता युग की दिशा बदल सकती है, इसलिए कर्ण स्थिर है, अचल, अडिग, सूर्य पुत्र की गरिमा में स्थित और उसी महावीर की स्थिरता में इतिहास सहमा हुआ कांप रहा है, मानो वो स्वयं से कह रहा हो।
2: मैं यहां केवल अस्त्र पाने नहीं आया हूं, मैं स्वयं को गढ़ने आया हूं। गुरु का स्नेह मुझे मिला, पर क्या मैं उस विश्वास के योग्य हूं? क्या मेरा जन्म ही मेरी पहचान है? क्या मेरा पुरुषार्थ ही मेरा नाम रचेगा? यदि सत्य का भार उठाना ही मेरी परीक्षा है, तो हे दिवाकर, यदि ये पीड़ा ही मेरी दीक्षा है, तो मुझे इतना धैर्य दो कि मैं इसे मुस्कान की तरह धारण कर सकूं। यदि सत्य का भार ही मेरी परीक्षा है, तो मेरी आत्मा को इतना अडिग कर दो कि अपमान का महासागर भी मेरे संकल्प की एक रेखा ना डिगा सके। मैं टूट जाऊं रक्त बह जाए, प्राण कांप उठें, पर मेरा धैर्य ना टूटे, क्योंकि जो पुरुष विपत्ति के अंधकार में भी अपने पथ से नहीं लौटता, वही समय की शिला पर अपना नाम अग्निलेख की तरह अंकित करता है। और मैं लौटने नहीं आया, मैं अपने भाग्य को स्वयं गढ़ने आया हूं।
0: परशुराम का स्नेह अथाह है, पर उसी स्नेह की छाया में उनका क्रोध भी प्रलयंकारी है। ये तपोवन अभी शांति से सांस ले रहा है, पर कौन जाने भविष्य के गर्भ में क्या धधक रहा है। एक क्षण की चूक, एक असत्य का भार और विद्या का वर शाप बन सकता है। दिनकर जी संकेत देते हैं, वीरता केवल रण की गर्जना नहीं, वह उस मौन क्षण में परखी जाती है जहां भाग्य तलवार की धार पर खड़ा प्रतीक्षा करता है। आई श्रोताओं, अब सुनते हैं द्वितीय सर्ग के भाग 3 का काव्य पाठ, जहां संयम की एक पल की स्थिरता आने वाले युगों की दिशा तय करने वाली है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृशकाया, उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाने रहते ममता कितनी। कहते हैं,
1: ओ वत्स, पुष्टिकर भोग ना तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूं, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूं। इसकी पूर्ति कहां से होगी, बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सिंहो मांस पेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हूं लहर राग की, तभी जवानी पाती जाए। विप्र हुआ तो क्या, रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर।
0: ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ शिलोच वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेश्म में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। श्रोताओं, यह केवल एक गुरु की निद्रा नहीं है, यह उस विश्वास का क्षण है जो शिष्य के हृदय पर रखा गया है। परशुराम निश्चिंत है, क्योंकि उन्हें अपने शिष्य पर अटूट भरोसा है, और कर्ण वह इस भरोसे को अपने प्राणों से भी भारी मानकर थामे बैठा है। दिनकर जी का यह काव्य इसलिए सदा प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि इसमें परशुराम और कर्ण का संबंध मानवीय सत्य बनकर उभरता है। गुरु की कठोरता में छिपी ममता और शिष्य की मौन सहनशीलता, यह मर्म हर युग में वैसा ही रहता है। समय बदले, शास्त्र बदले, पर जहां प्रतिभा को तपाया जाता है और विश्वास को परीक्षा से गुजरना पड़ता है, वहां यह रिश्ता आज भी उतना ही जीवित है। द्वितीय सर्ग के इस भाग को सुनकर मानो ऐसा महसूस हो रहा है कि दिनकर जी स्वयं ही परशुराम का मन बनकर बोल उठे हों।
1: ये शिष्य साधारण नहीं है, इसकी नसों में तप और रण दोनों का रक्त बहता है। यदि इसे केवल संयम सिखाया गया तो इसकी देह युद्ध का भार न सह पाएगी, और यदि केवल शस्त्र दिए गए तो आत्मा भटक जाएगी। इसलिए मेरी कठोरता आवश्यक है, मेरी मर्यादा अडिग है, मैं इसे तोड़ने नहीं गढ़ने आया हूं। जो भविष्य के महासंग्राम का भार उठाएगा, उसे आज अनुशासन की अग्नि में तपना ही होगा। ये कठोरता दंड नहीं है।
0: आइए श्रोताओं, अब हम द्वितीय सर्ग भाग 4 की ओर कदम रखें। यहां मौन अब बोझ नहीं रह जाता, वह अर्थ बनकर उभरता है। पीड़ा स्वर पाती है और धैर्य अपनी अंतिम कसौटी पर खड़ा होता है। इसी क्षण कर्ण का भाग्य उससे प्रश्न करता है, क्या तप से जन्मा तेज बिना झुलसे आगे बढ़ सकता है? यही वह मोड़ है जहां ये काव्य रूपी कथा नई दिशा लेती है। आइए सुनते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का भाग 4।
1: खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असविहीन मन डरता है। राजा देता मान भूप का, वो भी आदर करता है। सुनता कौन यहां ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही शोणित में भूको, भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें, वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वो समाज के सिर पर चढ़ता जाता है।
0: अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जब ही पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहां रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहां पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। श्रोताओं, दिनकर जी के ये पद्य केवल प्राचीन राजाओं की कथा नहीं कहते, वे आज के मनुष्य को आईना दिखाते हैं। जब सत्ता प्रश्नों से चिढ़ने लगे, जब विवेक को दुर्बल समझा जाए और जय घोष सत्य से ऊंचा हो जाए, तब समाज भीतर ही भीतर खोखला होने लगता है। आज भी हम उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां शक्ति तर्क को दबा रही है और भीड़ सोचने की बजाय तालियां बजा रही है। यही पतन की पहली सीढ़ी है, जहां युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं मूल्यों के विरुद्ध लड़ा जाने लगता है।
1: यहां प्रश्न युद्ध का नहीं, दिशा का है। जब सत्ता स्वयं को ही सत्य मानने लगे, तब धर्म शस्त्रों से नहीं मौन से हारने लगता है। ऐसे समय में जो सोचता है वही अकेला पड़ता है, और जो जय जयकार करता है वही सुरक्षित रहता है। कर्ण का जीवन इसी विडंबना में गढ़ा जा रहा है। एक ऐसा वीर जिसे लड़ना तो आता है, पर जिस युग में वो खड़ा है वहां न्याय से अधिक शोर की कीमत है। यही इस प्रसंग की पीड़ा है, और यही इसकी सबसे बड़ी सीख भी। ये यात्रा यहीं ठहरती नहीं, क्योंकि कर्ण का पथ अभी लंबा है और उसकी परीक्षा अभी शेष है।
0: तो श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का, पर ये विदा केवल एक विराम है, इस यात्रा का अंत नहीं। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 5, 6 और 7, जहां कथा और भी गहन होगी और भावनाएं और भी प्रखर। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित गुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का था, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की थी, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का। आपके साथ मैं थी भगवती सक्सेना,
1: मैं संदीप शर्मा,
3: और मैं दीपक नेमा।
0: इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा अब यहीं पर विराम लेती है। आप सबसे हम फिर मिलेंगे एक नए अंक में, तब तक के लिए
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित नारायण ब्रज।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।